शुभ प्रभात दोस्तों, एक नई सुबह, नई रोशनी और नए विचारों के साथ आपका स्वागत है हमारे आध्यात्मिक कार्यक्रम दिव्य दर्शन में। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे सकारात्मक सोच, मन की स्थिरता और दिन की शुरुआत शांति और ऊर्जा के साथ करने की। तो चलिए एक गहरी सांस लीजिए, मन को हल्का कीजिए और हमारे साथ इस सुंदर सुबह की यात्रा शुरू कीजिए। और आज हमारे साथ एक प्रबुद्ध मेहमान मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे आध्यात्म के बारे में, धर्म के बारे में।

नमः। शुभ प्रभात दोस्तों, दिव्य दर्शन के इस बहुत ही प्यारे से प्रोग्राम में, पवित्र प्रोग्राम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ डॉक्टर PM भरद्वाज साहब जुड़े हुए हैं और आज की जो चर्चा है

0: या अलग अलग है सर? क्या हिंदू धर्म ही सनातन धर्म है, क्या है?
1: समीर जी आपने एकदम सही कहा, सनातन धर्म और हिंदू धर्म में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि इनमें अंतर क्या है। सनातन धर्म मूल जीवन दर्शन है, जहां तक सनातन की बात करें ये तो मूल जीवन दर्शन है, जबकि हिंदू शब्द भौगोलिक और सांस्कृतिक पहचान के रूप में बाद में प्रचलित हुआ है, लेकिन अगर हम गौर से देखें तो चीज ये एक ही है, अलग नहीं है।
0: ओके, क्योंकि टाइम एंड अगेन सनातन धर्म को किसी और भाषा में या किसी और रिलीजन में या किसी और सामुदायिक ग्रुप में कभी डिस्कस होते हुए नहीं सुना, इसलिए थोड़ा सा ये कंफ्यूजन हो जाता है। मतलब सनातन धर्म की बात करते हुए सिर्फ हिंदू ही पाए गए, तो उसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या है सनातन धर्म हिंदू है, या आज हम हिंदू लोग सनातन धर्म को अपने से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। क्योंकि दरअसल सनातन धर्म की परिभाषा के लिए चक्कर में हमारी जो भाषा होती है वो भी इतनी ज्यादा शुद्ध हिंदी हो जाती है कि लगता है ये तो हिंदू धर्म है, इसलिए मैंने ये सवाल आपसे पूछा।
1: नहीं, आपका सवाल एकदम सही है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, देखिए एक चीज हम ध्यान रखेंगे कि ये एक जो कि पहले भी था आज भी और आगे भी रहेगा, ये एक अटल सत्य है पर आधारित है और ये सभी पे लागू है, ये ऐसा नहीं है कि खाली हिंदुओं के लिए ही ये है। और इसको अगर देखिए, मैं एक और चीज मानता हूँ, आज जो विश्व के अंदर अशांति का माहौल हो रहा है, जगह जगह झगड़े हो रहे हैं, वार कई देशों के बीच में हो रही है, अगर इस दर्शन को, इस धर्म को लोग ध्यान से समझेंगे तो हमें इन चीजों से जो भी कठिनाई आ रही है उनसे छुटकारा मिलेगा। सनातन धर्म में इतनी शक्ति है।
0: चलिए अभी तो मैं अभी आपके इसी बात पर वापस आता हूँ भारद्वाज साहब, बट सबसे पहले तो यही जानना चाह रहा हूं कि ये जो सनातन धर्म, या चलिए इसको हम धर्म ना कह के सनातन रिलीजन कह लें, जिससे बाकी के धर्म के लोग भी इसे कनेक्ट कर पाए, ये किसी एक संस्थापक या एक बुक पर आधारित है, कोई ग्रंथ है इसका कि जहां लिखा हुआ है कि साहब ये सनातन धर्म का ग्रंथ है, ये सनातन धर्म यहां से आया है, इन्होंने बताया है, और ऐसा कुछ है सर?
1: नहीं, एक व्यक्ति द्वारा नहीं है समीर जी, बहुत सारे ऋषि मुनियों ने करोड़ों साल तक जो तपस्या की, उन्होंने गहन अध्ययन किया, उनके अनुभव पर ये आधारित है और ये एक व्यक्ति रिलेटेड नहीं है, जो उन्हें सत्य प्रतीत हुआ और उन्होंने देखा कि भाई ये साइंटिफिक भी है और ये व्यवहारिक भी है, इस तरह के सत्य को वो लिखते गए कि भाई इन चीजों को हमें फॉलो करना चाहिए। और ये आपने सही कहा, इसको धर्म ना बोल के अगर हम दर्शन शब्द यूज करें, सनातन दर्शन, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये किसी एक पर्टिकुलर धर्म से रिलेटेड किसी भी हालत में नहीं है
0: जी। तो जैसा दोस्तों आपने सुना, भारद्वाज साहब ने यह बताया कि किसी एक व्यक्ति द्वारा बनाया गया, किसी एक इंसान द्वारा बनाया गया ये धर्म नहीं है या दर्शन नहीं है। आप इस चीज को बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, परेशान मत होइएगा कि सनातन जो है सिर्फ हिंदुओं का है और किसी का नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, ये गलतफहमी को दूर करना जरूरी है। तो आगे बढ़ते हुए सनातन को और बेहतर समझते हैं कि सनातन में मतलब कर्म और धर्म ये कैसे सम्मिलित किए जाएं। कर्म मतलब हम क्या काम करते हैं, किस तरीके से जिंदगी जीते हैं, और किस तरीके से हम किसी इष्ट देव को या किसी भी जो भी हम जिनकी भी हम पूजा करते हैं अपने आप को संभालने के लिए, तो इन दोनों चीजों को सनातन दर्शन में कैसे इनकॉर्पोरेट किया जाता है, कैसे समझा जाता है?
1: देखिए समीर जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं, रियली आई एम सो हैप्पी कि आपके क्वेश्चन बहुत ही रेलिवेंट हैं सनातन दर्शन को लेकर के। अब धर्म की अगर बात करें, धर्म क्या है, तो धर्म का मतलब धारण करने योग्य है और सही आचरण का मार्ग जो दिखाता है वही धर्म है, कि हमारा आचरण सही हो। सनातन के अंदर धर्म को बहुत ही ज्यादा वैल्यू दी गई है, कहा गया है कि भाई हमें धार्मिक धर्म के हिसाब से ही काम करना चाहिए। धर्म का मतलब लेकिन यह सही आचरण से मतलब है कि हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, और

0: कर्म से क्या है कि जैसे हम कर्म करेंगे वैसे ही परिणाम हमको मिलेंगे। दोनों मिलके, धर्म और कर्म मिलकर के जीवन को बैलेंस करते हैं, संतुलित बनाते हैं, धर्म और कर्म। तो हमें करना क्या चाहिए कि हम धर्म के हिसाब से कर्म करें और जो हमारे कर्म है वही हमारे जीवन के परिणामों को निर्धारित करेंगे।
1: जी, ओके। अब अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और सनातन दर्शन में, जैसा आपने बिल्कुल सही शब्द हमें दिया आज, धर्म की जगह इसको दर्शन ही कहा जाए तो अच्छा होगा। तो सभी के लिए क्या ये एक ही रास्ता है सनातन दर्शन, या हम अलग-अलग रास्ते भी सनातन दर्शन में चुन सकते हैं?
0: नहीं, देखिए इसमें हर व्यक्ति का नेचर अलग होता है। आपने देखा होगा अगर 10 व्यक्ति बैठे हैं तो जरूरी नहीं है उनका स्वभाव, उनकी प्रवृत्ति एक ही तरह की हो, उनका नेचर अलग-अलग होगा। तो इसमें सभी को उनके नेचर के हिसाब से भी मार्ग दिए गए हैं। कोई भक्ति मार्ग करना चाहे, ज्ञान मार्ग करना चाहे, या कर्म योग करना चाहे, वो सभी मार्ग इसमें दिए हैं। भक्ति, ज्ञान और कर्म, ये तीनों चीज इसके अंदर, तीन मार्ग इसमें मुख्य रूप से सनातन दर्शन में बताए गए हैं।
1: तो सबसे पहले तो भारद्वाज साहब, मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना रहेगी, रिक्वेस्ट रहेगी कि ये जो तीन चीजें आपने अभी बताई हैं, भक्ति, ज्ञान और
0: कर्म
1: तीसरा कर्म, तो
0: जी,
1: थोड़ा सा हमें इन तीनों को भी जरा एक डेफिनेशन या परिभाषित कर दीजिए, थोड़ा सा हमें बता दीजिए कि मान लीजिए आपकी बात सुनकर मैं कहूं कि चलिए मैं भक्ति मार्ग अपनाता हूं, तो मैं क्या करूं? बात सनातन दर्शन की हो रही है सर। सनातन दर्शन के अंदर, उसके अंडर में कर्म को मैं कैसे आ, आ, नहीं सॉरी भक्ति भक्ति मार्ग को मैं कैसे अपनाऊं, क्या करूं?
0: देखिए भक्ति मार्ग का मतलब यह है कि हम परमपिता परमेश्वर, अब इसमें कोई एक परमेश्वर नहीं है, जो जिसको भी भगवान मानता है वो सभी एक है। तो उनको, उनके प्रति प्रेम और समर्पण का मार्ग अपनाए, जैसे कि मीरा का एग्जाम्पल है भक्ति मार्ग के अंदर। तो एक समर्पण का मार्ग होना चाहिए और प्रेम करना चाहिए उनको, एक सत्य मानना चाहिए कि हाँ भाई भगवान है। ये भक्ति मार्ग के अंदर, उनके अंदर आस्था रखनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। ज्ञान मार्ग में विवेक और आत्मबोध का मार्ग है। इसके अंदर ये ज्ञान होना चाहिए कि शरीर और आत्मा ये अलग-अलग हैं। शरीर जो है वो नश्वर है और आत्मा जो है वो हरदम अमर है, कभी भी उसका नाश नहीं होगा। तो ये ज्ञान योग है। और कर्म में निस्वार्थ कर्म का मार्ग। अब कर्म देखिए, चक्कर क्या है कि कई तरह के कर्म है। अब कौन सा कर्म सही है, कौन सा कर्म सही नहीं है, ये मालूम होना बहुत जरूरी है। और कर्म करने के तरीके भी पता होना चाहिए कि कर्म अगर हम करें तो कैसे करें। और ये तरीका भी सनातन में बहुत ही ढंग से समझाया गया है कि निस्वार्थ भाव से, आसक्ति रहित होकर के हम कर्म करें और फल की चिंता नहीं करें। और जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसके फल भगवान को अर्पित करते हुए हम आगे बढ़े। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम सफल होंगे और हमारा जो है फिर जो मेन मोक्ष का जो हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए किसी भी इंसान का, मानव योनि में उसको जन्म मिला है तो उसको ये ट्राई करना चाहिए कि अंत में जाकर के वो भगवान से ही मिल जाए, यानी उसको मोक्ष प्राप्त हो जाए। तो वो इन तीनों मार्गों से, भक्ति योग से, ज्ञान योग से और कर्म योग से उसको मिल सकता है। और अपनी नेचर के हिसाब से जो भी मार्ग जिसको सही लगे उस मार्ग में वो आगे बढ़ सकता है।
1: जी, तो दोस्तों मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है इस बात को समझना कि सनातन दर्शन क्या कहता है। यहाँ पर भारद्वाज साहब, हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एक प्यारे से भजन के लिए, और फिर इसके बाद मैं वापस आता हूँ आपके पास।
0: जी जी जी

0: बहुत सुंदर। आगे बढ़ते हुए आपने जो पीछे बात कही भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान, हां जी सर, तो इनको अगर मैं एक्स्ट्रापोलेट करूं, भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग, एक्स्ट्रापोलेट करके इनको पूरे संसार पे फैला दूं, क्योंकि हम लोगों की यही बातचीत हो रही थी कि सनातन धर्म कुड बी यूज्ड बाय एनी रिलीजन अक्रॉस द वर्ल्ड सो दैट सब लोगों में शांति आ जाए। तो समझ लें, आपने कहा इस बात को कि सब लोग समझ लें, रशिया भी समझ ले, अमेरिका भी समझ ले, ईरान भी समझ ले, इराक भी समझ ले, पाकिस्तान भी समझ ले और वियतनाम भी समझ लें, सनातन को सब समझ लें तो सब शांत हो जाएंगे। तो वही मैं ये पूछना चाह रहा हूं सर कि ये कर्म योग, ज्ञान योग और तीसरा जो था सर भक्ति योग, इसको इन सारे विश्व में समझाने के लिए क्या करना चाहिए सर, कैसे इनको बताएं कि साहब ये तीन चीजें हैं, इनको कर लो, हाउ डू वी, क्योंकि मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है कि सर ये अभी यहां बस भारतवर्ष के किसी कोने से ये निकला है सनातन धर्म, जिसको हम समझाने चले हैं कि हम पूरे विश्व को बताएं तो विश्व शांत हो जाए। सो चलिए मान लिया प्रिंसिपली, बट मेथड क्या हो, क्या करें हम, इराक को कैसे बताएं कि साहब ये सनातन धर्म इस्तेमाल करो।
1: जी देखिए, एक तो सबसे बड़ा काम जो आज मैं देख रहा हूँ आपका टीवी भी कर रहा है
0: जी,
1: आज आपने इतने इम्पोर्टेंट मैटर को लेकर के आज आप ये एक पॉडकास्ट बना रहे हैं, जो भी इसको नाम दे, आप ये प्रोग्राम आपने बनाया और इस प्रोग्राम को हजारों लाखों लोग सुनेंगे, तो इसी तरह से इसका जो प्रचार प्रसार है इसके बारे में तरह तरह के लेख लिखे जाएं और बहुत ही सरल भाषा में लिखे जाएं, और जैसे सरल भाषा में ये प्रोग्राम अभी आप इसको आगे बढ़ा रहे हैं, इस तरह के प्रोग्राम ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में जाने चाहिए और जिससे कि वो इस मुद्दे को समझ सके। देखिए सनातन धर्म एक बात कहता है, बहुत छोटी सी बात मैं बोल रहा हूँ, कि सबके अंदर भगवान है और शरीर एक वस्त्र की तरह है और आत्मा जो है वो नश्वर है, आत्मा कभी खत्म नहीं होती, अनंत है और वो अमर है। तो अगर ये समझ में आ जाए कि सबके अंदर भगवान है, सबके अंदर आत्मा है, परमात्मा है, तो फिर सब झगड़े दूर हो जाएंगे, हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर सनातन को समझेंगे तो ये भावना हमारे अंदर आ जाएगी और जब हमें लगेगा कि पूरा विश्व ही हमारा परिवार है तो उस केस में कहीं कभी भी कोई झगड़े की नौबत नहीं आएगी। मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद हमारे नहीं होंगे अगर हम सबको अपना परिवार का सदस्य मानेंगे। तो इसके लिए ज्यादा से ज्यादा सरल भाषा में लेख होने चाहिए, मैंने काफी लेख लिखे हैं और कई न्यूज़पेपर के थ्रू, कई सोशल मीडिया के थ्रू इसको आगे हम लोग बढ़ा रहे हैं, और जिस तरह का ये पॉडकास्ट आप बना रहे हैं और इसको काफी लोगों को आप सुनवाएंगे तो यही एक तरीका है जिससे कि ये चीज आगे आसानी से बढ़ेगी और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी हेल्प लेनी चाहिए।
0: हाँ, मेरे दिमाग में यही चीज आ ही रही थी भारद्वाज साहब, क्योंकि आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज़बरदस्त हंगामा मचा हुआ है, उसकी बारे में बातचीत हो रही है, हर व्यक्ति आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को या तो इस्तेमाल कर रहा है या डर रहा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रस्पेक्टिव में, उसके संदर्भ में और जो आज की टेक्नोलॉजी है वहाँ पर सनातन दर्शन के मूल्यों की क्या प्रासंगिकता है, मतलब क्या रेलिवेंस है, सनातन धर्म एआई के साथ कैसे मिक्सिंग करेगा।
1: देखिए जो भी टेक्नोलॉजी होती है समीर जी, आप भली भांति जानते हैं, वो टेक्नोलॉजी शक्ति देती है, कोई भी जो टेक्नोलॉजी है, लेकिन उसका सही उपयोग विवेक, नैतिकता और करुणा से ही संभव है, और यही सनातन कहता है कि आप जो है सही उपयोग करें विवेक से, नैतिकता से और करुणा से। अब क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत ज्यादा फायदेमंद टेक्नोलॉजी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ी विनाशकारी भी हो सकती है अगर इसका मिसयूज कर दिया गया। और सनातन धर्म कभी भी किसी भी टेक्नोलॉजी के मिसयूज के लिए को रिकमेंड नहीं करता, सनातन धर्म हरदम कहता है जो सत्य है वो करो। और सत्य क्या है, देखिए अब एक बार बताऊं, वायरलेस जैसे बना तो पुलिस के पास आने के पहले वायरलेस जब बना था वो पहले डाकुओं के हाथ में पहुंच गया, तो वो उन्होंने यूज किया सबसे पहले वायरलेस को कि बता, वो लोग ये बात करते थे आपस में कि भाई पुलिस आ रही है हमारे पीछे अब भागो। तो कोई भी अगर टेक्नोलॉजी बनी है वो मानव कल्याण के लिए होनी चाहिए, शांति के लिए होनी चाहिए, अच्छे काम के लिए होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी का मतलब ये नहीं है कि हम उसकी जो नेगेटिव पॉइंट है या उसको गलत जगह यूज कर रहे हैं। परमाणु है, अब देखिए न्यूक्लियर एनर्जी पावर स्टेशंस में बिजली भी बना रही है, बिगर बिजली कुछ नहीं हो सकता, और इससे एटम बम भी बन रहे हैं। तो सनातन धर्म कभी भी नहीं कहता कि टेक्नोलॉजी को विनाश के लिए यूज किया जाए, कभी भी टेक्नोलॉजी को विनाश के लिए यूज नहीं करना चाहिए। ये ऐसा इस दर्शन में जगह जगह लिखा हुआ है और पूरे विश्व को, पूरे संसार को एक परिवार बताया गया है। ये इस धर्म की खासियत है, इसीलिए मैं पुरजोर शब्दों में कहना चाहता हूं कि अगर इस दर्शन को, सनातन दर्शन को सभी देश अपनाएंगे, जैसा आपने भी अभी पहले थोड़ी देर पहले कहा है, तो एकदम सब जगह शांति फैल जाएगी और जीवन जो है वो सुखी और सफल होगा सभी लोगों का।
0: जी बहुत खूब। होता क्या है भारद्वाज साहब, पूरा संसार हम मनुष्यों से भरा हुआ है और हर मनुष्य के सोचने का तरीका अलग अलग होता है। सारे तो साधु नहीं होते, कुछ तो बदमाश भी होते हैं। और जब से मानव समाज अस्तित्व में आया है तब से ये बुरे लोग और अच्छे लोग बने हुए हैं। लाखों करोड़ों साल गुजर चुके, इंसान ने बहुत कोशिश कर ली कि बुरे लोगों को सीधा बना दिया जाए, लेकिन हुआ कभी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सिक्के के दो पहलू हैं, जब दिन होगा तो रात भी होगी, और अगर रात खत्म कर दी जाए तो दिन का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तब जहाँ पर इस सनातन दर्शन की हम बात कर रहे हैं कि इसको चारों तरफ फैलाया जाए, तो ये एक तरीके से एकमुष्ट धर्म हो जाएगा पूरे संसार का। ना कोई क्रिश्चियनिटी बचेगी, ना कोई हिंदुइज्म बचेगा, ना कोई बुद्धिज्म बचेगा, ना कोई इस्लाम बचेगा, सिर्फ एक सनातन दर्शन, सनातन धर्म होगा। क्या यही बात हम आज डिस्कस कर रहे हैं सर, ऐसा ही चाहते हैं हम?
1: हाँ देखिए, हम ये कह रहे हैं जो सनातन में हमने शुरू में ये एक बात कही कि सनातन का मतलब है जो शाश्वत है, जो सत्य है, और जिसमें करुणा भी है, आत्मबोध भी है, आत्मज्ञान भी है, वो सनातन है। तो जो भी व्यक्ति काम कर रहे हैं, भले ही वो किसी भी धर्म को मान रहे हैं, उस धर्म को मानते चलाएं, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम सभी धर्मों का सम्मान कर रहे हैं, ये विवेकानंद जी ने भी कहा था जब वो अमेरिका गए थे, तो उन्होंने एक खास बात कही थी कि हम आपके सभी के धर्मों का हम पूरी तरह से, हम उनके मतलब हम ये नहीं कह रहे कि हम उनके विरोध में हैं, आप अपने धर्म को अपनाइए, लेकिन अगर आपको जो हम सनातन दर्शन की बात कर रहे हैं इसकी अगर अच्छाइयां बता रहे हैं, तो जो अच्छाइयां इसमें आपको नजर आए वो अच्छाइयां जरूर अपनाओ। अब मैं बिगर नाम दिए हुए आपको एक बात कहना चाहूंगा समीर जी,
0: जी, जी।
1: कि सनातन में इसके कोई भी ग्रंथ आप उठा के देख लीजिए, कहीं भी नफरत की भावना नहीं लिखी हुई है कि हमें किसी से नफरत करनी है। वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि आत्मा सभी के अंदर है। यूरोपियन कंट्रीज में सालों तक ये नहीं माना जाता था पुराने टाइम में कि महिला के अंदर आत्मा है। आप देखो कितनी बड़ी विडंबना है, वो आज ये शो करते हैं कि वो लेडीज को बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट देते हैं, लेकिन पहले उनके यहाँ ये तक नहीं माना जाता था कि महिला में आत्मा है, जबकि हम ये कह रहे हैं कि सब में आत्मा है। और हमारा सनातन धर्म तो ये कह रहा है जीव में निर्जीव में सबके अंदर भगवान को मानना है और भगवान मान करके उनके साथ व्यवहार करना है। अगर हम सब में भगवान मानेंगे तो, और जब भी कोई हमसे मिलने आएगा, जब भी कोई काम होगा, अगर हम मानते हैं भगवान है, तो आप समझ सकते हैं कि हमारा रिएक्शन क्या होगा। सनातन धर्म इतनी ऊंची सोच के साथ ये दर्शन काम कर रहा है, तो इसको अपनाना तो सबके लिए जरूरी बात।

0: कि वो जिसकी पूजा, जिसको वो प्रेम करना चाहे, जिसकी पूजा करना चाहे वो करे, उनके लिए गॉड मे बी कुछ भी, कोई भी गॉड हो सकता है, उसके लिए कहीं मना नहीं है सनातन धर्म में, लेकिन सनातन दर्शन में। लेकिन ये कहता है सत्य को, और सत्य तो हर जगह एक ही है, सत्य अलग अलग नहीं हो सकता कि अमेरिका में सत्य कुछ और है, जापान में कुछ और है, और भारत में कुछ और है, सत्य तो सत्य है।
1: बहुत खूब, विचार करने का विषय है दोस्तों। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, विचार कीजिए, मनन कीजिए, आंखें बंद कीजिए और सोचिए जो भारद्वाज साहब ने अभी हमें बताया। लीजिए इस भजन को सुनिए और हम वापस आते हैं।

0: बहुत सुंदर। तो आगे बढ़ते हुए हम आपके व्यक्तिगत अनुभवों पर आते हैं कि जब से सनातन दर्शन को, सनातन धर्म को आपने समझा, अपनाया और उसकी प्रैक्टिस करनी शुरू की, तो आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए, बदलाव आए? क्या आपको लगा कि अरे यार, ये तो पहले मैं परेशान रहता था, अभी तो बड़ा अच्छा हो गया? क्या क्या चेंजेस आए आपके जीवन में?
1: देखिए, पहले जब मैंने सनातन को ढंग से नहीं समझा था, नहीं पढ़ा था, जीवन आप देखेंगे तो इसमें उतार चढ़ाव हर व्यक्ति के जीवन में आना स्वाभाविक है, आते ही है। जैसे कि दिन और रात, ये अवश्यम भावी है, दिन है तो फिर रात होगी और रात है फिर दिन होगा, ऐसे ही मानव के जीवन में सुख और दुख के सब आते। पहले कोई छोटी सी भी परेशानी आई तो मैं विचलित हो जाता था
0: जी,
1: लेकिन जब से मैंने सनातन को समझा और चीजों को देखिए, अगर सत्य आपके सामने है, अगर मान लीजिए रात हुई और जिस व्यक्ति को कोई, कई ऐसे भी जीव है जिनको ये पता ही, मतलब जिनको ज्ञान नहीं है कि भाई रात है तो अब दिन होगा, लेकिन जिसको ज्ञान है उसे पता है ये थोड़े समय के लिए है, फिर दिन आ जाएगा और दिन भी नहीं रहेगा, फिर रात हो जाएगी, तो ये जो है चक्र चलता रहेगा, ऐसे ही सुख और दुख है। तो इसके बारे में सनातन धर्म कहता है कि ये चीजें स्थाई नहीं है, अगर सुख है तो वो भी स्थाई नहीं है और दुख है तो वो भी स्थाई नहीं है। तो जब स्थाई नहीं है तो उस परिस्थिति में हमको अपने आप को ढाल करके, उस परिस्थिति के अंदर हमें संतुलन बना करके, संयम बना करके रहना है, ना कि हम उस ऐसे ही कभी दुख आया, थोड़े से दुख आते विचलित हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जैसे ही मैंने सनातन को समझा, मेरे जीवन में संतुलन आ गया, पॉजिटिव थिंकिंग मेरी हो गई, आत्मविश्वास बढ़ गया और सेवा की भावना। सनातन ये कहता है कि आप दूसरों को जितना हो सके उनको सुख दीजिए, आपको भगवान अपने आप सुख देगा। चार वेद, किसी संत ने कहा है, चार वेद षट शास्त्र में बात लिखी है, दो बात लिखी है इंपॉर्टेंट शास्त्रों में और चार वेदों में, सुख दीजिए सुख लीजिए, दुख दीजिए दुख होए। अगर दूसरे को सुख देंगे आपको स्वयं को सुख मिलेगा, और आप दूसरों के लिए गड्ढे खोदेंगे तो गड्ढे आप ही को दुख देंगे, आप ही के लिए वो गहरे गड्ढे साबित हो जाएंगे। तो इसलिए सनातन को समझने के बाद मुझे जो है जीवन में संतुलन, सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास और सेवा की भावना बहुत मेरे अंदर मजबूत हुई है
0: जी। बहुत खूब। तो ये बिल्कुल क्लियर एक एक्सप्लेनेशन है कि प्रैक्टिकल, देखिए थियोरेटिकल अलग चीज हो गई कि हमने बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर ली सनातन दर्शन के बारे में, हैं जी, लोगों की हेल्प करो, सुख दो, लेकिन प्रैक्टिकल बात अभी भारद्वाज साहब ने बताई कि जब उन्होंने इन चीजों को अपनाया तो उनके जीवन में क्या बदलाव आए। देखिए दोस्तों, चाहे हम इनको कितनी भी थियोरेटिकल बातें माने, लेकिन जब भी किसी दर्शन को हम अपने जीवन में उतारते हैं तो हमारे जिंदगी में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंजेस तो आते ही हैं। वही चीज भरद्वाज साहब शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं कि उनके जीवन में क्या बदलाव आए। चलिए यहां पर रुककर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और एक भजन का एक मुखड़ा सुनकर वापस आते हैं भरद्वाज साहब से और विचार विमर्श करने के लिए।

0: इस बात इन सारी बातों को, इन सारी डेफिनेशंस को, एक्सप्लेनेशंस को सुनने के बाद कोई व्यक्ति कन्विंस हो जाए कि ठीक है ये तो बढ़िया बात लग रही है, फिर वो चाहे किसी भी धर्म का हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, बुद्धिस्ट हो, हिंदू हो, उसे लगे चलिए सनातन धर्म के बारे में पढ़ता हूं और सनातन धर्म को और समझता हूं और सनातन धर्म अपनाता हूं, तो उसको पहला कदम क्या लेना चाहिए?
1: देखिए, सनातन धर्म इस बात पे बहुत ज्यादा जोर देता है कि पहले स्वयं को जानने की जिज्ञासा। अब स्वयं को जानने की जिज्ञासा को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि स्वयं हम, मैं हूं क्या, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, क्या मैं शरीर हूं या मैं आत्मा हूं, और दूसरे क्या हैं, उनको समझे कि भाई वो भी जो है आत्मा है और परमात्मा के थ्रू हम सबके अंदर परमात्मा भी है, हम उसी के अंश हैं। तो स्वयं को जानने की जिज्ञासा हो और प्रतिदिन कुछ समय आत्मचिंतन के लिए निकालना चाहिए। हम ये चिंतन करें, लोग क्या हो गया, एक बहुत एक अंधी दौड़ के अंदर दौड़ है, उनको समय ही नहीं है सोचने का। किसी कई जगह मैंने ये भी देखा, उनसे पूछा जाए भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो पता लगा कि वो जवाब ही नहीं दे पाएंगे, इतने ज्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं। पता लगा कि वो ज्यादा पैसा कमाने के लिए सुबह से शाम तक नैतिक अनैतिक टेंशन में रह करके बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन अनैतिक कार्य भी कर रहे हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस के एटमॉस्फेयर में काम कर रहे हैं, तो उनका जो है एकदम बीमारियों ने जकड़ लिया। अब पैसा, अगर आप भारतवर्ष की बात करें, आज अगर कोई भूखा है उसको खाना खाना है तो खाने के लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत, आज भी अपन भले ही महंगाई का युग बोले जो भी बोले, आज भी उसको बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर गलती से वो स्ट्रेस में काम करके अनैतिक काम करके कहीं हॉस्पिटलाइज हो गया, तो समीर जी मैंने खुद ने देखा है कई अपने दोस्तों के केस में कि एक एक इंजेक्शन लाखों रुपए के, आजकल मेडिकल खर्चा इतना हो रहा है कि जो लाखों रुपए का एक इंजेक्शन भी आ रहा है, इस तरह की भी चीजें हैं। इसलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम आत्मचिंतन करें, स्वयं को जानें और प्रतिदिन आत्मचिंतन के लिए कुछ समय निकालें और अंधी दौड़ में नहीं दौड़ें, अदरवाइज हमें दिक्कत, हमारी दिक्कत है बढ़ जाएगी।
0: जी, आपकी बात बिल्कुल सत्य है सर। अब होता क्या है भारद्वाज साहब कि आप और मैं जिस उम्र में आ गए हैं और हमारे इस प्रोग्राम को सुनने वाले ज्यादातर लोग भी इसी उम्र के हैं, जिनको अब उन्होंने जिंदगी बिता ली, कमा लिया, खा लिया, बीमार पड़ गए, खुशी हो गई, बच्चे बच्चियों की शादियां कर दी, सेटल हो गए, रिटायरमेंट हो गए, तो अब हमें ये सारी बातें समझ में आ रही हैं। लेकिन कोई युवा, ये 25 साल का जो अभी ग्रेजुएट होकर निकला है, हैं जी, किसी बढ़िया इंस्टीट्यूट से कंप्यूटर साइंसेस में बड़ा विद्वान होकर निकला है, अब उसे तो गाड़ियां दिख रही हैं, उसे तो मॉल्स दिख रहे हैं, उसे तो कपड़े दिख रहे हैं, घड़ियां दिख रही हैं, लड़कियां दिख रही हैं, उसे तो मजे करने हैं। अब उसको हम कैसे समझाएं कि बेटा सनातन धर्म पकड़ लो, है ना, विचार करो, बैठो। वो कहेगा अरे साहब बैठने का टाइम नहीं है मेरे पास, मुझे तो पार्टी में जाना है। तो अगर हम उसे और समझाएं तो वो ये कहेगा कि सर ऐसा है, आपने तो अपनी जिंदगी मजे ले लिए, अब जब मेरा वक्त आया तो आप मुझे मजे लेने के बजाय कह रहे हो बैठो, मेडिटेट करो, समझो, मत कमाओ, ज्यादा मत कमाओ। तो 5 मिनट में अगर किसी युवा को सनातन धर्म समझाएं तो कैसे समझाएं सर?
1: जी जी, नहीं देखिए, आपने बहुत ही बढ़िया एक सवाल पूछा है और युवा पीढ़ी भी इसको देख रही होगी या जो मदर फादर इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो भी उनको बता सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा, मेरा जन्म एक धार्मिक परिवार में, धार्मिक में मतलब फिर वही बात कहूंगा कि धर्म में कोई ऐसे धर्म की बात नहीं कर रहा जो कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए है, मैं सनातन दर्शन की बात कर रहा हूँ। मेरे मदर फादर या मेरे भी जो पूर्वज है वो सनातन धर्म को मानने वाले लोग थे, तो जब मैंने जन्म लिया तो उन्होंने हरदम कहा कि सत्य का साथ मत छोड़ना, सनातन दर्शन को हरदम ध्यान में रखना। आज अगर मैं चार कंपनियों का

0: चेयरमैन बना, देखिए मैं सेल्फ ड्रम बीट नहीं कर रहा मेरे, तो मैं अगर गौर से देखूं तो बहुत बड़ा एक हाथ है सनातन दर्शन का, जिसकी वजह से आज मेरी लाइफ में, अगर मैं ये मानूं कि मैं सफल रहा या मैंने अपने जो है सफल और सुखी हूं मैं या मैं रहा, तो ये आज ये नहीं कि इस एज में मैंने सनातन को पढ़ा है, बचपन से ही मैं देखता आ रहा था मेरे घर में। और मैंने ये कहा, जैसे मैं कुछ एग्जांपल दूंगा, भाई ईमानदारी बरतनी, आज चेयरमैन के लेवल पे लोग बहुत ज्यादा पैसा भी बनाते हैं और उसके बाद जब फंसते हैं तो आपने देखा होगा, चाहे वो CVC हो या वो CBI हो, उसमें क्या उनकी हालत होती है। तो घर के माहौल में, सनातन दर्शन के माहौल में मैंने देखा कि सत्य को अपनाना है, ईमानदारी बरतनी है, मेहनत करनी है, इन चीजों को ध्यान में रख गलत रास्ते पे नहीं जाना है। तो उसी वजह से आगे बढ़ने का मौका मिला और उसी वजह से सुखी रहा और सफल रहा, मेरा ऐसा मानना है। ऐसा नहीं है कि हमने कोई उसे बचपन में भी या युवा में भी हमने कोई मौज मस्ती इस तरह की हो जो कि अनैतिक है या जो कि अलाउड नहीं थी। सनातन ये कहता है कि आपकी जो इंद्रियां हैं, जो इंद्रियां भगवान ने आपको दी हुई है, आपके शरीर में है, उनका एक लिमिटेड उन्होंने नियम बना रखा है कि जैसे मान लीजिए मैं एक बात करता हूं, ये आपसे कहना चाहूंगा, आपने कहा लड़कियों पीछे भाग रहे आज का युवा, देखिए भगवान ने भी कहा शादी का सिस्टम बनाया है, आप एक लिमिटेड वे में एक संतान उत्पत्ति के लिए या लिमिटेड वे के अंदर आप उस चीज को उपयोग में ले सकते हैं, लेकिन जो लोग अनैतिक तरह से उस काम को कर रहे हैं उनका जीवन कभी सुखी नहीं हो पाएगा, उनको परेशानियां होंगी। इंद्रिय अगर मान लीजिए हमें रस इंद्रिय भी बनाइए, खाने के लिए भी हमारी है, तो वो अगर जो लोग ज्यादा बहुत ज्यादा खाते रहते हैं, संयम नहीं बरतते, तो आप देखिए कितनी बड़ी परेशानी आ जाती है, डायबिटीज हो गई और डायबिटीज के बाद कई लोगों के अंग भी काटने पड़ते हैं क्योंकि इतना ज्यादा प्रॉब्लम होने के बाद भी उनको समझ में नहीं आता और वो फिर भी जिन चीजों को डॉक्टर मना करते हैं उनको लगातार खाते रहते हैं। तो मना नहीं है, अपने एक लिमिटेड वे में जितना अलाउड है उस तरह के कर्म करें तो लाइफ में उनको सफलता भी मिलेगी और सुखी भी रह पाएंगे।
1: जी मैं समझ सकता हूँ सर। तो दोस्तों जो भी हमारे श्रोता इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, जाहिर सी बात है हम सबका फर्ज बन जाता है, आफ्टर ऑल हम अपने बच्चों को एक वैल्यू सिस्टम्स तो देते ही हैं ना बचपन से। तो जैसा भारद्वाज साहब समझा रहे हैं, सनातन दर्शन की भी शिक्षा या कह लीजिए ये एक परकोलेट डाउन होनी चाहिए, और कुछ तो होंगे बच्चे जो इस बात को समझेंगे, अपने जीवन को आगे लेके जाके ठीक करेंगे, बढ़िया बनाएंगे, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो दोस्तों हम आज भारद्वाज साहब के साथ यही बात कर रहे थे कि सनातन धर्म किसी एक धर्म का नहीं है, सनातन दर्शन हिंदू नहीं है, सनातन दर्शन पूरे विश्व में सब लोगों के लिए मौजूद है, उसको अपनाकर सभी सुखी हो सकते हैं, शांत हो सकते हैं, अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, फिजिकली भी, मेंटली भी, स्पिरिचुअली भी। बहुत बहुत शुक्रिया भारद्वाज साहब, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन हुई, बहुत सारी चीज़ों से पर्दा हटा, हमें कन्फ्यूजन्स दूर हुए, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने वक्त निकाला और हमें कुछ समझाया।
0: बहुत बहुत धन्यवाद समीर जी, आपने एक बहुत बड़े दर्शन के लिए, बहुत महत्वपूर्ण विषय पर मेरे विचार रखने के लिए मौका दिया, आपको धन्यवाद एवं साधुवाद।
1: थैंक यू सर।
2: ओम भास्कराय नमः।
1: दोस्तों इसी संदेश के साथ आज के कार्यक्रम दिव्य दर्शन को यहीं विराम देते हैं। आशा है कि ये कुछ पल आपके मन को सुकून और दिन को सकारात्मक दिशा देंगे। मुस्कान के साथ दिन की शुरुआत करें, अच्छे विचारों को साथ रखें और शांति को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त समीर।

Hello, hello, hello. Mic check, 1, 2, 3. Energy check. Chai ready? Dil ready? मैं हूँ तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट शो बातें इधर की उधर की, जहाँ बातें सिर्फ होती नहीं, घुमा फिरा कर दिल तक पहुँचती हैं। यहाँ हम गॉसिप नहीं करते, हम हिस्ट्री को थोड़ा सा फन बना देते हैं। यहाँ फैक्ट्स बोर नहीं करते, वो डांस करते हुए आते हैं। कभी किसी चाय की कहानी में दुनिया देख लेते हैं, और कभी किसी सिंपल इंसान की स्टोरी में रेवोल्यूशन पकड़ लेते हैं। तो वॉल्यूम थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, स्माइल थोड़ी सी और वाइड कर दीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट में आपकी सोच थोड़ी सी अपग्रेड जरूर होने वाली है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये है बातें इधर की उधर की, ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM। जब एडवर्टाइजमेंट सिर्फ एडवर्टाइजमेंट नहीं, यादें बन जाती थी। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM, और मैं हूं आपके तरानों की हमसफर। आज जरा रेडियो के साथ एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। आंखें बंद कीजिए और सोचिए, टीवी पर एक बड़ा सा हरा भरा खेत है, क्रिकेट मैच चल रहा है, एक लड़का बैटिंग कर रहा है, और अचानक बाउंड्री के पार एक लड़की दौड़ती हुई आती है, हाथ में कैडबरी चॉकलेट लिए, चेहरे पर ऐसी खुशी कि बस क्या ही कहें। और बैकग्राउंड में वो धुन जो हमने सालों साल सुनी है, कुछ मीठा हो जाए। अरे अरे, आपने पहचान लिया ना? बस यही तो कमाल था पुरानी एडवर्टाइजमेंट्स का। उन्हें देखने के लिए इंटरनेट नहीं चाहिए था, उन्हें याद रखने के लिए फोन में सेव नहीं रखना पड़ता था। बस एक बार देखो और एक रील की तरह चल पड़ती हैं जब चाहो। कैडबरी और वो लड़की, वो डांस करती हुई खुश मिजाज ब्यूटीफुल सी लड़की जो अपने बॉयफ्रेंड के सिक्सर मारने पर डांस करती हुई कैडबरी लिए फील्ड में आ जाती है। 1990s का वो कैडबरी वाला विज्ञापन आपको याद है ना? ना कोई कॉम्प्लिकेटेड कहानी, ना 10 कैरेक्टर्स, ना हेलीकॉप्टर शॉट्स, बस प्योर खुशी, अनअडल्ट्रेटेड खुशी, सच्ची खुशी जो पूरी पूरी स्क्रीन को ब्राइट कर देती थी। चॉकलेट और एक जबरदस्त याद। आज के विज्ञापन में कभी कभी इतना कुछ हो जाता है कि प्रोडक्ट बेचने के बाद भी हम सोचते रह जाते हैं, अच्छा ये था किस चीज का एड। पुरानी एड्स में कहानी छोटी होती थी, लेकिन असर बहुत लंबा, बहुत लंबा। अब आते हैं धारा एड पर, धारा और जलेबी, वो एड जहां पे जिंगल शुरू होता है, धारा धारा शुद्ध धारा। एक बच्चा घर से भाग रहा है, उसकी माँ उसे रोकने की कोशिश कर रही है, और फिर पता चलता है जलेबी। बस उस एक छोटी सी कहानी में घर की खुशबू थी, माँ की आवाज थी, बचपन की शरारत थी, और सबसे बड़ी बात अपनापन था। देखते ही आपको लगता था, अरे ये तो मेरे घर की कहानी है। आज भी धारा बोलते ही लोगों के दिमाग में तेल से पहले जलेबी आ जाती है। यही होता है याद रह जाने वाला विज्ञापन और उसका असर, उसका कॉन्सेप्ट। हमारा बजाज और फिर एक आवाज, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर। नहीं नहीं, मैं रुकती हूं, क्योंकि बजाज का नाम आते ही आपके दिमाग में खुद ब खुद जिंगल चल जाता है, हमारा बजाज।
एक स्कूटर और उस स्कूटर के आसपास पूरा भारत, कॉलेज जाता लड़का, परिवार, शादी, बारिश, सड़क, छोटे शहर और बड़े सपने। उस विज्ञापन ने स्कूटर नहीं बेचा, उसने एक पूरी पीढ़ी की तस्वीर बना दी। हमारा बजाज मतलब हमारी सड़क, हमारा घर, हमारा देश और हमारी रोज की जिंदगी। फिर आते हैं बोरेलिन पर, हर घर की छोटी सी दुनिया। याद कीजिए, बोरेलिन कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं थी, लेकिन नाम सुनते ही दिमाग में एक पुराना सा डब्बा आ जाता था। घर में किसी को चोट लगी हो, बोरेलिन, होंठ फट गए, बोरेलिन, कुछ भी हुआ हो, घर का एक ही सलूशन था, बोरेलिन। इंडियन घरों में बोरेलिन कभी क्रीम नहीं थी, वो एक इमरजेंसी डिपार्टमेंट थी और उसकी पहचान इतनी मजबूत थी कि प्रोडक्ट से ज्यादा भरोसा याद रहता है। फिर आती है वो

भरोसा, एक चॉकलेट वेफर के साथ शरारत और एक छोटे से जिंगल के साथ पूरा बचपन। आज विज्ञापन बदल गए हैं, बहुत तेज हो गए हैं, बहुत शायद सुंदर भी, लेकिन कभी कभी दिल कहता है थोड़ा धीरे चलो यार, एक अच्छी कहानी सुनाओ, एक अच्छा जिंगल बनाओ जो कम से कम कल तक तो याद रहे, एक ऐसा चेहरा दिखाओ जो सिर्फ स्क्रीन पर ना हो बल्कि दिल में उतर आए। दोस्तों, मैं हूं आपके तरानों की हम सफर और आप सुन रहे थे बातें इधर की उधर की, ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM पर। आज जाने से पहले आप मुझे बताइए, आपके बचपन में वो कौन सा एडवर्टाइजमेंट था जिसका जिंगल आज भी आप बिना सोचे बिना याद किए बस गुनगुना सकते हैं? हो सकता है आपको प्रोडक्ट याद नहीं हो, लेकिन उस एड के साथ जुड़ी आपकी जिंदगी, आपकी अपनी जिंदगी आपको जरूर याद होगी। तो दोस्तों, आज का नॉस्टैल्जिया का डोज यही समाप्त होता है। अगली कहानी तक यादों का वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा कर रखिए, क्योंकि कुछ एडवर्टाइजमेंट्स टीवी पर खत्म हो गए लेकिन हमारे अंदर आज भी चल रहे हैं। नमस्कार।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: भैया, चाय की दुकानों पर आजकल चाय के कप इतने छोटे होने लगे हैं कि लगता है चाय नहीं पिला रहे हैं, पोलियो ड्रॉप्स पिला रहे हैं।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM और मैं हूं आपके तरानों की हमसफर आपकी आरजे तनुषा। आज जरा स्टूडियो के बाहर निकलते हैं, एसी वाले कमरे से सीधा मुंबई की सड़कों पर। जी हाँ, आमची मुंबई की सड़कों पर, जहां गाड़ियां रुकती कम है, भागती ज्यादा है, जहां लोगों के पास वक्त कम है, लेकिन कहानियां बहुत हैं। आज की बातें इधर की उधर की मुझे एक ऐसे ही मुंबई के ठेले तक ले गई। एक छोटा सा ठेला, उस पर सजी हुई नमकीन, वेफर्स और न जाने कितनी छोटी छोटी चीजें, और उसके पीछे खड़े थे एक इंसान जो सिर्फ सामान नहीं बेच रहे थे, वो अपनी जिंदगी का फलसफा सुना रहे थे, अपना जीवन जीने का तरीका बता रहे थे। आपने कभी सोचा है, हम सड़क के किनारे किसी ठेले के पास रुकते हैं और पूछते हैं, भैया कितने का दिया? वो कहता है, मैडम 70 रुपए। और हम कहते हैं, थोड़ा कम करो ना। और फिर 5 मिनट भाव ताव करने के बाद वो 2 रुपये बचाकर ऐसे खुश होते हैं जैसे आज का सेंसेक्स हमने ही चला दिया भाई। लेकिन हम अक्सर एक सवाल नहीं पूछते, इनफैक्ट कभी नहीं पूछते, आप यहाँ कब से हैं, रोज कितने बजे आते हैं, कितनी दूर से सामान लाते हैं, बारिश में क्या करते हैं, तबीयत खराब होती है तो उस दिन घर कैसे चलता है। और शायद इसीलिए हम उनके हाथ में पकड़ा हुआ पैकेट तो देख लेते हैं, लेकिन उन हाथों की कहानियां कभी नहीं देख पाते। मुंबई की बारिश को तो हम सब जानते हैं, कितनी क्रूअल और बेदर्द हो सकती है। आसमान खुला नहीं कि मुंबई वाले बोलते हैं, बस आज तो मुंबई रुकेगी। लेकिन मुंबई क्या कभी रुकती है? बिल्कुल नहीं। ट्रेन्स चलती हैं, लोकल्स चलती हैं, दुकानें खुलती हैं, टैक्सीज चलती हैं, और सड़क के किनारे वो छोटा सा ठेला भी अपनी जगह खड़ा ही रहता है। बारिश में सामान बचाना, प्लास्टिक से ढकना, ग्राहक को रोकना, खुद भीग जाना और फिर अगले दिन सुबह फिर वही जगह आ जाना। क्यों? क्योंकि रोज की रोटी को मौसम की छुट्टी नहीं मिलती दोस्तों, रोजी रोटी कहते हैं ना, बस यही है वो रोजी रोटी। हम मुंबई को अक्सर मरीन ड्राइव से देखते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया से देखते हैं, बड़ी बड़ी इमारतों से देखते हैं, ताज से देखते हैं, फिल्मों से देखते हैं, लेकिन मुंबई का एक और चेहरा है, वो ठेले वाला चेहरा, चाय वाला चेहरा, डब्बा पहुंचाने वाला चेहरा, फूल बेचने वाला मुंबई, वड़ा पाव वाला मुंबई, और वो आदमी जो सुबह सुबह अपना छोटा सा ठेला लेकर निकलता है और शाम को उसे वापस घर लेकर आता है। उसके लिए मुंबई कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं है, मुंबई उसका रोज का दफ्तर है और उसकी सड़क उसकी दुकान है। अगली बार जब आप किसी ठेले वाले से कुछ खरीदें, एक पल के लिए उसकी आंखों में देखिए, सिर्फ ये मत पूछिए कि भैया कितने का है, कभी बस ये पूछ लीजिए, कब से आ रहे हो आप यहाँ। आपको हैरानी होगी कितनी कहानियां मिलेंगी आपको इन ठेलों पर। किसी ने गांव से आकर शुरू किया होगा, किसी ने बाप का काम संभाला होगा, किसी ने नौकरी छूटने के बाद ठेला लगाया होगा, किसी ने बच्चों की पढ़ाई के लिए, और बस किसी ने जिंदगी को चलाए रखने के लिए। मुझे लगता है यही मुंबई की सबसे खूबसूरत बात है। यहां जगह छोटी हो सकती है, लेकिन सपने बहुत बड़े हैं। एक छोटा सा ठेला भी किसी के लिए पूरा परिवार होता है। उस पर रखा हर पैकेट सिर्फ सामान नहीं, किसी की फीस है, किसी का किराया है, किसी की दवा है,
किसी के घर का राशन है और कभी कभी किसी बच्चे का सपना है। वैसे मुंबई में एक चीज कमाल की है, यहां आदमी चाहे कितना भी बिजी हो, अगर रास्ते में उसका फेवरेट नाश्ता मिल जाए तो दुनिया 2 मिनट के लिए रुक सकती है। ऑफिस लेट हो जाएगा, ट्रेन छूट जाएगी, बॉस फोन करेगा, लेकिन लेकिन अरे पहले ये गर्मा गर्म ले लो। बस यही है हमारी इंडियन प्रायोरिटीज, और शायद इसी वजह से मुंबई की सड़कें सिर्फ ट्रैफिक से नहीं, खुशबू से भरी होती हैं। तो दोस्तों, अगर कभी आपको सच में मुंबई को समझना हो ना, तो सिर्फ ऊंची ऊंची इमारतों को मत देखिए, बीकेसी, कोलाबा, मरीन ड्राइव, इनसे आगे बढ़िए, नीचे भी देखिए और उस सड़क को देखिए जहां कोई अपना छोटा सा ठेला लगाकर सालों से खड़ा है। उसके पास शायद कोई बड़ी दुकान नहीं, कोई चमकता बोर्ड नहीं, कोई विज्ञापन नहीं, लेकिन उसके पास है मेहनत, धैर्य और रोज रोज मतलब रोज सालों साल फिर से शुरू करने की वो हिम्मत, वो ताकत, और यही शायद मुंबई है। हर सुबह खुद को फिर से खड़ा कर लेना। आज की बात एक छोटे से ठेले से शुरू हुई थी, लेकिन बात शायद ठेले से बहुत आगे निकल गई। हम सब अपनी अपनी जगह कुछ बेच रहे हैं, कोई अपना वक्त, कोई अपनी कला, कोई अपनी मेहनत, कोई अपनी आवाज, कोई अपना हुनर। फर्क सिर्फ इतना है, किसी की दुकान बड़ी है, किसी की छोटी, लेकिन हर दुकान के पीछे एक इंसान है और हर इंसान के पीछे एक कहानी है। तो अगली बार सड़क के किनारे किसी ठेले पर जब आप रुकें, भाव ताव जरूर कीजिए, लेकिन इज्जत के साथ, और हो सके तो एक सवाल एक्स्ट्रा पूछिए, भैया आपकी कहानी क्या है। हो सकता है आपको किसी सामान से ज्यादा कीमती चीज मिल जाए, एक कहानी। मैं हूं आपके तरानों की हम सफर, और आप सुन रहे थे बातें इधर की और उधर की, ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तांतिया भील 90.8 FM पर। और आज का सवाल, आपके शहर में वो कौन सी छोटी सी दुकान या कौन सा ठेला या कौन सा इंसान है जिसे आप रोज देखते हैं लेकिन कभी कभी उसकी कहानी नहीं पूछी। कभी पूछ के देखिए, हर शहर इमारतों से नहीं बनता, शहर उन लोगों से बनता है जो हर सुबह उसे फिर से जिंदा करते हैं। हर शहर इमारतों से नहीं बनता, शहर उन लोगों से बनता है जो हर सुबह उसे फिर से जिंदा कर देते हैं।

0: एक दीवाना शहर में,
1: एक दीवाना नहीं एक दीवानी भी।

पान सिर्फ चबाने की चीज नहीं, एक जिंदा रिवायत। दोस्तों, भारत में अगर आप कत्था, चूना, सुपारी इनका नाम लो तो दिमाग में कौन सी तस्वीर उभर कर आती है, ये तो हम सब जानते हैं। हाँ, बिल्कुल सही, एक छोटी सी दुकान, ऊपर गोरी का मकान। नहीं, एक छोटी सी दुकान, कान के पीछे कलम लगाए हुए दुकानदार, चमकते स्टील के डब्बे और बीच में हरा हरा पान। लेकिन सच बताऊं, पान सिर्फ

आया नहीं जाता, पान तो बनाया जाता है। और पान बनाना एक कला है। जी हाँ, भारत आके देखिए, आपने कभी गौर से देखा है नुक्कड़ पर बैठे वाले पान वाले को? वो सिर्फ बेच नहीं रहा होता, वो रचना कर रहा होता है। सबसे पहले हरा ताजा पत्ता, बिल्कुल साफ, बिल्कुल चमकदार, जैसे किसी ने बारिश के बाद पेड़ से तोड़ कर निकाला हो। फिर आता है चूना, हल्का सा, ज्यादा नहीं, ना ज्यादा ना कम, उंगली की नरमी से लगाया जाता है बड़े प्यार से। फिर कत्थे की एक परत,

0: आप अपनी पसंद बताओ और जिंदगी आपको अपना पान बनाकर देती है। आजकल नए नए पान भी आ गए हैं भाई, चॉकलेट पान, फायर पान, आइस पान। लेकिन असली मजा तब है जब दुकानदार आंखों में देखकर पूछे कौन सा बनाऊं और आप मुस्कुराकर कहो भैया जो बेस्ट हो, क्योंकि पान में भरोसा भी लगता है। कभी आप शाम को निकलकर बस 5 मिनट के लिए किसी पान वाले को देखिए, उसकी उंगलियों का चलना, उसकी नजर का अंदाजा, उसकी आवाज, लो जी तैयार है, वो एक कलाकार है, बिना स्टेज का, बिना तालियों का। उसका काम रोज होता है, रोज लोग आते हैं और रोज उसकी कला लोगों के मुंह में घुल जाती है। इसलिए जब अगली बार आप पान खाएं, बस चबाकर थूक मत देना, थोड़ा महसूस करना। ये पत्ता कहां से आया होगा, कितने हाथों से गुजरा होगा, कितनी रिवायत जोड़ी होगी इसमें। पान सिर्फ एक पत्ता नहीं, ये गलियों का गीत है, शादियों की हंसी है, दोस्ती का ठहराव है और भारत की एक जीती जागती परंपरा है। तो बताइए आप कौन सा पसंद करेंगे, बनारसी, कोलकाता वाला, हैदराबादी जाफरानी या बस एक सादा मीठा। जो भी हो, जिंदगी का स्वाद तभी आता है जब उसमें थोड़ा सा कत्था हो, थोड़ा सा चूना और बहुत सारा प्यार। चलिए दोस्तों, आज के पान का स्वाद यहीं छोड़ते हैं, मिलते हैं अगले मोड़ पर एक और कहानी के साथ।
1: अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए। अरे ऐसा झटका लगे जिया पे पुनर्जन्म हो जाए।

तो दोस्तों, आज की बात ने आपको थोड़ा सा इंस्पायर जरूर किया होगा, थोड़ी सी स्माइल जरूर दी होगी, या थोड़ा सा सोचने पर मजबूर तो जरूर किया होगा। मेरा मिशन तो अकम्प्लिश्ड है। मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और ये था आपका शो बातें इधर की उधर की, सिर्फ SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, थोड़ा ह्यूमर, थोड़ा हार्ट और थोड़ा हटके लेकर एंगल। तब तक के लिए याद रखिए, स्टोरीज हर जगह होती हैं, बस उन्हें सुनाने का नजरिया चाहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे क्यूरियस। बाय।

0: wonderful phrase. Hakuna Matata ain't no peasant craze.
1: दोस्तों, प्रेरणादायक गीतों के साथ प्रेरणादायक बातों के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। प्रेरणा मोटिवेशन इतना जरूरी क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि हमें जिंदगी बेहद खूबसूरत तरीके से हंसते खेलते गुजारनी है, रोते धोते नहीं। तो आइए दोस्तों, दिन की शुरुआत करते हैं हंसते खेलते हुए प्रेरणादायक गीतों के साथ और करते हैं प्रेरणादायक बातें।
0: What a wonderful phrase, Hakuna Matata.
1: दोस्तों, डर से डरने की कोई जरूरत नहीं है। बड़ी मजेदार वाली बात है, आपका डर महज एक भाव के अलावा कुछ भी नहीं होता, जो आपकी कल्पना से और बढ़ता जाता है। डर को आप खुद चुनते हैं, लेकिन सफल लोग अपने इस डर को कभी खुद पर हावी नहीं होने देते। वो अपने डर को अपनी सफलता की सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करते हैं। वो हर उस चीज से लड़ते हैं जिससे वो डरते हैं और उस पर जीत हासिल करते हैं। वो खुद को विश्वास दिलाते हैं कि वो अपने डर से लड़ सकते हैं। बस आपको भी अपने डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए। बने रहिए आरजे समीर के साथ। हर वक्त जीतने का जज्बा होना चाहिए, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले समय जरूर बदल जाता है। और तब

आने वाली दुनिया कैसी होगी समझाओ, हमसे ना छुपाओ बच्चों हमें तो बताओ, आने वाली दुनिया कैसी होगी समझाओ।

0: दोस्तों, मैं लाया हूं कुछ बेहद सुंदर कहानियां जो हमें प्रेरित करेंगी, बहुत कुछ सिखाएंगी। तो लीजिए सुनिए।
1: आत्मा से तृप्त लोग कैसे होते हैं। मेरे एक मित्र बस स्टैंड पर बैठे अपने शहर जाने वाली बस का इंतजार कर रहे थे। अभी बस स्टैंड पर लगी नहीं थी। महाशय बैठे बैठे एक किताब पढ़ रहे थे, तभी लगभग 10 साल की एक बच्ची पास आकर बोली, बाबूजी पेन ले लीजिए, 10 के 4 दे दूंगी, बहुत भूख लगी है, कुछ खा लूंगी। उसके साथ एक छोटा सा बच्चा था, शायद भाई होगा उसका। मेरे मित्र ने कहा कि उसे पेन तो नहीं चाहिए। इसके जवाब में उसका सवाल बहुत ही प्यारा सा था, तो फिर हम कुछ खाएंगे कैसे। मित्र ने कहा, बेटा पेन तो नहीं चाहिए पर तुम कुछ खाओगे जरूर। और फिर उन्होंने बैग में से बिस्किट के 2 पैकेट निकाले और दोनों को पकड़ा दिए। लेकिन मेरे मित्र की हैरानी की सीमा न रही जब उस बच्ची ने 1 बिस्किट का पैकेट वापस कर दिया और कहा, बाबूजी हमारे लिए 1 काफी है। मेरे मित्र जवाब सुनकर चौंक गए। उन्होंने दोबारा कहा, अरे रख लो, कोई बात नहीं। लेकिन मेरे मित्र की आत्मा को झिंझोड़ दिया उस बच्ची के जवाब ने, जब उसने कहा, तो फिर आप क्या खाएंगे। दोस्तों, इस संसार में करोड़ों अरबों कमाने वाले लोग इंसानियत को ताक पर रखकर लोगों को बेतहाशा लूटने में लगे हुए हैं। वहां एक भूखी बच्ची ने मानवता की पराकाष्ठा का पाठ पढ़ा दिया। मैंने अंदर ही अंदर अपने आप से कहा, इसे कहते हैं आत्मा के तृप्त लोग। लोभवश किसी से भी इतना ना लेना कि उसके हिस्से का भी हम खा जाएं। मानवता की पराकाष्ठा का पाठ है, बहुत सुंदर।
0: दोस्तों, मैं बस अब भी आता हूं, जाइएगा नहीं कहीं। एक और कहानी लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहा हूं। तब तक ये गीत सुनिए।

अगुआ कैलाश सत्यार्थी ने जब नन्हे अमर के हाथों में पत्थर का बड़ा टुकड़ा देखा तो वो ठिठक गए। वो फौरन अमर के माता पिता से बात करने के लिए पहुंचे ताकि उन्हें समझा सकें कि ये जुल्म है, ये तो इस बच्चे के खेलने कूदने पढ़ने लिखने के दिन है। अब जिनके पुरखों ने कभी स्कूल न देखा हो तो वो भला क्या समझेंगे शिक्षा की कीमत। उनके लिए तो बाल मजदूरी कोई अनहोनी बात थी नहीं, क्योंकि वो सब यही तो करते हुए बड़े हुए थे। मगर कैलाश सत्यार्थी उन्हें समझाने में जुटे रहे कि उनका बेटा किसी बड़े काम के लिए बना है। उन्होंने अमर के पिता से कहा कि यदि वो अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्च वहन नहीं कर सकते तो जयपुर में एक बाल आश्रम है जो इसकी जिम्मेदारियां उठा सकता है। गरीब माता पिता भी बेटों का भला चाहते थे और उनके दिल में भी तरह तरह की तमन्नाएं थीं। कैसे अपनी संतान को नजरों से इतना दूर भेज दें। बिछो के ख्याल से ही उनका दिल कांप उठा। लरजती हुई आवाज में अमर के पिता ने सत्यार्थी जी से बस यही कहा कि वो पहले जयपुर आश्रम जाकर वहां रह रहे बच्चों को देखेंगे, फिर फैसला करेंगे। माता पिता दोनों जयपुर बाल आश्रम आए। असंतोष की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, क्योंकि जैसी जिंदगी वे अपने बच्चों को दे रहे थे उससे आश्रम के जीवन की कोई तुलना ही नहीं थी। अमर अपने दो बड़े भाइयों के साथ जयपुर आश्रम आ गए। वो सब बेहद खुश थे क्योंकि वहां वे अपनी मर्जी से खेल सकते थे, पढ़ लिख सकते थे। 6 महीने तक आश्रम में पढ़ने के बाद अमर और उनके भाइयों का औपचारिक शिक्षा के लिए एक सरकारी स्कूल में दाखिला करा दिया गया। अमर ने वहीं से 12वीं की अपनी शिक्षा पूरी की। बाल आश्रम ने अमर और उनके भाइयों को एक नई जिंदगी दी, बल्कि अमर के नेतृत्वकारी गुण को भी बहुत अच्छी तरह से निखारा। वो कई बार बाल आश्रम बाल सभा के अध्यक्ष चुने गए। आश्रम में ही उन्होंने सत्यार्थी के बेटे भुवन से संवाद करने का मौका मिला, जो पेशे से वकील है। जैसे जैसे अमर बड़े और शिक्षित हुए, उनका यकीन पुख्ता होता गया कि कानून ही वो जरिया है जिसकी मदद से बच्चों को शोषण से मुक्ति दिलाई जा सकती है। साल 2013 में उन्होंने लॉ कॉलेज में दाखिला लिया और 2018 में कानून में स्नातक की डिग्री हासिल करने के बाद 2019 में उन्होंने प्रैक्टिस शुरू कर दी। करीब 6 महीने तक दिल्ली के 30,000 कोर्ट में वकालत करने के बाद 1.5 साल तक अमर ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक वरिष्ठ वकील के साथ काम भी किया और उसके बाद वो अपनी संस्था के लिए काम करते रहे। वो न सिर्फ बाल मजदूरों के मुक्ति अभियान में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, बल्कि जिस किसी गांव के बारे में उन्हें पता चलता है कि वहां बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जा रहा, अमर वहां पहुंचकर अपनी कहानी सुनाते हैं और परिजनों को प्रेरित करते हैं कि वे अपने बच्चों का भविष्य बचा लें। अमर को स्वीडन और नीदरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों को संबोधित करने का भी मौका मिला, जहां उन्होंने बच्चों के अधिकारों और बाल विवाह के खिलाफ दुनिया का ध्यान खींचा। अमर के माता पिता के पास जोधपुर में अब अपना घर है। जब भी कोई उनसे पूछता है आपका बेटा दिल्ली में वकील है, अमर के अभिभावकों के लिए ये गौरव का क्षण होता है। उनके दूसरे बेटा बेटी भी अब नौकरी करते हैं, मगर इन वर्षों में अमर बार बार अपने समुदाय के बीच लौटते हैं। नतीजन उनके बंजारा समुदाय के अब लगभग सभी बच्चे स्कूल जाते हैं। इलाके के खानाबदोश समुदायों के सामने मिसाल के तौर पर उनकी कहानी पेश की जाती है। मानना होगा कि अमर ने हाशिए पर जीने वाले हरेक बच्चे के हक की लड़ाई लड़ी है। अब अपने बचपन को उन्होंने हमेशा अपने भीतर जिंदा रखा है ताकि वो उन्हें याद दिलाता रहे हजारों बाल श्रमिकों को अमर की तलाश है।

दोस्तों, रेडियो सुनना इतना जरूरी क्यों है, आइयो बताता हूं। प्रकृति ने हमें बनाया ही ऐसा है। जब हम कुछ सुनते हैं तो उसकी छवि, उसकी पिक्चर अपने दिमाग में बनाते हैं। तो रेडियो सुनने से हम तमाम क्रिएटिविटी को, अपनी रचनात्मकता को मजबूत करते हैं, अपने दिमाग में पिक्चर्स बनाते हैं, छवियां बनाते हैं और खुश होते हैं। तो इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए। बेशक हर दिन अच्छा नहीं होता, लेकिन हर दिन कुछ ना कुछ तो अच्छा जरूर होता है।

0: अगर आप कुछ ऐसा पाना चाहते हैं जो आपने पहले कभी नहीं पाया, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपने पहले कभी नहीं किया।
1: मुश्किल का नाम मिट जाएगा।

0: सर, इतनी तेज चलाने की क्या जरूरत है सर?
1: जिंदगी में मैंने कभी हार नहीं मानी विनोद, और वो भी एक गलत तरीके से ओवरटेक करती हुई गाड़ी से।
0: That's the spirit, sir.

दोस्तों मैं बस अब भी आता हूँ, जाइएगा नहीं कहीं, एक और कहानी लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहा हूँ। तब तक ये गीत सुनिए।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं समीर। देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। लीजिए दोस्तों, सुनते हैं हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कविता। हरी हरी दूब पर ओस की बूंदें अभी थीं, अभी नहीं है। ऐसा खुशियां जो हमेशा हमारा साथ दे, कभी नहीं थी, कहीं नहीं है। कंक्यार की कोख से फूटा बाल सूर्य जब पूरब की गोद में पांव फैलाने लगा, तो मेरी बगीची का पत्ता पत्ता जगमगाने लगा। मैं उगते सूर्य को नमस्कार करूं या उसके ताप से भाप बनी उसकी बूंदों को ढूंढूं? सूर्य एक सत्य है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता, मगर ओस भी तो एक सच्चाई है। ये बात अलग है कि ओस क्षणिक है, क्यों ना मैं क्षण क्षण को जीऊं, कण कण में बिखरे सौंदर्य को पीऊं। सूर्य तो फिर भी उगेगा, धूप तो फिर भी खिलेगी, लेकिन मेरी बगीची की हरी हरी दूब पर ओस की बूंद हर मौसम में नहीं मिलेगी।

0: मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
1: हमारे देश में भयंकर वाली टेक्नोलॉजीज चलती हैं। अमेरिका के दो साइंटिस्ट एक बात सुनकर हमारे देश की बेहोश हो गए जब उन्हें पता चला कि घर में अगर चप्पल उल्टी रखती जाए तो लड़ाई हो जाती है।
0: दोस्तों, मैं हूं आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले आइए ना एक गीत सुन लेते हैं।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: सेल्समैन ने कहा, सर कॉकरोच के लिए पाउडर लेंगे क्या? पप्पू ने कहा, नहीं, हम कॉकरोच को इतना लाड़ प्यार नहीं करते, आज पाउडर लगा देंगे, कल परफ्यूम मांगेगा।
2: तो दोस्तों, इसी तरह हंसते रहिए अपने दोस्त आरजे समीर के साथ। आप हैं झाबुआ की अपनी आवाज रेडियो टंटिया भील 90.8 एफएम के साथ। थोड़ा थोड़ा करके, दिन दिन करके, जो आपके लिए बना है वो आपको ढूंढ ही लेगा।

0: matter. What a wonderful phrase.
1: Hakuna Matata. Ain't no peasant craze.
2: दोस्तों आज के इस हंसी खुशी के प्रेरणादायक प्रोग्राम में बस

0: इतना ही। खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, कल फिर मिलता हूँ। Hakuna Matata, what a wonderful
1: phrase. Hakuna Matata. नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
2: कोयले की कहानी।
3: दोस्तों जरा पहचानिए तो, ये आवाज किसकी है? पहचानिए पहचानिए। ये भाप के इंजन की आवाज है। क्या आपको ये मालूम है कि भाप के इंजन को चलाने में कौन सा ईंधन इस्तेमाल होता था? तो चलिए हम बता देते हैं, वो ईंधन था कोयला। क्या आपने कोयला देखा है? आजकल कोयले का इस्तेमाल ज्यादा नहीं होता। आइए सुनते हैं कोयले की कहानी उसी की जुबानी।

अरबों सालों में बन पाया था, गहराई में दबा पड़ा था, प्राकृतिक प्रक्रमों के चलने से, घने जंगलों के दबने से, मिट्टी की परतें जमने से, दाब ताप के फिर बढ़ने से, कार्बनीकरण प्रक्रिया के चलने से, धीरे धीरे हौले हौले मृत वनस्पति बदली मुझमें।

0: उल्टा फंदे से, फंदे से, फंदे से, रस्सी कहे अचंभे से, मेरा धागा तेरे पास सदा मिलेगी तुझको खास।
1: बड़ मक्कड़ बम्बे बाओ, बम्बे बाओ, बम्बे बाओ,
2: अक्कड़
1: बक्कड़ बम्बे बाओ, अस्सी नब्बे पूरे सौ, सौ में निकला धागा तो

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो टंट्या भील 90.8 FM, जाबुआ की आवाज।
1: चरवाहा।

0: अरे किशन, किशन बेटा कहाँ है तू?
1: क्या है काका?
0: आज पाठशाला नहीं जाना
1: है काका? आज तो रविवार है।
0: ओ, मैं तो भूल ही गया, आज तो तुम्हारी रविवार की छुट्टी है। सुन तो जा, आज तू ही पशु चरा ला।
1: काका मुझे तो आज पाठ याद करना है।
0: ओफो, तुझे तो बस सारा दिन पाठ ही याद करना है। ऐसा कर, पुस्तक साथ ही लेता जा, पशु चरते रहेंगे और तुम अपना पाठ याद कर लेना।
1: वाह काका, जब मैं पाठ याद करता हूँ ना तो पूरा ध्यान पुस्तक में ही रखता हूँ, इधर उधर नहीं देखता।
0: अरे शाम को आकर पाठ याद कर लेना। ये ले, पकड़ लाठी और ले जा पशुओं को चराने। और हाँ, ये ले डिब्बा, इसमें भात है।
1: अच्छा,
0: दोपहर को खा लेना। मुझे तो आज शहर जाना है।
1: तब तो ठीक है काका। हाँ काका, मेरे लिए शहर से हिंदी की पुस्तक लेते आइएगा।
0: ठीक है बेटा, तुम्हारी हिंदी की पुस्तक लेता आऊंगा।
1: चल शेरू, चल दोस्त, आज तुझे भी खूब घुमाऊंगा, चला मेरे साथ।
2: किशन पशुओं को लेकर चरागाह में जा पहुंचा। वो आज बहुत खुश था। पशु हरी हरी घास चरने लगे। किशन अपने पशुओं का पूरा पूरा ध्यान रखता कि उसके पशु किसी के खेत में घुसकर कोई नुकसान ना कर दे। वो एक पेड़ की छाया में जा बैठा। उसने भात का डिब्बा खोला ही था तभी उसकी दृष्टि सामने के खेत पर जा पड़ी। उसने देखा बहुत सारे पशु मुखिया काका के खेत में घुस आए हैं और दूर तक फैली हुई तरबूज और खरबूजों की बेलें तोड़ तोड़ कर खा रहे हैं और इधर उधर फेंक रहे हैं। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा।
3: अरे ओ शर्मू, ओ शर्मू किधर है तू भाई? अरे कोई है? वो देखो, शंभू के पशु मुखिया काका का खेत उजाड़ रहे हैं। ओए हुर्रिया, हप हप हप, चलो चलो चलो, हे हा।
4: अरे ये चादर ओढ़े कौन सो रहा है? कौन है भाई? कौन है भाई?
5: अरे चादर क्यों खींच रहा है, क्यों चिल्ला रहा है?
6: सोने भी नहीं देता।
4: अरे शंभू, तू तो आराम से सो रहा है, सामने देख। अरे उठना, तेरे पशु मुखिया काका का खेत उजाड़ रहे हैं।
5: ओफो, तुझे क्या, तेरा खेत तो नहीं उजाड़ रहे, जा जाकर अपना काम कर।
4: अरे शंभू, कैसा आदमी है रे तू,
5: क्यों परेशान कर रहा है? चल जा यहां से, सोने भी नहीं देता। जा जाकर तू ही पशुओं को बाहर निकाल दे।
4: अरे इतने सारे पशु, मैं अकेले कैसे निकालूंगा? देख, अरे देख ना किस बुरी तरह से खेत को उजाड़ रहे हैं।
5: एक बार कह दिया ना, तेरा खेत तो नहीं है, फिर तुझे क्या परेशानी है? मेरी समझ में नहीं आ रहा।
4: खेत तो सभी के होते हैं, आज तेरे पशु मुखिया काका के खेत में घुसे हैं, कल तेरे खेतों में किसी और के पशु भी घुस सकते हैं।
5: ओफो,
4: तब तेरी समझ में आएगा।
5: अच्छा जा जा जा जा जा, मुझे सोने दे।
4: किसी का खेत उजड़ रहा है और इसे कोई चिंता ही नहीं।
2: भागता भागता किशन मुखिया काका के खेत में जा पहुंचा और अकेले ही लाठी घुमाते हुए खेत में से पशुओं को निकालने लगा। शेरू भी भौं भौं करके पशुओं को भगाने में उसकी मदद करने लगा। इतने में ही किशन ने दूर से देखा मुखिया काका उसी की तरफ आ रहे हैं।
3: चलो चलो चलो आ
7: आ आ आ अरे किशन, तुम खेत में क्या कर रहे हो?
4: मुखिया काका, पशु खेत में घुसाए थे, उन्हें निकाल रहा था।
7: अरे ये सब तरबूज और खरबूजे कैसे बिखरे हैं? किसने किया ये सब?
4: वो काका शंभू है ना,
7: हाँ।
4: उसके पशु खेत में

0: और बोले,
1: मेरा किशन बड़ी काम का है, अपने साथ साथ औरों का भी ध्यान रखता है, ये बड़ी अच्छी बात है, बड़ा बहादुर है, अकेले ही इतने पशुओं को भगा दिया और दूसरे के खेत को उजड़ने से बचा लिया। इधर आ बेटा, शाबाश।
2: काका,
1: जा बेटा, पहले कुछ खा ले, फिर अपना पाठ याद करना।
2: अच्छा काका, चल शेरू आ।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM झाबुआ की आवाज़।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: तो श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि हर कार्यक्रम में हम आपके लिए कोई ना कोई सुविचार लेकर आते हैं, तो आज आपके लिए प्रस्तुत करते हैं सबसे पहले एक सुविचार।
2: तो सुविचार है,
1: द वन हु चेजेस टू रैबिट्स गेट्स नन, यानी
2: जो दो खरगोशों का पीछा करता है वो किसी को भी नहीं पकड़ पाता।
1: वो किसी को भी पकड़ नहीं पाता। तो श्रोताओं, इस सुविचार का अर्थ ये हुआ कि हमें एक साथ

0: सारे लक्ष्य नहीं रखने चाहिए,
1: मात्र एक लक्ष्य पर स्वयं को केंद्रित करना चाहिए।
0: जी हाँ, तो जब भी कोई काम करें तो उसी पर अपने लक्ष्य को साध करके रखें, सफलता आपके सामने होगी। साथियों, अब बारी है श्रोताओं की प्रतिक्रियाओं को जानने की। हमारे एक श्रोता मित्र ने लिखा है, प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, मैं ब्लाइंड हूँ, मेरा नाम भी दीजिए प्रोग्राम में। तो दोस्त, आपकी प्रतिक्रिया के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन समस्या ये है कि आपने अपना नाम नहीं बताया।
1: सभी श्रोताओं से निवेदन है कि कृपया अपना नाम जरूर बताइए
0: और अपना पता और राज्य का नाम भी जरूर बताइए,
1: और हाँ, संपर्क बनाए रखिए।
0: एक और श्रोता की प्रतिक्रिया हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए, और इस श्रोता ने लिखा है,
1: अजीत जी और विमलेश जी को मेरा सप्रेम नमस्कार।
0: मैं कान्हाराम चौहान, गाँव खिंदासर, तहसील कोलायत, जिला बीकानेर, राजस्थान से। हमारा अपना कार्यक्रम उमंग मैं नियमित रूप से सुनता हूँ। इसमें दी जाने वाली जानकारियाँ मनोरंजक के साथ साथ बड़ी ही ज्ञानवर्धक होती हैं। विगत दिनों में इंसुलिन की कहानी आपने सुनाई, वो मुझे बहुत ही अच्छी लगी, इसके लिए CIET NCERT का धन्यवाद।
1: श्रोता मित्रों, जो कान्हाराम जी ने लिखा है वो एक सैंपल है।
0: सैंपल सुनाने का तात्पर्य ये था कि इसी प्रकार आप अपने बारे में भी लिख सकते हैं, यानी नाम,
1: जगह,
0: जिला और
1: राज्य।
0: तो आइए चलते हैं आज के कार्यक्रम में, और आज के कार्यक्रम के द्वारा यात्रा करते हैं एक विचित्र संसार की,
1: जहां कुछ भी हमारी दुनिया की तरह नहीं है।
0: सुनते हैं कार्यक्रम गुलिवर की विचित्र यात्राएं।
2: मैं एक जहाज पर नौकरी करता था। नौकरी करते हुए मैंने कई लंबी लंबी यात्राएं की। एक बार दक्षिणी सागर से पूर्वी द्वीप समूह की ओर जाते हुए हमारा जहाज तूफान में फंसकर चकनाचूर हो गया। सौभाग्य से मैं तैरकर किनारे आ गया और थक कर वहीं लेट गया। बाद में पता चला कि ये लिलिपुट द्वीप है। जब मेरी नींद खुली तो मैंने अपने आप को पतले पतले धागों से बंधा पाया। मैं आश्चर्य में पड़ा सोच ही रहा था कि कोई चीज मेरे पैरों पर रेंगती रेंगती मेरी छाती पर आ खड़ी हुई। ये एक मानव आकृति थी, बहुत ही छोटी सी। कुछ देर बाद उसी प्रकार के कई प्राणी मेरे शरीर पर चढ़ाए। मैं जोर से चिल्ला उठा, कौन हो तुम? मेरा चिल्लाना था कि वो लोग लुढ़कते पुढ़कते और चीखते चिल्लाते भागे। इसके बाद मैंने उठने का प्रयत्न किया तो कुछ धागे टूट गए। ये देख उन लोगों ने सुई जैसे पतले पतले तीरों की वर्षा शुरू कर दी। मैं समझ गया कि चुपचाप लेटे रहने में ही भलाई है। अब उन अद्भुत प्राणियों ने तीर बरसाना बंद कर दिया। उनमें से एक कुछ दूर ऊंचाई पर खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाकर कुछ कहने लगा। मैंने हाथ हिलाकर उसे समझाने का प्रयत्न किया कि मैं उसकी भाषा नहीं समझता। फिर बार बार अपना हाथ मुंह की ओर ले जाकर मैंने इशारा किया कि मैं भूखा हूं। वो मेरे

सिखाने के लिए नियुक्त कर दिया। कुछ दिनों में मैंने उन लोगों की भाषा सीख ली। मेरे स्वभाव और व्यवहार से वे लोग बहुत खुश थे। अब वे निडर होकर मेरे पास आते, कभी वे मेरे सिर पर उछलते कूदते और कभी नाचने लगते। बच्चे तो मेरे बालों में आंख में चौनी खेलते। इस तरह मैं सबका खिलौना बना हुआ था। एक दिन मैंने बादशाह से अपनी मुक्ति के लिए प्रार्थना की। उसने मुझे इन शर्तों पर मुक्त करना स्वीकार किया कि मैं बादशाह की आज्ञा के बिना कहीं ना जाऊं और किसी देश से युद्ध छिड़ जाने पर मैं लिलिपुट वासियों की सहायता करूं। कुछ दिन बाद मुझे ज्ञात हुआ कि पड़ोसी देश ब्लेफुस्कू के बादशाह ने एक शक्तिशाली जहाजी बेड़ा तैयार कर लिया है। वो लिलिपुट पर चढ़ाई करने का अवसर देख रहा है। शर्त के अनुसार मैंने उन लोगों की सहायता करने की एक योजना बनाई। कुछ रस्सियां और कांटे लेकर मैं ब्लेफुस्कू की खाड़ी की ओर चल दिया। ये खाड़ी मेरे लिए विशेष गहरी न थी, पर उन लोगों के लिए तो ये महासागर से कम न थी। मैंने खाड़ी में घुसकर वहां खड़े सब जहाजों को कांटों में फंसा लिया और उन्हें खींचता खींचता लिलिपुट की ओर चल दिया। ब्लेफुस्कू के सैनिक मेरे ऊपर तीर बरसाने लगे, पर चश्मे और चमड़े के कोट के कारण उनके तीर मेरा कुछ भी ना बिगाड़ सके। ब्लेफुस्कू के जहाजों को खींचकर जब मैं लिलिपुट की खाड़ी में ले गया तो वहां के बादशाह और लोगों ने प्रसन्नता से उछल उछल कर मेरा स्वागत किया। बादशाह ने मुझे अपने देश की सबसे बड़ी उपाधि से सम्मानित किया। एक दिन मैं लिलिपुट खाड़ी के किनारे घूमता घूमता दूर जा निकला। वहां मुझे पानी में एक बड़ा तख्ता तैरता दिखाई दिया। ध्यान से देखने पर ज्ञात हुआ कि वो एक उल्टी हुई नाव थी। उसे देखकर मैं खुशी से नाच उठा। ये नाव नहीं, मेरी आशाओं का दीपक थी। कुछ दिन बाद मैंने बादशाह से अपने देश जाने की आज्ञा मांगी। उन्होंने मुझे बड़े प्रेम से विदा किया और बहुत सी भोजन सामग्री मेरी नाव पर लदवा दी। सौभाग्य से रास्ते में मुझे एक जहाज दिखाई दिया। नाविकों ने मुझे जहाज पर चढ़ा लिया। ये देख मेरी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा कि जहाज मेरे ही देश का था। लिलिपुट से लौटकर 2 महीने तक मैं घर पर ही रहा। उसके बाद मुझे फिर जहाज पर काम मिल गया। कुछ दिन बाद हमारा जहाज हिंदुस्तान के लिए रवाना हुआ। अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पर चलते चलते हमारा जहाज तूफान में फंसकर रास्ता भूल गया। भटकते भटकते एक टापू के पास पहुंचा। नाविक तो जहाज की देखभाल में लग गए और मैं अपने कुछ साथियों के साथ नाव लेकर पानी की तलाश में टापू की ओर चल दिया। मुझे पानी कहीं न मिला। पेड़ की ठंडी छाया देख
मैं वहीं लेट

जब मैं नाव की ओर लौटा तो क्या देखता हूं कि मेरे साथी नाव को तेजी से जहाज की ओर लिए जा रहे हैं। मैं उन्हें आवाज देने ही वाला था कि मेरी नजर एक विशालकाय आदमी पर पड़ी। आदमी क्या, वो तो पूरा राक्षस था। समुद्र का पानी उसके घुटनों तक ही आ रहा था। उसे देख अपनी जान बचाने के लिए मैं एक खेत में जा छिपा। कहने को तो ये जौ का खेत था, पर जौ के पौधे हमारे देश के पेड़ों से कम ऊंचे न थे। पेड़ तो पहाड़ की चोटी की समता करते थे। जौ के पौधों की आड़ में छिपे छिपे मैंने देखा कि कुछ आदमी उसी खेत की ओर आ रहे हैं। उन्होंने जौ काटने शुरू किए तो एक की नजर मुझ पर पड़ी। उसने खिलौने की तरह मुझे उठाकर हथेली पर रख लिया। मुझे लगा कि मैं एक ऊंचे पेड़ की टहनी पर चिड़िया की तरह बैठा हूं, पर क्या मैं चिड़िया की तरह आजाद था? उस लंबे चौड़े किसान ने मुझे उलट पलट कर देखना शुरू किया तो मैं डर के मारे चीखने लगा। ये देख उसने मुझे धीरे से जमीन पर रख दिया। मेरी जान में जान आई। मैंने चिल्ला चिल्ला कर उसे अपने बारे में बताना चाहा, पर वो समझे तब ना। उसने मुझे बड़ी सावधानी से उठाकर अपनी चौड़ी हथेली पर रख लिया और अपने घर ले आया। घर लाकर जैसे ही किसान ने अपनी पत्नी को दिखाने के लिए हथेली उसकी ओर बढ़ाई तो मुझे देखकर वो स्त्री इस तरह डर गई जैसे कोई सांप बिच्छू को देखकर डर जाए। ये देख किसान को बड़ा मजा आया और वो खिलखिलाकर हंस पड़ा। मुझे लगा कि आंधी चल रही है और बादल गरज रहे हैं। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर चारों ओर देखने लगा। वहां सभी प्राणी और सभी चीजें बड़े बड़े आकार की थीं। नांद जैसे प्याले, बड़े बड़े थालों जैसी रोटियां, शेर शेरनी जैसे कुत्ते बिल्लियां, छोटे से छोटा बच्चा भी मुझसे चौगुना लंबा चौड़ा। इन सबके बीच में मैं अपने आप को मक्खी मच्छर जैसा अनुभव कर रहा था। लिलिपुट के लोग मुझे देखकर जितना हैरान हुए होंगे, उससे कहीं अधिक हैरानी मुझे इन लोगों को देखकर हुई। इन लोगों में रहते रहते मेरा भय मिट गया। इनका आकार ही डरावना था, वैसे आदमी भले थे। मैंने इस देश की भाषा भी सीख ली। इससे मुझे बहुत सुविधा हो गई। कभी कभी मैं मेज पर खड़े होकर किसान और उसके परिवार वालों को तरह तरह के खेल दिखाता। मेरा नाच और तलवार चलाना उन्हें बहुत पसंद आता। इससे उनका अच्छा खासा मनोरंजन हो जाता। ये देखकर किसान के मित्र ने उसे सलाह दी कि वो राजधानी में लगने वाले मेले में टिकट लगाकर लोगों को मेरा खेल दिखाए। अब किसान ने मुझे एक लकड़ी के डिब्बे में बंद किया और उसे हाथ में लटकाकर मेले में ले आया। राजधानी के लोग मेरा खेल देखने के लिए टूट पड़े।
मेरे खेल से अधिक वे मुझे देखना चाहते थे। उनके लिए तो मैं जीता जागता खिलौना था। यहां मुझे दिन में 10-10 बार खेल दिखाने पड़ते थे। इस तरह काफी पैसा कमाने के बाद उस किसान ने 1000 सोने के सिक्कों के बदले मुझे उस देश की महारानी को बेच दिया। महारानी ने मेरे लिए एक पिंजरा बनवाया। पिंजरा क्या, ये तो एक कमरा था। खाना खाते समय महारानी पिंजरे को अपनी मेज पर रखकर मुझे भी खाना खिलाती। उसने मेरे लिए विशेष रूप से छोटे छोटे बर्तन भी तैयार करवाए। एक बार राजा और रानी अपने नौकर चाकरों के साथ अपने राज्य का दौरा करने निकले। उन्होंने मुझे भी साथ ले लिया। चलते चलते हम ऐसे नगर में पहुंचे जो समुद्र के समीप ही था। समुद्र को देखकर मुझे अपने देश की याद आ गई और मैं उदास हो गया।

0: ये देखकर नौकर पिंजरा उठाकर समुद्र के किनारे ले गया। पिंजरे को एक चट्टान पर रखकर वो समुद्र की रेत पर लेट गया। समुद्र की ओर ललचाई नजरों से देखते देखते पता नहीं मुझे कब नींद आ गई। खड़खड़ की आवाज सुनकर जब मेरी आंख खुली तो भय और आश्चर्य से मेरा दिल धड़कने लगा। मेरा पिंजरा हवा में उड़ रहा था। मैं अभी सोच में पड़ा ही हुआ था कि अचानक पिंजरा इतनी तेजी से नीचे गिरा कि मेरी आंखें भय से बंद हो गईं। छपाक! पिंजरा एक बार तो पानी में काफी नीचे तक चला गया, पर फिर केवल थोड़ा सा ही डूबकर नाव की तरह तैरने लगा। खुला समुद्र, लहरों के थपेड़े, तीर की तरह चुभती हुई ठंडी हवा, खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं। मेरे दुर्भाग्य का कहां अंत होगा? इससे तो मैं महारानी की कैद में ही ठीक था, मैं सोचने लगा। मैंने अपने आप को भाग्य के सहारे छोड़ दिया। उस असहाय स्थिति में पड़े पड़े मुझे काफी देर हो गई थी कि मुझे लगा जैसे कोई पिंजरे को तेजी से एक ओर खींच रहा हो। पिंजरे की खिड़की से हाथ निकालकर मैं जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगा। जब जवाब में मैंने अपने देश की भाषा सुनी तो मेरा रोम रोम खिल उठा।
1: गुलीवर की विचित्र यात्राएं।

0: सपना था, पर हमें सचमुच अपनी पृथ्वी को बचाना है।
1: आओ बच्चों, आज हम सीखेंगे हिंदी वर्णमाला।

अ से कोई भी शब्द नहीं बनता है, इसे दो बिंदी से दर्शाते हैं। अह को कई शब्दों के आखिरी में लगाया जाता है, जैसे नमः, प्रातः।

अंग से कोई भी शब्द नहीं है, लेकिन इसको शब्द के ऊपर बिंदी जैसे जोड़ा जाता है। इसको हम अनुस्वार बोलते हैं। इस बिंदी से शब्द की आवाज बदलती है, जैसे चांद, जंगल,

या से कोई भी शब्द नहीं है। इसको हम आधा अनुस्वार बोलते हैं। इसको अक्षर के ऊपर चंद्र बिंदु जैसे जोड़ा जाता है, जैसे गांव, जहां।

ण से कोई भी शब्द शुरू नहीं होता है, लेकिन ण शब्द के बीच में या आखिरी में आता है, जैसे बाण।

0: बीमारियों पर कम करेंगे खर्चा, हम करेंगे सेहत और स्वास्थ्य पर चर्चा।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं झाबुआ की आवाज पर रेडियो टंट्या भील 90.8 FM, आप ही के रेडियो साथी आरजे राकेश के साथ। तो दोस्तों, आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे फाइलेरिया रोग के बारे में। फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है, इसे हाथी पांव बीमारी भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं फाइलेरिया बीमारी

0: एडमिशंस उत्तर प्रदेश से। और डॉक्टर साहब, हम फाइलेरिया विषय पर बात कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे सबसे पहले आपको बताएं कि ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनसे पता चल सकता है कि कोई व्यक्ति फाइलेरिया से संक्रमित है।
1: जी, फाइलेरिया रोग जो है वह परजीवी कृमि से होता के फैलने से होता है। इसके जो मुख्यतः लक्षण होते हैं वह शरीर में, मनुष्य के शरीर में, शरीर के कुछ अंगों में जैसे कि पैर है, हाथ है, उनके अंडकोश हैं, उसमें सूजन आने लगती है। वह सूजन इस प्रकार होती है कि हाथी के पाँव के समान लगती है, इसलिए उसको हाथी पाँव भी कहा जाता है। इसमें शरीर में लालपन भी आ जाता है, इसमें फीवर आ जाता है, बुखार आता है और त्वचा भी निकलने लगती है शरीर से।
0: जी, तो ये सारे तमाम सारे लक्षण हैं और जैसा कि आपने बताया इसे बोलचाल की भाषा में हाथी पाव भी कहते हैं। डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि फाइलेरिया रोग कैसे होता है और उसके बाद ये फैलता कैसे है।
1: जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह परजीवी कृमि से होता है। जो फाइलेरिया के कीटाणु हैं वह संक्रमित मनुष्य को अगर कोई मच्छर क्यूलेक्स होता है अगर काटता है तो वह उसको संक्रमित करता है। फिर उस संक्रमित मच्छर अगर फिर से वह किसी मनुष्य को काटता है तो वह उनको संक्रमित करता है। इस प्रकार से यह चक्र चलता रहता है।
0: यानी कि आपके कहने के आधार पे क्यूलेक्स नाम का जो मच्छर है वो इस बीमारी का वाहक है। डॉक्टर साहब, ऐसा कहा जाता है कि जो विसंगतियां हमारे शरीर में आ जाती हैं फाइलेरिया रोग की वजह से, हाथों पैरों में या शरीर के किसी अंग में सूजन, क्या वो कभी ठीक हो पाती हैं?
1: एक बार जब विसंगति आ जाती है, जैसे कि शरीर में सूजन आ जाती है हाथ या पैर हो, तो वह पूरी तरीके से नहीं सही हो सकती है। इसलिए इसका बचाव ही एकमात्र है।
0: जी, जान लेना चाहिए कि जो फाइलेरिया से बचाव की गोली इस उन्मूलन अभियान में खिलाई जाती है उसका जरूर सेवन करें। और जी बताइए
1: आकांक्षा जी, जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये अभी जड़ से नहीं खत्म कर सकते हैं, इसका बचाव ही एकमात्र उपाय है। तो इसको, लेकिन अगर ये एक बार फाइलेरिया ये हो गया है किसी को, तो वह चिकित्सा परामर्श लेके इसके लिए हमारे पास दवाइयां उपलब्ध हैं सरकारी अस्पताल में, उनसे वो चिकित्सा उपचार लेके वह दवाइयां खा सकते हैं। साथ में ये हमारी सरकार जो है यहाँ पे हाइड्रोसिल के ऑपरेशंस भी होते हैं जिनसे कि वह दूर होता है उससे।
0: जी डॉक्टर साहब, फाइलेरिया उन्मूलन का जो अभियान चलाया जाता है हमारे प्रदेश में, हमारे दर्शकों को बताइए कि वो कब से कब तक चलाया जाता है और इसके अंतर्गत जो गोली खिलाई जाती है क्या वो किसी एक निश्चित स्थान पर खिलाई जाती है?
1: ये हमारा जो ये फाइलेरिया अभियान होता है, उन्मूलन अभियान होता है, इसको मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन भी कहते हैं। हमारे यहाँ प्रदेश में यह दो चरणों में चलता है, एक फरवरी में और एक नवंबर में। ये दो तो हमारे खत्म हो चुके हैं लेकिन अगले वर्ष फिर से यह शुरू होगा। इसमें स्वास्थ्य कर्मी सभी ग्रामीण और शहरी इलाकों में घर घर जाकर फाइलेरिया की गोली निःशुल्क देते हैं और अपने सामने खिलाते हैं। यह एक साथ खिलाया जाता है, सार्वजनिक रूप से खिलाया जाता है, इसलिए इसका उन्मूलन के लिए यही प्रयास है।
0: जी बिल्कुल, और हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हम चाहेंगे कि जब भी उनके घर पे उन्मूलन के लिए गोलियां खिलाने के लिए कार्यकर्ता पहुंचे वो इस गोली का सेवन जरूर करें। डॉक्टर साहब के मन में जरूर एक बात आ रही होगी कि यदि किसी को बुखार है या कोई और छोटी मोटी सीजनल परेशानियां चल रही हैं तो क्या तब भी वो इस गोली का सेवन कर सकते हैं?
1: जी, ये दो वर्ष से कम बच्चों को नहीं दिया जाता है, गर्भवती महिलाओं को नहीं दिया जाता है और अगर वह किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं तो उनको नहीं दिया जाता है। बाकी ये सभी प्रकार के व्यक्ति खाना चाहिए, सभी उम्र के व्यक्तियों को खाना चाहिए।
2: जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो फाइलेरिया से बचाव की गोली है ये क्या फाइलेरिया ग्रसित व्यक्ति खा सकता है या स्वस्थ व्यक्ति को भी खानी चाहिए?
0: जी बताइए।
1: ये संक्रमित और असंक्रमित दोनों प्रकार के व्यक्ति खा सकते हैं और इनको साल भर में एक बार अवश्य सेवन करना चाहिए।
0: जी डॉक्टर साहब की तरफ से, ये भी हमारे कार्यक्रम की तरफ से आपको जरूर जाननी चाहिए कि यदि फाइलेरिया हो चुका है तो दवाओं के माध्यम से इसे उसी स्टेज पर रोका जा सकता है, इसलिए बचाव की गोली खानी जरूरी है आप सभी के लिए। और डॉक्टर साहब, इसी के साथ साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या फाइलेरिया से बचाव की गोली जब भी हमें किसी को संक्रमित व्यक्ति है वो भी खा ले या सिर्फ जो स्वस्थ व्यक्ति हैं वही खाएं, दोनों के लिए कितनी फायदेमंद है?
1: ये दोनों के लिए फायदेमंद है। अगर कोई संक्रमित है इससे तो वह उसी स्थान पे उसको दूरगामी प्रभाव से रोका जा सकता है और इसको नहीं है उसको उसके बचाव के लिए ये उपाय है हमारे लिए।
0: तो दोनों को ही खानी।
1: और अगर किसी को गंभीर बीमारी

साथियों इना खेतीवाड़ी कार्यक्रम ना माध्यम थी आपड़ किसान भाई जो है अलग अलग प्रकार नी खेती करवाना बारा मा जानकारी हासिल करी सके। अलग अलग प्रकार नी खेती करवा थी हमारा जो किसान है तिनी आय मा वृद्धि था है अने सही तरीका थी खेती किकम करवी जोवे तेना बारा मा आपू केवीके ना माध्यम थी कृषि विज्ञान केंद्र ना विशेषज्ञों ना सहयोग थी आपू इनी सब समस्याओं समाधान करवानो प्रयास आपू करिए से। तो किसान भाइयों आशा करिए हैं कि हमारे किसान भाइयों ने समय समय पर एक सलाहकार की जरूरत पड़े है हमारा खेतरों में, क्योंकि दिन प्रतिदिन आप जो वातावरण से तो बदलतो जाइ रो है। अपनी जगह भी है, जगह में हर साल आपू खेती करिए है तो धीरे धीरे जो खेती में आप खेतरों में अपनी जमीन में जो बदलाव आ रो है तेने हिसाब में अगर आप देखी तो तीनों आपू एक ही तीनों रास्तों निकाली है कि वधु खातर नाख दी है तो यू वधु खातर नाखेलू भी ताजू निमल है। तो किसान भाइयों अगर एवी समस्याएं अगर आपड़ा किसान

0: व्यावसायिक रूप देना है तो क्षेत्र और इस्तेमाल के हिसाब से इसकी किस्मों का चयन करें। लेकिन उनमें से 10 तरह की किस्मों का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। बांस की खेती में सबसे अच्छी बात ये है कि बांस की फसल 40 साल तक चलती रहती है। बांस की खेती के लिए किसी खास तरह की मिट्टी की जरूरत नहीं होती, इसे किसी भी सूखी मिट्टी में उगा सकते हैं। लेकिन रेतीली दोमट मिट्टी में बांस के पौधे ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं। बांस के पौधों पर जलवायु परिवर्तन का भी कोई खास असर नहीं पड़ता। ज्यादा ठंड और दलदल में भी पौधे ठीक से वृद्धि कर लेते हैं। बांस के बीजों की रुपाई पौध के रूप में की जाती है। इसके लिए नर्सरी में बीजों को तैयार कर लिया जाता है। नर्सरी में पौध तैयार करने के लिए क्यारियों को तैयार किया जाता है। इसके बाद 30 सेंटीमीटर की गहरी खुदाई कर गड्ढों में सड़ी गोबर की खाद को भर दिया जाता है और गड्ढों की सिंचाई कर दी जाती है। बीजों को रुपाई से पहले करीब 8 घंटे तक पानी में भिगो कर रखें और सतह पर बैठे बीजों की रुपाई क्यारियों में कर दें। रुपाई की बात करें तो बांस के पौधों की रुपाई खाली पड़ी जमीन या फिर खेत किनारे बाड़ की तरह की जाती है। बांस के पौधों को ज्यादा सिंचाई की जरूरत नहीं होती है। इसके पौधों को सिर्फ शुरू में ही नमी की जरूरत होती है। बांस के पौधों को खरपतवार से बचाना जरूरी है, क्योंकि खरपतवार बांस की बढ़वार को पूरी तरह से रोक देती है। इसके लिए समय समय पर निराई गुड़ाई कर खरपतवार को निकालते रहे।
1: बांस की खेती पर ये रिपोर्ट आपने देखी। आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और जैविक खेती के बारे में चर्चा को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर दबास आपसे ये जानना चाहूंगी कि जैसे कि आपने बताया कि जैविक खेती जो है वो उत्पाद की गुणवत्ता के लिहाज से हो या पर्यावरण की दृष्टि से हो या फिर मिट्टी की उपजाऊ शक्ति की दृष्टि से हो, ये काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन किसानों के मन में संशय ये रहता है कि रासायनिक खेती के मुकाबले अगर जैविक खेती को अपनाते हैं तो उत्पादन कम होगा और ऐसे में उन्हें नुकसान की चिंता होती है। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे?
2: ये चिंता हमारे किसानों को काफी लगी रहती है। लेकिन अगर नुकसान की बात करते हैं तो नुकसान कब होता है? जब हम पौधों को सही मात्रा में पोषण नहीं दे पाते। और वो पोषण कब नहीं दे पाते हैं? जब हम सही खाद का सही समय पर इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन हमारे जितने भी किसान भाई, उनके पास पशु हैं
1: जी,
2: उन पशुओं से जो गोबर मिलता है उसको हम बायोगैस सलरी के कन्वर्ट कर ले, यानी कि बायोगैस प्लांट के माध्यम से उसका खाद बनाए, तो एक तो खाद की गुणवत्ता अच्छी होगी
1: जी,
2: दूसरा उसमें किसी प्रकार के खरपतवारों के बीज नहीं होंगे।

0: तो उनसे आपको लगातार गैस मिलती है, बराबर मात्रा में मिलती है, और लगातार आपको खाद भी मिलता है और बराबर मात्रा में मिलता है, और इसका जो खाद है वो बिल्कुल सड़के निकलता है, तो इसके खाद के ऊपर किसी प्रकार के मक्खी या मच्छर नहीं बैठते हैं, उसमें किसी प्रकार की बदबू नहीं आती है, तो इसका खाद वही हम खाद अच्छा मानेंगे जिसमें बदबू ना हो और मच्छर मक्खी ना बैठे, यानी कि खाद पूर्णतः सड़ गया है। क्योंकि जब ये खाद हमारे खेत में जाएगा तो ये खेत के लिए ज्यादा लाभदायक होगा।
1: बिल्कुल।
0: अगर कई बार कुछ किसान गलती कर देते हैं कि छोटा प्लांट बना लिया, उसमें फीडिंग ज्यादा कर रहे हैं, तो जब फीडिंग ज्यादा करेंगे, प्लांट का आकार छोटा है, तो कच्चा खाद निकलेगा।
1: जी जी। किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए?
2: गोबर गैस बनाने के लिए अलग अलग विधियों का भी प्रयोग किया जाता है। कोई लोहे का जो ऊपर कैन आती है उसको रख के बनाते हैं, कोई पूरा सीमेंटेड होता है, और भी अलग अलग विधियों से बनाया जाता है। तो आज आइए जानते हैं, यहाँ पर लेते हैं एक्सपर्ट की राय कि कौन सा बायोगैस अच्छा होता है और कौन से बायोगैस विधि से हमें बनाना ज़्यादा मुनाफे में हो सकता है।
0: एक बनते थे लोहे के ड्रम वाले, जिसको हम केवीआईसी मॉडल कहते हैं, और दूसरे बनते थे ईंट और सीमेंट के
1: जी।
0: वो जनता बायोगैस था, लेकिन अभी एक नया प्लांट या काफी दिनों से चल रहा है जिसको हम कहते हैं दीन बंधु मॉडल। यह भी ईंट का, सीमेंट का, कंक्रीट का बनता है, और इस प्लांट का रखरखाव भी कम है, इसकी लागत भी कम है, और

0: झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM आपरो रेडियो आपरी बातें।
1: ब्रेक के बाद एक बार फिर था बहुत बहुत स्वागत करिए हैं तमार सबुनो रेडियो टांडिया भील 90.8 FM ना इना खेतीबाड़ी कार्यक्रम में किसान भाइयों आपू लगातार खेतीवाड़ी थी जोड़ेली घनी खरी महत्वपूर्ण बातों ने लीने आपू चर्चा करी रहा है तो इन चर्चा ने आगे बढ़ाता जाइए जानिए हजू खेतीवाड़ी थी जोड़ेली महत्वपूर्ण बातों ने।
2: बायोगैस प्लांट है ये MNRE मिनिस्ट्री के अंदर आता है और ये केंद्र सरकार से राज्य सरकार के माध्यम से सभी किसानों को सब्सिडी मिलती है। तो आप अपने जिले के जो खंड विकास अधिकारी हैं या जिला विकास अधिकारी हैं आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, उन्हीं के माध्यम से आपको सब्सिडी मिलेगी और सब्सिडी में बदलाव आता रहता है। तो अभी भी शायद सब्सिडी में कुछ बढ़ाव होने की संभावना है तो इसका कुछ प्रोसेसिंग चल रहा है, तो आपको बिल्कुल सब्सिडी मिलेगी और ये आपकी सरकार के माध्यम से मिलेगी। जो अपने जिले के अधिकारी हैं उनके आप संपर्क में रहें और उनसे संपर्क करके आप सब्सिडी के बारे में ज्ञान ले सकते हैं। लेकिन सब्सिडी से ज्यादा जरूरी है प्लांट, इससे आपकी बहुत सारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, आपका खर्चा बचता है, आपका पैसा बचता है, आपकी मिट्टी सुधरती है, आपके जो महिलाएं हैं उनको सुविधा कम होती है, बल्कि मैं तो कहूंगा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए इस प्लांट का बहुत ही ज्यादा महत्व है और खासकर ग्रामीण महिलाओं के लिए।
3: जी जी बिल्कुल। तो विपिन जी मुझे उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और यहां पर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। और ब्रेक पर जाने से पहले डॉक्टर रबास आपने बताया था बायोगैस प्लांट के दीनबंधु मॉडल के बारे में, मैं चाहूंगी कि थोड़े विस्तार से इस मॉडल के बारे में हमें बताएं।
2: जो दीनबंधु मॉडल है ये बहुत ही अच्छा मॉडल है, बहुत सिंपल है। एक तो इसको बनाने में अच्छी सुविधा है और गांव में इसका रखरखाव में फायदा है और साथ साथ में इसमें लागत भी कम आती है और बाद की मेंटेनेंस ना के बराबर है और इसकी लाइफ भी काफी लंबी होती है।
3: जी जी।
2: इसको बनाने के लिए केवल आपको कुशल कारीगर चाहिए और अच्छे किस्म का आपका बिल्डिंग मटेरियल आपको इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसको एयरटाइट बनाना होता है। अगर एयरटाइट डोम नहीं बना तो आपका प्लांट फेल हो सकता है, इसलिए जो कारीगर बनाने वाला है उसका अच्छा होना बहुत जरूरी है। साथ साथ में जो भी आप सामग्री इस्तेमाल करेंगे, खासकर सीमेंट है, रोड़ी है, बदरपुर है, तो उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होनी चाहिए और इसको सही। तो जो दीनबंधु मॉडल है ये काफी उपयोगी है और खासकर जितने भी छोटे और मझोले किसान हैं उनके लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि घर में ये नीचे बन जाता है अंडरग्राउंड और उसके ऊपर ये कोई भी काम कर सकते हैं, आपको अलग से जगह की आवश्यकता नहीं होती है, खाद आपको लगातार मिलता रहता है और इससे इसका रखरखाव भी

0: आसान है और बनाना भी आसान है, लागत भी कम है और सरकार इसको काफी प्रोत्साहित कर रही है और इस समय काफी कारीगर, इसके निपुण कारीगर अवेलेबल हैं जो इस प्लांट को बना सकते हैं और किसान को बाहर के इनपुट पे कम निर्भर करना पड़ता है। तो ये एक प्लांट अच्छी किस्म का प्लांट हो सकता है जिसको आप बनाएं, उसका लाभ उठाएं।
1: बिल्कुल, जो बायोगैस प्लांट है वो अपनी क्षमता के अनुरूप काम करे, इसके लिए किन किन बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, किस तरह की सावधानियां किसानों को बरतनी चाहिए?
0: बायोगैस प्लांट को अच्छी तरह से सुचारू रूप से चलाने के लिए सबसे जरूरी है कि जिस आकार का आपने प्लांट बनाया है
1: जी,
0: उसको उसका खाना रोज मिलना चाहिए। और जब खाना रोज मिलेगा तो वो आपको गैस भी लगातार देगा, खाद भी लगातार देगा और अच्छी देगा। दूसरी बात आती है, जब हम गोबर डालते हैं तो गोबर को पानी में अच्छी तरह से घोल के डालना है, यानी कि अच्छा। एक भाग गोबर का और एक भाग पानी का अगर करेंगे तो ज्यादा अच्छा है।
1: अच्छा,
0: और जिन किसानों के फर्श पक्के हैं, जो पशुओं का पेशाब इकट्ठा कर सकते हैं या जो पशुओं के नहाने धोने का जो वेस्ट है वो इकट्ठा कर सकते हैं, तो आप उसका अगर इस्तेमाल करते हैं तो गैस का अमाउंट भी ज्यादा होगा, खाद की गुणवत्ता भी अच्छी होगी और आपको अलग से पानी लेने की जरूरत नहीं होगी
1: जी।
0: दूसरी बात आती है, जो प्लांट का बनाने की जगह है वो ऐसी होनी चाहिए जो किचन के पास भी हो, साथ साथ में हमारी जो पशुशाला उसके भी नजदीक हो, वो ऐसी खुली जगह हो जहाँ पे सर्दियों में धूप अवश्य आती हो और प्लांट के ऊपर धूप रहती हो
1: जी।
0: तो ये चीजें ज्यादा लाभदायक हैं और साथ साथ में आपको फीडिंग, खासकर सर्दी के मौसम में आप इसमें फीडिंग दो तीन बार कर सकते हैं एक बार की बजाय, क्योंकि अगर आप एक बार करते हैं तो जो गोबर होता है, जो वो कोई भी पशु गोबर करता है तो उसका जो तापमान है वो लगभग 35 डिग्री के आसपास होता है, उससे ऊपर होता है। लेकिन क्योंकि सर्दी का मौसम है, बाहर का तापमान काफी कम है, तो ये ठंडा होना शुरू हो जाता है और जितना ही ठंडा हो जाएगा

0: इसके प्लांट से अगर आपने बहुत ज्यादा पशु रखे हैं तो गैस से आप प्रोसेसिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गैस से जो आपका दूध है उसका मावा बना सकते हैं, खोआ बना सकते हैं, ये किस्म से जो घरेलू कुटीर उद्योग में भी काम आ सकता है।
1: जी बिल्कुल। आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपरो रेडियो आपरी बातें।
0: और गोबर के अनुसार आप इस प्लांट बनाएंगे ज्यादा बेटर है। अगर आपके पास गोबर की मात्रा ज्यादा है तो मैं आपको ये कहूंगा कम से कम 20 घन मीटर का प्लांट बनाएं, जिसके लिए आपको 5 क्विंटल गोबर की हर रोज आवश्यकता होगी। इससे आप इंजन भी चला सकते हैं, बिजली भी बना सकते हैं, और इसका जो खाद है वो लगभग 30 से 50 एकड़ के लिए पर्याप्त होगा। तो इस किस्म का प्लांट बनाएंगे तो आपको ज्यादा लाभ होगा, ज्यादा फायदा रहेगा। अगर प्लांट के आकार की बात करें तो वो बना सकते हैं। और इस प्लांट के किस्म के जो प्लांट बनाएंगे उसकी जो लागत आएगी वो लगभग 2.5 से 3 लाख के आसपास आएगी, क्योंकि आप 20 क्यूबिक मीटर का प्लांट बना रहे हैं। और इससे गैस जो मिलेगी वो लगभग 100 आदमियों का खाना हर रोज उस गैस पे बन सकता है। तो 100 आदमियों का खाने का मतलब ये हो सकता है, अगर आपके परिवार में सदस्य कम है तो 5 आदमियों का खाना, जो बाकी जो गैस है उससे आप बिजली भी बना सकते हैं जनरेटर के थ्रू, उस गैस से आप कोई प्रोसेसिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं गैस का
1: जी।
0: और दूसरा भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जो मुख्य उत्पाद है, गैस मुख्य उत्पाद नहीं है, गैस तो सह उत्पाद है, मुख्य उत्पाद खाद है
1: जी, जी
0: जो आपकी जैविक खेती के लिए बहुत ही लाभदायक हो सकता है। और इसका अगर प्रयोग करेंगे तो आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। और तो इसका स्कोप बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहाँ पे छोटे और मझोले किसान काफी हैं और वहाँ पे हमारे किसानों को इस किस्म की जरूरत भी है, तो उन किसानों को जरूरत अपनाना।
2: जी हाँ बिल्कुल, बायोगैस से आपको फायदा ही होगा, इससे लाभ ही लाभ मिलेगा आपको। और साथ ही कहीं कहीं कुछ किसानों को हमने देखा है जो बायोगैस का इस्तेमाल खाना पकाने में करते ही हैं, साथ में जो जो खाद है, जो बायोगैस बनने के बाद जो खाद बाहर निकलती है वहां पर केचुए खुद ही आ जाते हैं, वहां आपको केचुए डालने की तक जरूरत नहीं होती है। और वहां पर अगर आप वहां का जो अवशेष निकलता जाता है, जैसे हमारा गैस बन गया, गैस बनने के बाद जो खाद निकलती जाती है तो उसमें अपने आप वहां पे केचुए आ जाते हैं और केचुए खुद ही आपको जो अपना केचुआ खाद है वो उसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मिल सकता है। खाद की जो गर्मी निकालने के लिए भी वो बहुत ही सहायक है। उसके बाद जो गैस है उसके हम खाना बना उसके साथ हम खाना बना सकते हैं और जो उसका अवशेष बच रहा है, जो ठंडी हुई घास, उसको केचुए बहुत ही चाव से खाते हैं। और जो खाद जो बनने की जो प्रक्रिया है वो भी कई गुना तक बढ़ जाती है। चर्चाओं का ये सिलसिला जारी रहेगा, पर यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांडिया भील 90.8 FM के साथ।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपरो रेडियो आपरी बातें।

0: क्योंकि सघन खेती की वजह से हमारी जो मिट्टी है उनमें इन पोषक तत्वों की काफी कमी हो गई है और इनके अलावा जो सूक्ष्म पोषक तत्व उनकी भी कमी हो गई है। अगर हम अच्छी फसल लेना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम संतुलित मात्रा में खादों का प्रयोग करें। और जब संतुलित मात्रा की बात आती है तो किसान को हम बताते हैं आपको ये करना है ये करना है, तो उसको किसान की समझ में नहीं आता कितना करें। तो किसान को जो दिखाई देता है तो यूरिया का लाभ सबसे ज्यादा दिखाई देता है, इसलिए साधारणतर किसान यूरिया ज्यादा प्रयोग करते हैं और जिसकी वजह से फसलों में बीमारी और कीट का प्रकोप भी ज्यादा हो जाता है। लेकिन जो बायोगैस सलरी है इसके अंदर पौधे को 16 से 17 जो पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है वो सभी के सभी पोषक तत्व संतुलित मात्रा में उपलब्ध है। तो किसान को कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है उसको केवल ये देखना है कि बेसल में यानी कि बुआई से पहले कितनी देनी है,
1: ठीक है,
0: और बुआई के बाद तो कुछ कंपनियां 1 या 2 घन मीटर के छोटे प्लांट जो हैं वो एचटीबी के भी बना रही हैं, यानी कि आपको बने बनाए मिल जाएंगे। तो उसके लिए आप अपने जो अपना जिला है अधिकारी उनसे संपर्क करें, वो आपको गाइड कर देंगे कि आपके जिले में कौन कौन सी कंपनी के प्लांट उपलब्ध हैं, तो आप उनसे ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पशुओं की संख्या ज्यादा है, बड़ा प्लांट बनाना चाहते हैं, तो आप प्लांट स्वयं बनवा सकते हैं। उसमें भी आप अपने जिले के अधिकारियों के संपर्क कर सकते हैं या अथवा किसी अन्य तकनीकी आदमी से संपर्क करके आप अपना प्लांट बनवा सकते हैं। लेकिन जो प्लांट बनवाएंगे उसकी लाइफ भी ज्यादा है, लागत कम होगी और वो आपकी आवश्यकता के अनुरूप बनेगा
1: जी,
0: तो आप उसको ठीक से हैंडल भी कर पाएंगे। और जब बनाएंगे तो आपको जो बनाने वाला है वो आपको सारी बातें बताएगा कि इस प्लांट में कब और कितनी मात्रा में गोबर डालना है, कैसे इसका प्रबंध करना है, तो वो आप जानकारी आपको लगातार मिलती रहेगी। अगर आज आप एचडीपी का भी प्लांट लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं, तो उसके लिए जो कंपनी है वो आपको पूरा समझाएगी बताएगी, तो वहां से ले सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा क्योंकि इसके जो प्लांट बनाने वाली कंपनी है वो सभी निजी कंपनियां हैं, तो किसी एक कंपनी का नाम लेना यहाँ पे उचित नहीं रहेगा। तो आप अपने जिला अधिकारियों से या अपने उनसे जो कृषि अधिकारी हैं या जो कृषि विज्ञान केंद्र है उनसे संपर्क करके उनसे लाभ उठा सकते। तो मैं आप संजय जी को बताना चाहूंगा कि आपके अपने जिले में कृषि विज्ञान केंद्र है, क्योंकि आज हमारे जितने भी जिले हैं सभी में 1 या 2 कृषि विज्ञान केंद्र उपलब्ध है। तो जो भी कृषि विज्ञान केंद्र आपके नजदीक संपर्क में हो, नजदीक से नजदीक हो, आप उससे संपर्क कर सकते हैं या आप अपने जिला के कृषि अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं या जिला के विकास विभाग से भी संपर्क कर सकते हैं। तो इन सब जगह से आपको जानकारी मिल जाएगी। और फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो भारतीय कृषि अनुसंधान पूसा से भी आप संपर्क कर सकते हैं, तो वहां से भी आपको जानकारी मिल सकती है। तो आप कहीं से भी जानकारी लें और आप प्लांट अवश्य लगाएं, क्योंकि प्लांट आपके लिए काफी हितकर होगा, आपके लाभदायक होगा। और ये एक ऐसी तकनीक है जो वातावरण हितैषी तकनीकी है, यानी कि एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी है, जिसका हमें बढ़ावा देना बहुत ही जरूरी है। और आज सुन रहे हैं कि कार्बन क्रेडिट, तो कार्बन क्रेडिट कमाने में भी इस तकनीक का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है अगर हम इसका सही लाभ उठाना चाहें तो।
2: सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
3: तो बांस में कर सकते हैं, उसमें अलग अलग प्रजातियों का चुनाव करना पड़ता है। अगर उनका इलाका जो है 1000 मीटर ऊपर की ऊंचाई का है, तो उसके लिए पतले टाइप की जो बांस होती है हिल बैंक है वो होता है। और एक बांस अभी जो होता है वो थोड़े से मंडी में नीचे इलाके में 1000 या 1200 मीटर की ऊंचाई पे वहां पे मगर के नाम से प्रचलित बांस है, मोटा बांस है
1: जी।
3: और हो जाता है वो बर्फ

0: सीडलिंग देंगे तो इवन हमारे जैसे वैज्ञानिक भी धोखा खा जाते हैं। तो
1: जी
0: हमेशा ही उचित और बढ़िया जगह से, जो रिलायबल जगह होती है या किसी वैज्ञानिक से संपर्क करके ही आप बांस का पौधा खरीदें या बांस के पौधे की बात जानकारी। FRI में ये पौधा बांस के बहुत सारी 16 से ज्यादा प्रजाति उपलब्ध है और
1: जी
0: किसानों को उपलब्ध कराए जाते हैं। तो
1: बिल्कुल
0: एक तो पहले प्रजाति का चुनाव है, दूसरा कहते हैं गड्ढा इसका 2 बाई 2 बाई 2 फीट उससे कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि बांस जो है सरफेस फीडर ही होता है। इसकी
1: जी
0: जड़ बहुत गहरी नहीं जाती लेकिन फैलती है, तो अगर शुरू में इसको बहुत अच्छा मिले तो तीसरे साल से ही बांस बहुत ही अच्छी मोटे किस्म का बांस निकलना शुरू हो जाता है,
1: जी
0: जिसको आप 4वें साल के एंड में या 5वें साल के एंड में काट सकते अलग अलग उपयोग के लिए।
1: जी बिल्कुल डॉक्टर ठाकुर, इसके साथ ही हमें ये बताएं कि जो बांस है उनके अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए पोषक तत्व का प्रबंधन किस तरह से करना चाहिए, रोग व कीट का खतरा जो है वो कितना हो सकता है बांस के खेतों में।
0: जी हाँ, पोषक तत्वों का प्रबंधन बहुत अच्छी तरह से इसमें जरूरी है।
1: जी
0: अगर
1: जी
0: कोई जैविक माध्यम से और जो हम नॉर्मल किसान रासायनिक खाद के साथ करते हैं दोनों ही बताते हैं। बांस के लिए हम सबसे पहले कहते हैं कि गड्ढा एकदम समय पे बना लें,
1: जी
0: गर्मियों में बना लें तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो बरसात में बना लें। साइज वही 2 बाई 2 बाई 2 फीट के गड्ढा बनाएं और हर गड्ढे में आधा बाल्टी गोबर, गोबर मतलब कंपोस्ट की खाद डालें और 100 ग्राम खली डालें और 25 ग्राम यूरिया, 100 ग्राम DAP, अगर DAP नहीं है सिंगल सुपर फास्फेट है तो भी लगभग 120 ग्राम के आसपास डालें और 125 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास डालें। बांस को पोटास की जरूरत बहुत ज्यादा होती है, ये
1: जी
0: पहले साल के लगाने के समय में ही डालें। फिर अगले साल के जो मौसम आएगा आपका, जब बारिशें होती हैं थोड़ी सी फरवरी में, फरवरी वाले में, तो फिर बांस में एक निराई गुराई करके उसी उसमें और उसमें आप कम से कम किलो भर जो हम केचुआ खाद बोलते हैं
1: जी
0: और 100 ग्राम के आसपास खली और 25 ग्राम यूरिया, ये तीन को मिक्स करके उसके चारों तरफ डाल दें। फिर यही चीज अगले बरसात में जो है यानी हम 25 ग्राम यूरिया बोलते हैं बांस
1: जी
0: में खाद हम नाइट्रोजन कम डालते हैं और आधा बाल्टी जो कंपोस्ट खाद है और 100 ग्राम खली और 100 ग्राम DAP या 120 ग्राम SSP और 125 से लेके 150 ग्राम तक म्यूरेट ऑफ पोटास डाले।
1: जी
0: एक्चुअली बहता हुआ जो नाला होता है, बांस में पानी रुकना नहीं चाहिए, पर बहता हुआ पानी बांस के लिए बहुत ही अच्छा होता है। वेराइटी आपको हमने देखा है 6-7 वेराइटी बहुत अच्छा कर रहा है। आप अभी लगाइए बैम्बूसा टुल्डा और बैम्बूसा पॉलीमार्फा, पंजाब में इसका, क्योंकि ये फर्नीचर के लिए और स्ट्रक्चर के लिए बहुत अच्छा है। कुछ मात्रा में बैम्बूसा बालखुआ लगाएं, हम अभी पंजाब में 3-4 किसानों को लगवा रहे हैं और बहुत सक्सेसफुल, बहुत अच्छा ग्रोथ उसका आ रहा है।
1: जी
0: तो
1: जी
0: आप तीन वेराइटी जो हमारे FRI में अवेलेबल है और भरोसेमंद भी है, मतलब हमने इसको अच्छे से सेलेक्ट करके इसकी अच्छी
1: जी
0: नर्सरी। जी बांस में आपको एक समस्या बताता हूँ कि बांस
1: जी
0: को पानी बहुत चाहिए लेकिन 15 दिन से ज्यादा अगर पानी रुकता है तो बांस का ग्रोथ कम हो जाता है, क्योंकि बांस की जो जड़ें हैं वो जमीन के बहुत गहरी नहीं जाती। तो उसके क्रम में हम ये कहते हैं कि जहां जहां जल भराव है उसके मेड़ पे, मतलब जो बांध जैसा है
1: जी
0: वो लगाएं, या फिर कई जगह हम लोग बोलते हैं कि JCB से बांध बना दें जिससे कि बांस की कुछ जड़ें ऊपर की तरफ हो और वो सांस ले सके। तो
1: जी
0: अगर अगर वो 2 से 3 महीने पानी वहां रुकता है तब हम उसको कहते हैं कि वहां बांस लगा, मरेगा तो नहीं लेकिन उसके उत्पादन में बहुत कमी आ जाएगी।
1: जी बिल्कुल। इसके साथ ही डॉक्टर ठाकुर बताएं हमें कि रोग और कीट का प्रकोप कैसा हो सकता है बांस के खेतों में, जिसके लिए किसानों को सचेत रहना चाहिए।
0: जी सबसे अच्छी बात यह है कि आप अगर बांस के पत्तों को देखेंगे तो बहुत ही खुरदरा होता है, बांस सिलिका से भरा होता है और इस सिलिका से भरे होने के कारण इसके प्रमुख रूप से बहुत ही कम जिंदा बांस में बहुत ही कम कीट और बहुत ही कम रोग आते हैं।
1: जी
0: जो भी इसमें रोग आता है वो सेकेंडरी होता है, मतलब कोई उसमें डैमेज हो गया तो वो बाद में आता है। तो अगर कोई प्रचलित अभी हमें बहुत ज्यादा समस्या नहीं है लेकिन हाँ जब खेती बाड़ी में इसका प्रचलन बढ़ेगा तो कुछ नए तरह के रोग आ सकते हैं। नॉर्मली हम दो चीजों का ध्यान रखने के लिए बोलते हैं, चूंकि आपने कहा था, तो हम जब शुरुआत में लगाने के लिए बोलते हैं तो बोलते हैं

0: कवकनाशी कोई ना कोई लगा दें। हम सबसे जो हमारी प्रेफरेंस है वो है कार्बेंडाजिम।
1: जी
0: कार्बेंडाजिम पेवेस्टीन या बहुत सारे नामों से मार्केट में आता है। इसको हम लोग कहते हैं कि जब हम 2 ग्राम प्रति, इसको तो चूंकि पाउडर फॉर्म में अगर होता है, अगर लिक्विड फॉर्म में होता है तो उतना ml प्रति लीटर के दर से करीब 5 लीटर का बना के, यानी 10 ml प्रति लीटर का बना के हम एक गड्ढे में डालते हैं, और ये पहले साल में बस।
1: जी
0: और दूसरा इसमें होता है दीमक का प्रकोप, क्योंकि बांस ये वुडी है, टिम्बर है, उसमें लकड़ी होती है, तो दीमक का हो सकता है। तो जो भी दीमक के लिए हमारे साधारण प्रतिरोध इस्तेमाल किया
1: बिल्कुल
0: जाता
1: तो
0: है,
1: उसका
0: हम उसको सलाह।
1: जी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर ठाकुर, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हमें दी है बांस की खेती के बारे में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।
1: खाते हैं और चलते चलते बहुत ही संक्षेप में डॉक्टर डबास आपसे जानना चाहेंगे बायोगैस प्लांट के स्लरी के बारे में, अगर आप देना चाहें।
3: मैं अपने सभी किसान भाई को बताना चाहूंगा कि जो बायोगैस स्लरी 2 समय इस्तेमाल किया जा सकता है। एक तो फसल बोने से पहले जिसको हम बेसल कहेंगे, तो जितनी भी आपको स्लरी प्रयोग करनी है उसका लगभग आधा भाग बेसल में आप प्रयोग कर लेंगे, यानी कि जो पलेवा करेंगे उसके अंदर दे देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और उसके बाद जो भी स्लरी देनी है वो आपको प्लांट की ग्रोथ के आधार पर देनी है, यानी कि प्लांट जो पौधे का अगर 120 दिन की फसल है तो पहले 60 दिन तक की फसल देनी है, खाद देना है, 60 दिन के बाद खाद नहीं देना है। और यही टाइम होता है जिसमें पौधे को खाद की ज्यादा आवश्यकता होती है। तो जैसे गेहूं है, गेहूं में पहली 3 सिंचाई पे आप इसका खाद दे सकते हैं। धान में लगभग 50-60 दिन की जब तक फसल होती है जब तक इस खाद को पानी के माध्यम से दे सकते हैं। लेकिन जो बड़ी मात्रा है वो बोने से पहले देनी है, जिससे कि जैसे हम फसल लगाएं तो उसको सही मात्रा में पोषक तत्व मिल जाए। और जब इसका प्रयोग करते हैं तो हमारे फसल का जमाव भी अच्छा होता है, और साथ साथ में उसका दूसरा लाभ ये होता है कि पौधा शुरू में जब स्वस्थ होगा तो उसमें किसी प्रकार की बीमारी और कीट का प्रकोप नहीं होगा, प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी।
4: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांटिया भील, रोज हांजे 6 થી 8 વાગે આપણી સમસ્યા અને આપણો સમાધાન, આપુ રોજ કરું વાતે ખેતીના બારામાં અને કમાઈના બારામાં, એત્રે હમળતા રહેજો ટાંટિયા ભીલનો રેડિયો સ્ટેશન, રેડિયો સ્ટેશન 90.8 FM।
5: किसान भाईओ, आप ये लगातार खेतीवाड़ी ना इना कार्यक्रम में खेतीवाड़ी थी जोड़ेली महत्वपूर्ण जानकारियों ने जानियो है, आप ये जानियो है कि कम जो जैविक खेती है और गोबर गैस है तो अपना गोबर गैस अपन की कम बना भी सकिए, और इनमें कई ना प्रकार ना गोबर गैस है और यह की कम तरीके थी आपड़ी हरू फायदेमंद हो सके। केम के किसान भाई आप जानिए है कि लकड़ी हमने मलवी थोड़ी सी मुश्किल है, अने अलग अलग प्रकार ना जो बायोगैस है इनमें आप कम से कम लागत में अधिक से अधिक मुनाफो ले सकें। तो किसान भाइयों कहीं ना कहीं ये भी एक बढ़िया मौको है हमारे किसान भाइयों और कि इन उपयोग करिए, जैसे गोबर है गोबर ना आप गैस में तीनों उपयोग कर जो खातर है ते बनवानी जो प्रक्रिया है ते भी थोड़ी सी फास्ट थी जाए से इना इनी द्वारा। तो किसान भाइयों आप करी सकिए, और इना जो गोबर नकड़े है इना गोबर थी अगर आप केचवा खाद बनावा मांगी तो भी तीनी जो गति है तीनमा भी बढ़ावो मळे से। तो किसान भाइयों आजना इना कार्यक्रम में आप ये घनी खेतीबाड़ी ना बारा में जानियो, अन आवावाड़ा समय पर भी आप खेतीवाड़ी से जोड़ेली हजू भी महत्वपूर्ण बातों ने लेने चर्चा करिए। लेकिन आजना इना कार्यक्रम में बस एतरूस, आप फिर काल मुलाकात था है इना समय पर, इतने बनेला रहो हमारी हाथे रेडियो टांडिया भील 90.8 FM नी हाथे झाबवानी आवाज पर।

0: जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जिंदगी के रंग गीतों के संग। मैं आपकी आवाज की दुनिया का दोस्त आलोक कुमार हमेशा की तरह आपसे मुखातिब हूं। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं राजस्थान ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के एक ऐसे वरिष्ठ अधिकारी जिन्होंने न केवल अपने लंबे प्रशासनिक जीवन में कई महत्वपूर्ण सुधार किए, बल्कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम को अधिक पारदर्शी, तकनीक आधारित और जनहितकारी बनाने में भी अहम भूमिका निभाई। आज हमारे अतिथि हैं श्री जीडी अग्रवाल जी, राजस्थान परिवहन विभाग के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी। अग्रवाल साहब ने अपने टेनोर के दौरान डीलर एंड रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन टैक्स पेमेंट, वन टाइम टैक्स जैसी कई इनोवेटिव व्यवस्थाओं को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन सबसे खास बात श्रोताओं, जो बात इसके लिए हमने आज इनको यहाँ इन्वाइट किया है हमारे साथ परिचर्चा में, वो ये है कि अग्रवाल साहब आम अधिकारियों की तरह रिटायरमेंट के बाद अपनी किताबें पढ़ने, अखबार पढ़ने में व्यस्त नहीं रहे हैं। इसके बाद भी इनका, रिटायरमेंट के बाद भी इनका सफर रुका नहीं है। आज वे रोड सेफ्टी अवेयरनेस के लिए बहुत ही सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, पेंशनर सोसाइटी के माध्यम से युवाओं और समाज को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक कर रहे हैं। इसके बारे में हम इस परिचर्चा में इनसे डिटेल में चर्चा करेंगे कि रोड सेफ्टी क्या है और उसके विभिन्न पहलू क्या है। तो आइए स्वागत करते हैं श्री जीडी अग्रवाल साहब का और जानते हैं उनकी प्रेरणादायक प्रशासनिक यात्रा, रिफॉर्म्स, रोड सेफ्टी मिशन और जीवन के अनुभवों के बारे में। अग्रवाल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
2: नमस्कार आलोक जी, सभी श्रोताओं को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार।
1: तो चलिए शुरुआत करते हैं और शुरुआत से ही कर लेते हैं, आपके बचपन से कर लेते हैं। आप झुंझुनू गांव के, झुंझुनू जिले के गांव गोरेर में आपका जीवन बीता है, शुरुआती जीवन। एक साधारण मिडिल क्लास फैमिली से निकलकर प्रशासनिक सेवा तक आप पहुंचे, तो ये यात्रा कुछ ब्रीफ में हमें बताएंगे कैसी रही, कैसा रहा आपका जीवन, शुरुआती जीवन।
2: आलोक जी, मेरा जन्म तो गांव में हुआ, लेकिन क्योंकि पापा एजी ऑफिस में थे तो हम जयपुर शिफ्ट हो गए थे।
1: अच्छा।
2: और उसके बाद मेरी पढ़ाई सारी जयपुर में ही हुई है। लेकिन जैसे एक साधारण फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली है, उस तरह से मेरा जीवन निकला। वैसे हम 8 भाई बहन थे, फादर ज्यादातर ऑडिट के कार्य से, एजी के ऑफिस के कार्य से ऑडिट पर रहते थे। और 2 बहनों की जल्दी शादी हो जाने के कारण, क्योंकि भाइयों में मैं सबसे बड़ा था, फिर तो इसलिए मेरे पे जिम्मेदारी ज्यादा थी। तो मैंने 18 साल में ही नौकरी कर ली थी। मैं पीएनटी डिपार्टमेंट में, पहले मैं, मेरी पोस्टिंग हुई वो सेकेंडरी के मार्क्स मेरे अच्छे थे, उसके आधार पर मैंने नौकरी ले ली। फिर ऐसे मैं कमर्शियल टैक्स में आया, फिर लास्ट में फिर मैं ये राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के थ्रू इसमें ट्रांसपोर्ट सर्विस में आया।
1: तो चलिए, ये तो आपका जीवन काफी संघर्ष का भी रहा और एक तरह से प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में आने के बाद आपको, आपकी शुरुआत हो गई। आप ये बताइए थोड़ा, ये ट्रांसपोर्ट विभाग के बारे में हम श्रोताओं को बताना चाहते हैं। आम लोगों से की ये धारणा है कि यहाँ सिर्फ लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन तक ही काम सीमित होता है, यही काम होता है जिससे जनता का साबता पड़ता है। तो अब मुझे एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट विभाग की फंक्शनिंग क्या है, उसके वेरियस काम क्या क्या वो करता है और उसके परव्यू में क्या क्या आता है, कुछ एक ओवरव्यू सा दीजिए। क्योंकि आज आप हमारे साथ हैं तो मैं सोच रहा हूँ आपसे ये ज्ञान हमें मिलना चाहिए, हमारे श्रोताओं को सारा।
2: पहले तो आलोक जी, मैं ये स्पष्ट करूंगा कि एक पब्लिक को एक कॉन्सेप्ट में ये रहता, परसेप्शन ये है कि रोडवेज और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट एक ही है। जबकि ये डिफरेंट डिपार्टमेंट है पहली चीज तो। दूसरा मैं ये बताना चाहूंगा मेरे श्रोताओं को कि ये इसपे 6,000 CR का एनुअल रेवेन्यू है इसमें डिपार्टमेंट का। तो ये कमर्शियल टैक्सेस एक्साइज और रजिस्ट्रेशन स्टैम्प डिपार्टमेंट के बाद चौथा जो हाईएस्ट रेवेन्यू अर्निंग डिपार्टमेंट है।
1: अच्छा,
2: तो इसमें पब्लिक का तो ये वास्ता जनरली रजिस्ट्रेशन लाइसेंस से ही पड़ता है, लेकिन एक्चुअल में हम लोग जितने भी ये कमर्शियल और व्हीकल्स होते हैं जैसे टैक्सीज, ऑटो रिक्शा, बसेज, ट्रक वगैरह, इनको भी रेगुलेट करता है। इनके एनफोर्समेंट व्हीकल की चेकिंग होती है, टैक्स की रिक्वरी की रिवेन्यू होती है, रोड सेफ्टी पे भी हम काम करते हैं, पोल्यूशन कंट्रोल पे भी हम काम करते हैं। तो इसे इसका स्कोप तो बहुत बड़ा है और ये राजस्थान गवर्नमेंट के इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट में से ये है।
1: अच्छा, तो जैसे अन्य सरकारी विभाग होते हैं उनमें इसमें क्या डिफरेंस है? अब इसकी पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की बहुत व्यापक है, क्योंकि इसमें देखते हैं कि कई बार इनको पुलिसिंग पावर्स भी होती है, व्हीकल भी जब्त कर लेते हैं और जो टैक्स डिफॉल्टर्स है उनपे भी कार्रवाई कर लेते हैं। तो ये क्या क्या इनकी इस तरह की पावर्स है, क्या इनके पास है पुलिस वाली पावर्स भी होती है ट्रांसपोर्ट?
2: हाँ, हमारे पास जो व्हीकल रिलेटेड सारी पावर्स है चेकिंग के, व्हीकल्स के चेकिंग रिलेटेड यूनिफॉर्म, हमारे जो इंस्पेक्टर्स होते हैं वहां तक यूनिफॉर्म होती है। अच्छा। उनके फ्लाइंग स्क्वाड्स होते हैं तो वो सब इस चीज को एनफोर्स करते हैं कि जैसे मोटर व्हीकल एक्ट के जो रेगुलेशंस हैं तो उसका कोई उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, जैसे ओवरलोडिंग है या कोई, जैसे आम पब्लिक का तो यह है कि हेलमेट नहीं पहन रहा, मोबाइल यूज कर रहा है गाड़ी चलाते टाइम, या सीट बेल्ट नहीं लगाया, ये एक पब्लिक का। और भी मोटर व्हीकल एक्ट के जो प्रावधान का उल्लंघन होता है उन सब पे हम लोग कार्रवाई करते हैं, विशेषकर हम लोग ओवरलोडिंग पे, जो ट्रकों पे ओवरलोडिंग होता है उस पर कार्रवाई करते हैं। और दूसरा चीज, हम लोग जो है रेवेन्यू जो टैक्स जो डिफॉल्टर्स जो गाड़ियां है उन पे कार्रवाई करते हैं, तो उनको बंद भी करते हैं और उनका फिर अगर वो टाइम पे पेमेंट नहीं करते तो उन गाड़ियों का फिर ऑप्शन भी करते हैं। तो इस तरह से ये रेवेन्यू, मतलब मेनली तो ये रेवेन्यू और रेगुलेटरी डिपार्टमेंट है।
1: अच्छा, वैसे मैं थोड़ा सा ऑफ द काफी सवाल पर रहा, जैसे मान लो हाईवे पे या किसी रोड पे कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो उसमें जो व्हीकल है उसकी क्या डिफॉल्ट है या उसने क्या गलती की, तो उस एरिया के अंदर भी आपका कोई पहुंच होती है उस टाइम जब एक्सीडेंट्स होते हैं, तो उस टाइम ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या होता है
2: इसमें? आलोक जी, मैं श्रोताओं को ये बताना चाहूंगा कि जैसे कोई जो सीवियर एक्सीडेंट होता है जिसमें तीन या तीन से ज्यादा मर जाते हैं आदमी रोड एक्सीडेंट में, उसकी हम लोग इंक्वायरी, हमारे जो इंस्पेक्टर्स होते हैं वो स्पॉट पे जाके इंक्वायरी करते हैं। वैसे तो जनरली पुलिस का ही काम है रोड एक्सीडेंट्स के बाद जो एक्सीडेंट लेने का, लेकिन वो उस अगर कोई मेजर एक्सीडेंट होता है तो उसके डिपार्टमेंट इंक्वायरी करता है, उसको रिकमेंड भी करता है किस तरह से कार्रवाई, और उसमें फिर अगर कोई लाइसेंस सस्पेंड भी करते हैं हम ड्राइवर का, अगर ड्राइवर की गलती होती है या उसमें फिटनेस संबंधी, अगर गाड़ी की फिटनेस सही नहीं है और फिटनेस सर्टिफिकेट, तो फिटनेस भी उसको कैंसिल करते हैं, बाद में कार्रवाई करते हैं।
1: हाँ, कई बार ये होता है ना कि गाड़ी का अगर फिटनेस नहीं है उसका, मान लो स्टीयरिंग फेल हो गया या कोई ऐसी बात हो गई गाड़ी की मैं कमी थी उसकी वजह से एक्सीडेंट हो गया, फिर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट पिक्चर में आता होगा मेरे जाते।
2: हाँ, यस, उसमें हम जब मैंने जैसे आपसे निवेदन किया कि जब बड़े एक्सीडेंट होते हैं, माइनर एक्सीडेंट में हम लोग इन्वॉल्व नहीं होते, मेजर एक्सीडेंट में ही डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होता है एक्सीडेंट मैटर्स में।
1: ओके, तो चलिए, इतनी अच्छी बातें हमारी अग्रवाल साहब से हो रही है, तो ऐसा करते हैं कि एक यहाँ रुक के एक अग्रवाल साहब की पसंद का गाना सुनते हैं और फिर इस बातचीत को आगे जारी रखते हैं।

0: आपका क्या विचार है इसमें?
1: आलोक जी, इसमें मैं बताना चाहूंगा कि जैसे हमने 56 सर्विसेज जो हमारी जो हैं, रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस, परमिट वगैरह की, टैक्स वगैरह की, तो हमने ऑनलाइन कर दी है और उसको आरटीओ विजिट करने की जरूरत ही नहीं है।
0: अच्छा
1: तो करप्शन तो जब होगा जब वो आरटीओ विजिट करे। और फिर पर हमारे क्या कि पब्लिक क्या है कि जो है वो आईटी सेवी नहीं है, प्रॉब्लम हमारे साथ ये है, तो वो उसको जो इसलिए हमें दिक्कत आ रही है। फिर वो ऑफिस जाते हैं, एजेंट को पकड़ते हैं। जैसे आपको मैं एग्जांपल देके बताता हूँ कि रजिस्ट्रेशन जैसे है प्रोसेस, तो नए नए रजिस्ट्रेशन में उसको डीलर के यहीं रजिस्ट्रेशन करवा लेगा वो,
0: ठीक
1: उसको
0: है,
1: ऑफिस जाने की जरूरत ही नहीं है।
0: ओके
1: दूसरा, हमारे 90% जो गाड़ियां हैं वन टाइम टैक्स से कवर हो गई। मतलब हमने उन गाड़ियों को दोबारा टैक्स जमा कराने के लिए हर साल पहले जाना पड़ता था, वो जाने की जरूरत ही नहीं है।
0: सही बात है।
1: वो आपको मतलब रजिस्ट्रेशन के टाइम ही उनका वन टाइम टैक्स जमा हो जाता है। तो इसलिए अब हमने ज्यादातर केसेस में उसको मत केवल जो बसेज हैं, ट्रक्स हैं, यही वन टाइम टैक्स जमा नहीं कराती है, बाकी छोटी गाड़ियां सारी उसमें आ गई। लाइसेंस में भी हमने बहुत तो इम्प्रूव किया है, परमिट्स में भी इम्प्रूव किया है। तो ऑनलाइन से मतलब ऑनलाइन टैक्स में अब करप्शन तो क्यों है कि पब्लिक आईटी सेवी नहीं है, प्रॉब्लम यह है। अगर वो जैसे, लेकिन मैं इसमें एक ये निवेदन करना चाहूंगा कि कई स्टेट्स ने परिवहन सेवा केंद्र स्थापित कर रखे हैं। तो वहां क्या है कि जैसे पासपोर्ट में आपने देखा होगा कि बैकएंड पे तो वो डिपार्टमेंट वाले बैठते हैं, पासपोर्ट वाले, बाकी प्राइवेट कंसल्टेंसी कंपनी वाले बैठते हैं,
0: हाँ, टाटा वाले बैठते हैं, टीसीएस वाले बैठते हैं।
1: फ्रंट एंड पे बैठते हैं। ये हमने उनको सजेशन, जब मैं डिलोइट में था तो हमने ये उनको ये सजेशन दिया था, तो किसी किन्हीं कारणों से ये इंप्लीमेंट नहीं हुआ। वैसे कई स्टेट में परिवहन सेवा केंद्र बने हुए हैं, तो वहां पर एक नॉमिनल फीस 50-100 रुपए में वो सारी सर्विसेज अवेल कर लेते हैं।
0: ओके
1: दुर्भाग्य से हमारे यहाँ नहीं हो पा रही है। ये हमने उनको गवर्नमेंट को रिकमेंड भी किया था, लेकिन ये इंप्लीमेंट हो नहीं पाया। गवर्नमेंट का ये व्यू था कि भाई ई मित्र केंद्र से ही करवा लेंगे काम, जबकि चित्र केंद्र वाले इतने एक्सपर्ट नहीं होते ये
0: नहीं
1: देने
0: होते,
1: के
0: नहीं
1: लिए।
0: होते। नहीं अग्रवाल साहब, ये तो आपका सजेशन बहुत मुझे पसंद आ रहा है कि अगर जिस तरह से पासपोर्ट के लिए टीसीएस हैंडल कर रही है और बहुत अच्छा सिस्टमेटिक काम है उनका, ऑर्गेनाइज भी है, तो उस तरह का अगर कोई ट्रांसपोर्ट के लिए सर्विसेज हो जाए तो मेरे ख्याल में बहुत समस्याएं दूर हो जाए। तो बात तो सही है आपकी। और लेकिन थोड़ा सा एक जनता का, श्रोताओं, जनता का भी ये परसेप्शन है कि हम लोग एक बार भी चक्कर नहीं लगाना चाहते और हम चाहते हैं कि घर बैठ के ही हमारा लाइसेंस और आरसी बन के आ जाए, सारा काम हो जाए। तो हम कई बार खुद जानकर एजेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं जिससे हमें बिल्कुल ही करना पड़े। ये एक दिक्कत है। इसको किस तरह से ठीक किया जा सकता है? क्या पब्लिक अवेयरनेस किस तरह से फैलाई जा सकती है अग्रवाल साहब?
1: पब्लिक तो उसमें देखो सिंपल सिस्टम, एक के लिए हमने प्रचार प्रसार भी इतना वो बजट नहीं होता, गवर्नमेंट का प्रचार प्रसार भी नहीं, लेकिन parivahan.gov.in की एक साइट है सर,
0: अच्छा
1: उस साइट पे आप स्टेट चूज करिए, आरटीओ चूज करिए, फिर आप सर्विसेज ले लीजिए। तो जैसे मैंने आपसे निवेदन किया कि 56 सर्विसेज हमारी ऑनलाइन हो चुकी है, तो उसको आरटीओ विजिट करने की जरूरत ही नहीं है, घर बैठे उसका काम हो सकता है। लेकिन पब्लिक को इतना पता नहीं रहता।
0: सही बात। तो चलिए, अब आपको क्या लगता है, जैसे चलिए आप तो और कंसल्टेंसी वगैरह भी कर रहे हैं, ये आगे आने वाले समय में क्या डिजिटल रिफॉर्म्स हमें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में देखने को मिल सकते हैं?
1: डिजिटल रिफॉर्म तो इसमें जैसे अभी हमने जैसे आपको अभी बताया, जैसे कि रजिस्ट्रेशन लाइसेंस की अब हार्ड कॉपी रखने की जरूरत नहीं है। अब ये मतलब आपको इसकी सॉफ्ट कॉपी से ही काम चल जाएगा। मतलब आपको स्मार्ट कार्ड के पैसे खर्च करने की भी जरूरत नहीं है, वापस उसको कलेक्ट करने के लिए ऑफिस भी जाने की जरूरत नहीं है, और वो आपको ये वहीं से मिल जाएगा। फिर हमने इसमें डिजिटल में ये कर रखा है कि चालानिंग जो सिस्टम है जिसमें हमारा मेजर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, करप्शन के है, तो उसको भी हम आईटीएमएस सिस्टम से कवर कर रहे हैं। मतलब कैमरे लग जाएंगे जगह जगह, वो कैमरे से ही उनकी जो नंबर प्लेट की वो एक टेक्नोलॉजी होती है, उसको कहते हैं ANPR, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन। तो उस ANPR टेक्नोलॉजी से उसका मतलब गाड़ी का वो फेच हो जाएगा, और सिस्टम से वो जो वाहन सॉफ्टवेयर है उससे उसका पता पड़ जाएगा कि गाड़ी का परमिट है नहीं है, लाइसेंस मतलब पोल्यूशन है नहीं है, फिटनेस है नहीं है, तो उसका चालान मतलब बिना इंस्पेक्टर की प्रेजेंस के ही बन सकता है चालान। तो वो हम इस पे जा रहे हैं कि तो उससे ये करप्शन भी रुके।

0: और चालान सारे हमने ऑनलाइन कर दिया, मतलब वो मतलब मैनुअल नहीं बनाते चालान, उसको ये चालान हो गया अब
1: ई
0: हमारा,
1: चालानी रचना
0: वो
1: आज
0: ऑनलाइन ही पेमेंट,
1: आया।
0: चालान का भी पेमेंट ऑनलाइन होगा, वो नगद पैसा लेता
1: हाँ
0: नहीं है।
1: हाँ आज ही अखबार में आया था कि वो पॉज मशीनें हम इनको ट्रैफिक सिग्नल्स पे भी दे रहे हैं, उनको पेमेंट करने में दिक्कत आ रही थी चालान का, तो उसके बारे में आया था। चलिए तो बहुत अच्छी बात है, इसी आशा के साथ हम एक नया गाना सुनते हैं और फिर इस बातचीत को आगे जारी रखते हैं।

0: हाँ, वेलकम बैक अग्रवाल साहब। अब आते हैं आपके असली जो मिशन है जिस पे आप काम कर रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद अब डेलोराइट इंडिया के साथ और कंसल्टेंट के रूप में काम करना, ये अनुभव आपको कैसा रहा एक इस तरह की प्रोफेशनल एजेंसी के साथ, क्योंकि आप अभी तक सरकार के साथ काम कर रहे थे, तो इसमें क्या फर्क लगा आपको?
1: इसका मुझे बड़ा अच्छा लगा कि डिलोइट से एक बिग फोर, डिलोइट के बारे में बताना चाहूंगा कि बिग फोर कंसल्टिंग कंपनी है वर्ल्ड की, और
0: हाँ
1: कंसल्टिंग में इसका बड़ा नाम है। तो मेरे को इसका सौभाग्य प्राप्त हुआ कि इसने, मैंने राजस्थान की बीपीआर बनाई और हिमाचल की बीपीआर इससे बनाई,
0: अच्छा।
1: और अभी भी मैं डिलोइट से मतलब लिंक हूँ। तो इसका डिलोइट का मुझे अच्छा, मैं कुछ छोटे से एक दो एग्जांपल बताना चाहूंगा कि हमने किस तरह से टेक्नोलॉजी में लोगों को बेनिफिट हुआ। जैसे
0: जी
1: एक मैं बताता हूँ कि पहले जैसे गाड़ी की जो कीमत होती, कॉस्ट, हमारा टैक्सेशन सिस्टम है वो गाड़ी की कीमत पे डिपेंड करता है। तो
0: जी
1: कीमत पहले जो कॉस्ट डाली, कॉस्ट है सिस्टम में, हमें मैनुअली फीड करनी पड़ती थी कंप्यूटर पे।
0: ओके अच्छा
1: हमने उनको उनको राय दी डिपार्टमेंट को कि भाई आप मैन्युफैक्चर कोड देता है, मैंने वो होमोलोगेशन हमने करवा दिया। तो मैन्युफैक्चर जैसे मारुति है, तो मारुति की जो जितने भी मॉडल्स है तो उसकी कॉस्ट वो उसमें सिस्टम में डाल देता है, तो हमें मतलब फीड करने की जरूरत नहीं होती। मैनुअली गलतियां होती थी, तो
0: अच्छा
1: उसका तो उससे तो एरर के चांसेस मिट गए, मतलब अंडर रिक्वायरी के जो ऑडिट वगैरह सब सब लफड़ा खत्म हो गया, मतलब और उसमें जो
0: अच्छा
1: एक्चुअल टैक्स इम्पोज हो गया,
0: ओके ओके, मैं
1: उससे
0: समझ
1: रिवेन्यू
0: गया
1: काफी बढ़
0: आपकी
1: गई,
0: बात।
1: डिपार्टमेंट की रिवेन्यू बढ़ी थे। इसी तरह
0: अच्छा
1: से जैसे जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट वगैरह है, जेसीबीज है, इनका रजिस्ट्रेशन होते नहीं थे और ये
0: अच्छा
1: माइनिंग एरिया में चलती रहती थी बिना रजिस्ट्रेशन पे,
0: हाँ बिल्कुल,
1: और
0: ऐसे ही
1: एक
0: चलती
1: एक
0: रहती
1: गाड़ी
0: थी।
1: पे काफी पैसा बाकी रहता था। टैक्स जो 1.5-2 लाख रुपए टैक्स बनता था ये रिकवर नहीं होता था। तो इसका हमने ये क्या टेम्पररी रजिस्ट्रेशन, जहां भी हमें लूपहोल्स लगे कि जहां टेम्पलेट रजिस्ट्रेशन ले उसी टाइम हम पूरा वन टाइम टैक्स रिकवर करने लग गए। जी हमारी,
0: ओके
1: हमने इनको रिकमेंड किया गवर्नमेंट को, उससे ये हो गया। इसी तरह
0: अच्छा
1: और भी कई ऐसे मतलब ऐसे सुझाव थे जिससे मतलब मुझे बड़ा अच्छा, इससे अच्छा अनुभव लगा मतलब।
0: अच्छा दैट रिमाइंड्स मी अग्रवाल साहब, मेरे को एक ये गांव वगैरह में हाईवे के आसपास हम जाते हैं तो वहां जो ये ट्रैक्टर्स हैं ये तो बिल्कुल ऐसे फ्री स्टाइल में सारे घूमते रहते हैं, ज्यादातर तो मैंने देखा है, और इन पे ना तो कोई नंबर प्लेट ढंग से दिखती है, और इनका रजिस्ट्रेशन होता है कि नहीं होता है? ये एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स क्या माफ है टैक्सेस से, क्या है इनका चक्कर?
1: नहीं, ट्रैक्टर को तो अब बिना ना, अब तो वो पहले पुराने ट्रैक्टर होंगे सब, अब तो नए ट्रैक्टर बिना रजिस्ट्रेशन के बाहर नहीं जा सकते। मतलब
0: ओके okay.
1: वो जब परचेजर को जब भी मिलेगा, जब उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और लेकिन आप ये कह सकते हैं कि जैसे उसमें रिफ्लेक्टिव टैप वगैरह ये नहीं लगती, तो उससे वो क्या है कि एक्सीडेंट के कारण बनते हैं रोड पे, हाईवे पे, ये आप कह सकते हैं। तो उसमें भी इनको प्रयास करने की आवश्यकता है काफी
0: तो
1: डिपार्टमेंट।
0: मतलब ये भी वन टाइम टैक्स देके ही खरीद सकता है
1: हाँ
0: ट्रैक्टर
1: हाँ हाँ
0: आदमी
1: हाँ ये
0: आजकल?
1: मैं, हाँ मैंने कहा ना, जैसे हमने केवल ट्रक बस, जो बड़ी ट्रकें हैं और बड़ी बसें हैं, इनके
0: अच्छा
1: अलावा सारी ही गाड़ियां वन टाइम टैक्स देके खरीद सकता है।
0: ओके ओके, क्योंकि ये तो कुछ बहुत ही एकदम फ्री स्टाइल घूमते रहते हैं और ना तो इनमें लाइट ढंग से जलती है ना कुछ करती है, और काफी के एक्सीडेंट्स होते ही हैं इसकी वजह से, हम देखते ही हाईवे के आसपास। तो आप अग्रवाल साहब राजस्थान ट्रांसपोर्ट पेंशनर सोसाइटी के भी अध्यक्ष हैं, तो इस संस्था के नाम से आप थोड़ा रोड सेफ्टी के बारे में बताइए, इस पे किस तरह से आप काम कर रहे हैं और क्या क्या काम कर रहे हैं?
1: चलिए, ये जो है हमारे 70 मेंबर्स हैं इसमें, दो रिटायर्ड जो ऑफिसर्स हैं।
0: हाँ
1: हमने ये सोचा कि भाई डिपार्टमेंट को मतलब हमें कुछ रिटर्न करना चाहिए, तो
0: ठीक है
1: हमने भी ये सेवा के लिए भाई कि इसमें हम लोग के इसमें एक ऑडियो विजुअल प्रोग्राम बना रखा हमने, डॉक्यूमेंट्री टाइप का, तो 40 मिनट की डॉक्यूमेंट्री है। तो
0: अच्छा।
1: हम एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जैसे कॉलेजेस वे स्कूल, बड़ी हायर स्कूल्स है उसमें जाते हैं और उनको बच्चों को डॉक्यूमेंट्री दिखाते हैं और ट्रैफिक के नियमों के बारे में उनको अवेयर करता है। हमारा मेन उद्देश्य तो ये है। इसके
0: अच्छा
1: अलावा मैं काफी इसमें जैसे हम डिपार्टमेंट में भी इन्वॉल्व रहते हैं, जब इनकी मीटिंग्स होती है तो उसमें हमें बुलाया जाता है। मतलब इसके एक एनजीओ, हमने हमारा जो एनजीओ है इसमें इम्पोर्टेंट वो है, ट्रांसपोर्ट पेशनर्स सोसाइटी
0: अच्छा
1: फॉर रोड सेफ्टी अवेयरनेस के नाम से एक हमने एक एनजीओ बना रखा है, तो उसका मैं
0: अच्छा।
1: राजस्थान का अध्यक्ष भी हूँ। तो
0: अच्छा।
1: उसमें हम लोगों ने ये कि जब हाई लेवल पे जब मिनिस्टर्स या कमिश्नर लेवल पे मीटिंग होती है उसमें भी हम अटेंड करते हैं, सेमिनार को कॉन्फ्रेंसेज होती है, वर्कशॉप होती है, उनमें भी अटेंड करते हैं। और समय समय पे हम गवर्नमेंट को इसमें रोड सेफ्टी सिनेरियो इम्प्रूवमेंट करने के लिए हम अपने रिप्रेजेंट भी करते रहते हैं।
0: अच्छा, तो क्या बच्चों को आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाके उनको अवेयरनेस फैलाते हैं? दूसरा क्या कभी कभी बच्चों को लेके इधर भी आते हैं चौराहे वगैरह पे या क्रॉसिंग पे, उनसे लोगों को समझाने के लिए या उनको समझाइश करने के लिए जो लोग बिना हेलमेट के घूम रहे हैं, ऐसे कोई बच्चों को लेके जाते भी है उन बच्चों को, स्कूल वालों को आगे भी
1: नहीं, इस तरह ये हम नहीं करते, ट्रैफिक पुलिस करते हैं। हम लोग तो वहीं तक ही सीमित है कि जहाँ कॉलेज और स्कूल वगैरह में ही हम हमारा प्रोग्राम होते हैं, रोड पर नहीं लेके आते बच्चों को।
0: क्योंकि ये बहुत अनऑर्गेनाइज सा दिखता है, क्योंकि देखते हैं कि मेजर चौराहों पे जो बड़ी सड़कें हैं उन पे तो फिर भी लोग हेलमेट लगा लेते हैं, लेकिन जो गली कूचों के अंदर लोग होते हैं वहां तो कोई हेलमेट लगाता ही नहीं है आजकल, ये बात है।
1: इसके बारे में मैं एक ये बताना चाहूंगा कि सभी ये मानते हैं कि अभी तक कुछ नहीं हुआ, मतलब जनरल पब्लिक का ये रहता है कि मैं बिना हेलमेट चलता रहा हूँ आगे भी मेरा कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं एक बताता हूँ, एक छोटी सी गलती आपकी जानलेवा साबित हो गई कि कभी भी इन सुरक्षा मामलों में चूक नहीं करनी चाहिए हमें, मतलब हमेशा ही ट्रैफिक के नियमों का पालन करना चाहिए।
0: चलिए, तो इसी जो हमारी सड़क दुर्घटनाएं और उनसे बचाव और सुरक्षा, जीवन में सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है, सबसे अहम अहम और इम्पोर्टेंट बात यह है। तो इसी बात पे रुक के हम एक गाना सुन लेते हैं और फिर आगे इस बातचीत को जारी रखते हैं। करीब करीब हम आखिरी पायदान पर आ गए हैं और अब थोड़े से सवाल और हैं। मस अग्रवाल साहब,

0: अब अग्रवाल साहब, थोड़ा सा आपके व्यक्तिगत जीवन की तरफ आते हैं। आपने बताया कि आपकी पत्नी रेनू अग्रवाल जी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी चुनौती के बावजूद बेहद पॉजिटिव जीवन जी रही है, तो ये किस तरह से आपने उनको सपोर्ट करते हैं, और क्या आप लोग दोनों को क्या खास एक्टिविटी करते हैं जिससे उनकी लाइफ नॉर्मल रहे, कुछ इसके बारे में बताइए। हाँ, अगर बताना चाहें आप तो,
1: हाँ
0: थोड़ा सा
1: सर,
0: व्यक्तिगत सवाल है
1: डेफिनेट
0: आपका।
1: डेफिनेटली सर, मैं बताना चाहूंगा कि पहले तो मेरे वाइफ को भी मतलब धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो उन्होंने अपने सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया कि मतलब कि मैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी मैं श्रोताओं को बताना चाहूंगा,
0: हाँ बताइए
1: हाथ
0: सर।
1: पैरों की स्ट्रेंथ है, मसल्स उनके हाथ पैरों की स्ट्रेंथ की मसल बिल्कुल खत्म से हो जाती है, वो उठाना बैठाना पड़ता है, सारा काम कराना पड़ता है। तो
0: ओके
1: फिर लेकिन वो बड़ी पॉजिटिव है, और मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि हम सारे सोशल प्रोग्राम्स अटेंड करते हैं, किटी अटेंड करते हैं, घूमते हैं, और सब मतलब सिनेमा भी जाते हैं,
0: ओके
1: मार्केट भी
0: अच्छा
1: जाते
0: अच्छा
1: हैं। तो वो
0: अच्छा
1: मैं मतलब वो बहुत पॉजिटिव है मेरे लिए इस चीज को लेके।
0: बहुत बहुत ये इस तरह का सपोर्ट अपने पार्टनर का मिल जाए अगर ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन में, तो बहुत बड़ी बात होती है। तो चलिए इस बात पे भी हम एक अच्छा सा गाना सुनते हैं, लेकिन उससे जो आप ये एक्सटेंसिव ट्रेनिंग जो ट्रेवलिंग करते हैं, कोई खास जगह ऐसी जो आपकी फेवरेट हो जहां आप जाना पसंद करते हो, जयपुर में या कहीं विदेश में या देश में, कहाँ कहाँ कहाँ आपने ट्रेवलिंग कर ली है?
1: सर मैंने करीब पूरा अभी 2-3 साल में करीब कश्मीर, आसाम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मतलब बड़ा एक्सटेंसिवली ट्रेवल कर लिया करीब इंडिया के सभी पार्ट्स में, और मुझे अच्छा लगता है। और एक्चुअली हमें सब जगह हेल्प भी मिल जाती है, जैसे लंबे टूर तो हम हवाई जहाज से गए, तो एयर होस्टेस वगैरह मतलब हर जगह का हमें सपोर्ट मिलता है।
0: सपोर्ट
1: ऐसा
0: मिल
1: हमें व्हीलचेयर को लेके बल्कि बल्कि फायदा ही रहता है कि जैसे कहीं भी
0: जाता
1: एंट्री होती है तो प्रेफरेंस इनको मिलती है, तो कोई मुझे ज्यादा दिक्कत आई नहीं इसमें।
0: हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल समझ गया। वो थोड़ा सा व्हील चेयर से आपको प्रेफरेंस भी मिल

0: जाता है वो भी मिल जाता है। लेकिन ये आपने बताया कश्मीर आसाम और कहाँ कहाँ आप उनको घुमा लाए, इसके लिए तो आपको बहुत बहुत ही एक साधुवाद होना चाहिए आपका, बहुत अप्रिशिएशन वाली बात है साहब, इतनी डिफिकल्टी के बावजूद आप उनको लेके जाते हैं, ये तो बहुत ही आपके अंदर जीवटता है, यही कहना चाहिए।
1: नहीं वो भी
0: तो
1: पॉजिटिव है सर, इसलिए मैं ये कर पाता हूँ कि वो खुद
0: हाँ
1: पॉजिटिव का भी है।
0: ये बहुत बात है, उनका उनका उनका पॉजिटिव रहना और उनका जाने के लिए तैयार रहना वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। नहीं कई बार तो इंसान ऐसी बीमारी में डिप्रेशन में चला जाता है, उसकी इच्छा ही नहीं करती है कहीं जाने की, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो चलिए इस जीवटता के नाम पे और इसी उत्साह के नाम पे जो मिसेज अग्रवाल में, हम रुक के गाना सुन लेते हैं और फिर इस बातचीत को रैप अप करते हैं।

0: हाँ अग्रवाल साहब, तो अब ये बताइए कि खास तौर से चूंकि आप आजकल रोड सेफ्टी पर काम कर रहे हैं, तो अंत में हमारे श्रोताओं और विशेषकर युवाओं और वाहन चालकों के लिए आप कोई ऐसा संदेश, कोई ऐसी बात कहना चाहें जिससे कि वो जब भी सड़क पर जाएं तो अपने आप को सुरक्षित रखें, खुद को भी रखें और जो दूसरे लोग हैं उनको भी सुरक्षित रखें, तो उनके लिए कुछ कहना चाहें तो आपका स्वागत।
1: सर, इस पे मैं युवाओं ड्राइवर्स के लिए जो आपने कहा है कि सेफ ड्राइव करिए, क्योंकि जीवन बड़ा अनमोल है, तो आप ट्रैफिक का रूल को फॉलो करिए। और उसमें आपको दो चीजों का बेनिफिट है, एक तो चालान आपका नहीं होगा कभी, मेंटल पीस भी रहेगी और आपका जीवन भी सुरक्षित रहेगा। अगर आप जल्दबाजी करते हैं और उसमें और स्पीडिंग करते हैं तो आप 10 मिनट पहले तो पहुंच जाएंगे, लेकिन आप अपने जीवन को खतरे में डालेंगे। तो आप ट्रैफिक के नियमों को पालना करना ही आपके लिए समझदारी का काम है। इसके अलावा मैं यूथ को एक मैसेज और देना चाहूंगा कि आप साइंटिफिक टेम्परामेंट रखें, आईटी सेवी बने, हार्ड वर्क करें और सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। यूथ को मैं एक ये एडिशनल मेरा मैसेज भी देना चाहूंगा।
0: बिल्कुल सही बात है। तो आपकी जो रोड अवेयरनेस की कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, अगर किसी तरह से हम लोग उससे जुड़ सके तो हमें बेहद खुशी होगी, बताइएगा अगर ऐसा कोई संभव हो तो। क्योंकि हाँ, कोई क्योंकि
1: डेफिनेटली
0: उसका
1: अगर
0: कोई
1: आपके कोई
0: पब्लिसिटी करनी हो रेडियो पे या कोई ऐसा काम करना हो, कुछ उसके लिए प्रमोशन करना हो, कुछ
1: डेफिनेटली
0: बताना हो तो आप बताइएगा।
1: आलोक जी, हमारी बड़ी सुंदर डॉक्यूमेंट्री है, वो लोगों को बच्चों को बड़ी पसंद आती है, बड़ी इंफॉर्मेटिव
0: जी
1: भी है। और
0: हाँ
1: तो मतलब आप कभी किसी आपके कोई परिचित के मिल कोई स्कूल कॉलेज वगैरह में कोई प्रोग्राम होना चाहेंगे तो हम डेफिनेटली वहाँ आएंगे और हमें अच्छा लगेगा।
0: चलिए, बहुत बढ़िया। तो श्रोताओं, आज की इस विशेष बातचीत में हमने जाना कि किस तरह एक संवेदनशील, दूरदर्शी प्रशासनिक अधिकारी अपने कार्यकाल में सिस्टम को बदलने की दिशा में सार्थक प्रयास करता है। श्री जीडी अग्रवाल ने जी ने न केवल ट्रांसपोर्ट विभाग में तकनीक और पारदर्शिता को बढ़ावा दिया, बल्कि रिटायरमेंट के बाद भी रोड सेफ्टी अवेयरनेस के माध्यम से समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। सर, आपके अनुभव, विचार और प्रेरणादायक जीवन यात्रा हमारे श्रोताओं के लिए आपने साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार, आपने हमें समय दिया।
1: आलोक जी, आपको भी धन्यवाद और श्रोताओं को भी धन्यवाद, उन्होंने ये सब मेरा सुना। थैंक यू वेरी मच।
0: तो श्रोताओं, यदि आप वाहन चलाते हैं तो ट्रैफिक रूल्स का पालन कीजिए, सीट बेल्ट और हेलमेट का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि सुरक्षित सफर ही सबसे महत्वपूर्ण सफर है। इसी संदेश के साथ मैं आलोक कुमार आपसे विदा लेता हूं। सुनते रहिए रेडियो SN। नमस्कार।
2: दोस्तों, जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर। सुनना ना भूलिएगा।

0: wonderful phrase. Hakuna Matata. Ain't no peasant craze.
1: दोस्तों, प्रेरणादायक गीतों के साथ प्रेरणादायक बातों के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। प्रेरणा मोटिवेशन इतना जरूरी क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि हमें जिंदगी बेहद खूबसूरत तरीके से हंसते खेलते गुजारनी है, रोते धोते नहीं। तो आइए दोस्तों, दिन की शुरुआत करते हैं हंसते खेलते हुए प्रेरणादायक गीतों के साथ और करते हैं प्रेरणादायक बातें।
2: What a wonderful phrase, Hakuna Matata.
3: दोस्तों, डर से डरने की कोई जरूरत नहीं है। बड़ी मजेदार वाली बात है। आपका डर महज एक भाव के अलावा कुछ भी नहीं होता, जो आपकी कल्पना से और बढ़ता जाता है। डर को आप खुद चुनते हैं, लेकिन सफल लोग अपने इस डर को कभी खुद पर हावी नहीं होने देते। वो अपने डर को अपनी सफलता की सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करते हैं। वो हर उस चीज से लड़ते हैं जिससे वो डरते हैं और उस पर जीत हासिल करते हैं। वो खुद को विश्वास दिलाते हैं कि वो अपने डर से लड़ सकते हैं। बस आपको भी अपने डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए। बने रहिए आरजे समीर के साथ। हर वक्त जीतने का जज्बा होना चाहिए, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले समय जरूर बदल जाता है और तब आप जीतते ही जीतते हैं दोस्तों।

अगर आप अपने बच्चों को बुद्धिमान बनाना चाहते हैं तो उन्हें परियों की कहानियां सुनाएं। यदि आप उन्हें और भी बुद्धिमान बनाना चाहते हैं तो उन्हें और ज्यादा परियों की कहानियां सुनाएं।

ना छुपाओ बच्चों हमें तो बताओ, आने वाली दुनिया कैसी होगी समझाओ। हमसे ना छुपाओ बच्चों हमें तो बताओ, आने वाली दुनिया कैसी होगी समझाओ।

0: दोस्तों मैं लाया हूं कुछ बेहद सुंदर कहानियां जो हमें प्रेरित करेंगी, बहुत कुछ सिखाएंगी। तो लीजिए सुनिए।
1: आत्मा से तृप्त लोग कैसे होते हैं। मेरे एक मित्र बस स्टैंड पर बैठे अपने शहर जाने वाली बस का इंतजार कर रहे थे। अभी बस स्टैंड पर लगी नहीं थी। महाशय बैठे बैठे एक किताब पढ़ रहे थे, तभी लगभग 10 साल की एक बच्ची पास आकर बोली, बाबूजी पेन ले लीजिए, 10 के 4 दे दूंगी, बहुत भूख लगी है, कुछ खा लूंगी। उसके साथ एक छोटा सा बच्चा था, शायद भाई होगा उसका। मेरे मित्र ने कहा कि उसे पेन तो नहीं चाहिए। इसके जवाब में उसका सवाल बहुत ही प्यारा सा था, तो फिर हम कुछ खाएंगे कैसे। मित्र ने कहा, बेटा पेन तो नहीं चाहिए पर तुम कुछ खाओगे जरूर। और फिर उन्होंने बैग में से बिस्किट के 2 पैकेट निकाले और दोनों को पकड़ा दिए। लेकिन मेरे मित्र की हैरानी की सीमा न रही जब उस बच्ची ने 1 बिस्किट का पैकेट वापस कर दिया और कहा, बाबूजी हमारे लिए 1 काफी है। मेरे मित्र जवाब सुनकर चौंक गए। उन्होंने दोबारा कहा, अरे रख लो, कोई बात नहीं। लेकिन मेरे मित्र की आत्मा को झिंझोड़ दिया उस बच्ची के जवाब ने, जब उसने कहा, तो फिर आप क्या खाएंगे। दोस्तों इस संसार में करोड़ों अरबों कमाने वाले लोग इंसानियत को ताक पर रखकर लोगों को बेतहाशा लूटने में लगे हुए हैं। वहां एक भूखी बच्ची ने मानवता की पराकाष्ठा का पाठ पढ़ा दिया। मैंने अंदर ही अंदर अपने आप से कहा, इसे कहते हैं आत्मा के तृप्त लोग। लोभवश किसी से भी इतना ना लेना कि उसके हिस्से का भी हम खा जाएं। मानवता की पराकाष्ठा का पाठ है, बहुत सुंदर।
0: दोस्तों मैं बस अब भी आता हूं, जाइएगा नहीं कहीं, एक और कहानी लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहा हूं। तब तक ये गीत सुनिए।

आइए दोस्तों, आपको बताते हैं अमर के बारे में, जो अपने आप में एक प्रेरणा के बहुत बड़े स्रोत हैं। गरीबी और आर्थिक विषमता के दर्दनाक हालात ने दशकों पहले राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर को इस कदर व्याकुल कर दिया था कि उनकी कलम से विपथगा कविता निकली थी। श्वानों को मिलते दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिबक ठिठुर जाड़ों की रात्रि बिताते हैं, पापी महलों का अहंकार देता मुझको तब आमंत्रण। दुर्योग से अमीरी गरीब की खाई चौड़ी ही हुई है, इसलिए तमाम कानूनी उपायों के बावजूद बाल श्रम बाल विवाह की समस्या खत्म नहीं हो पाई है। कई बार किसी ढाबे या रसूखदार के घर के बाल श्रमिक हमें यूं देखते मिल जाते हैं, मानो कह रहे हो हमें उबार लो, हमारा हाथ थाम लो, हम भी कुछ बनना चाहते हैं। अमरलाल ऐसी ही अभिलाषाओं के प्रतिनिधि हैं। राजस्थान के बंजारा समुदाय में पैदा हुए अमर का बचपन भी उन अनगिनत बच्चों जैसा था, जिन्हें सुबह सुबह ये सवाल सताता था कि आज घर में खाने को कुछ मिलेगा भी या नहीं। इस बुनियादी चिंता ने अमर से भी उनका लड़कपन छीन लिया। उसमें स्कूल और किताबों का कोई जिक्र क्या होता। होश संभालते ही पेट भरने की मजबूरी ने अमर को भी पत्थर तराशों के बीच पहुंचा दिया। उनके परिवार पर स्थानीय महाजन का कर्ज ऐसा चढ़ा कि उतरने का नाम ही नहीं लेता था, इसलिए परिवार के सारे सदस्य बंधुआ मजदूरी करने को बाध्य थे। छोटे छोटे बच्चे से भी पत्थर ढुलवाने में साहूकार सामंतों को शर्म नहीं आती थी। साल 2001 की बात है, अमर की उम्र भी 6-7 साल की रही होगी। उनका खानाबदोश परिवार उन दिनों जिस गांव की पत्थर की खान पर काम कर रहा था, वहां बचपन बचाओ आंदोलन एक शिक्षा रैली लेकर पहुंचा। खदान के करीब से गुजरते हुए रैली के अगुआ कैलाश सत्यार्थी ने जब नन्हे अमर के हाथों में पत्थर का बड़ा टुकड़ा देखा तो वो ठिठक गए। वो फौरन अमर के माता पिता से बात करने के लिए पहुंचे ताकि उन्हें समझा सकें कि ये जुल्म है, ये तो इस बच्चे के खेलने कूदने पढ़ने लिखने के दिन है। अब जिनके पुरखों ने कभी स्कूल न देखा हो तो वो भला क्या समझेंगे शिक्षा की कीमत। उनके लिए तो बाल मजदूरी कोई अनहोनी बात थी नहीं, क्योंकि वो सब यही तो करते हुए बड़े हुए थे। मगर कैलाश सत्यार्थी उन्हें समझाने में जुटे रहे कि उनका बेटा किसी बड़े काम के लिए बना है। उन्होंने अमर के पिता से कहा कि यदि वो अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्च वहन नहीं कर सकते तो जयपुर में एक बाल आश्रम है जो इसकी जिम्मेदारियां उठा सकता है। गरीब माता पिता भी बेटों का भला चाहते थे और उनके दिल में भी तरह तरह की

तमन्नाएं थीं। कैसे अपनी संतान को नजरों से इतना दूर भेज दें? बिछो के ख्याल से ही उनका दिल कांप उठा। लरजती हुई आवाज में अमर के पिता ने सत्यार्थी जी से बस यही कहा कि वो पहले जयपुर आश्रम जाकर वहां रह रहे बच्चों को देखेंगे, फिर फैसला करेंगे। माता पिता दोनों जयपुर बाल आश्रम आए। असंतोष की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, क्योंकि जैसी जिंदगी वे अपने बच्चों को दे रहे थे उससे आश्रम के जीवन की कोई तुलना ही नहीं थी। अमर अपने दो बड़े भाइयों के साथ जयपुर आश्रम आ गए। वो सब बेहद खुश थे, क्योंकि वहां वे अपनी मर्जी से खेल सकते थे, पढ़ लिख सकते थे। 6 महीने तक आश्रम में पढ़ने के बाद अमर और उनके भाइयों का औपचारिक शिक्षा के लिए एक सरकारी स्कूल में दाखिला करा दिया गया। अमर ने वहीं से 12वीं की अपनी शिक्षा पूरी की। बाल आश्रम ने अमर और उनके भाइयों को एक नई जिंदगी दी, बल्कि अमर के नेतृत्वकारी गुण को भी बहुत अच्छी तरह से निखारा। वो कई बार बाल आश्रम बाल सभा के अध्यक्ष चुने गए। आश्रम में ही उन्होंने सत्यार्थी के बेटे भुवन से संवाद करने का मौका मिला, जो पेशे से वकील है। जैसे जैसे अमर बड़े और शिक्षित हुए, उनका यकीन पुख्ता होता गया कि कानून ही वो जरिया है जिसकी मदद से बच्चों को शोषण से मुक्ति दिलाई जा सकती है। साल 2013 में उन्होंने लॉ कॉलेज में दाखिला लिया और 2018 में कानून में स्नातक की डिग्री हासिल करने के बाद 2019 में उन्होंने प्रैक्टिस शुरू कर दी। करीब 6 महीने तक दिल्ली के 30,000 कोर्ट में वकालत करने के बाद 1.5 साल तक अमर ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक वरिष्ठ वकील के साथ काम भी किया और उसके बाद वो अपनी संस्था के लिए काम करते रहे। वो न सिर्फ बाल मजदूरों के मुक्ति अभियान में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, बल्कि जिस किसी गांव के बारे में उन्हें पता चलता है कि वहां बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जा रहा, अमर वहां पहुंचकर अपनी कहानी सुनाते हैं और परिजनों को प्रेरित करते हैं कि वे अपने बच्चों का भविष्य बचा लें। अमर को स्वीडन और नीदरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों को संबोधित करने का भी मौका मिला, जहां उन्होंने बच्चों के अधिकारों और बाल विवाह के खिलाफ दुनिया का ध्यान खींचा। अमर के माता पिता के पास जोधपुर में अब अपना घर है। जब भी कोई उनसे पूछता है, आपका बेटा दिल्ली में वकील है, अमर के अभिभावकों के लिए ये गौरव का क्षण होता है। उनके दूसरे बेटा बेटी भी अब नौकरी करते हैं, मगर इन वर्षों में अमर बार बार अपने समुदाय के बीच लौटते हैं। नतीजन उनके बंजारा समुदाय के अब लगभग सभी बच्चे स्कूल जाते हैं। इलाके के खानाबदोश समुदायों के सामने मिसाल के तौर पर उनकी कहानी पेश की जाती है। मानना होगा कि अमर ने हाशिए पर जीने वाले हरेक बच्चे के हक की लड़ाई लड़ी है। अब अपने बचपन को उन्होंने हमेशा अपने भीतर जिंदा रखा है, ताकि वो उन्हें याद दिलाता रहे, हजारों बाल श्रमिकों को अमर की तलाश है।

दोस्तों, रेडियो सुनना इतना जरूरी क्यों है, आइयो बताता हूं। प्रकृति ने हमें बनाया ही ऐसा है। जब हम कुछ सुनते हैं तो उसकी छवि, उसकी पिक्चर अपने दिमाग में बनाते हैं। तो रेडियो सुनने से हम तमाम क्रिएटिविटी को, अपनी रचनात्मकता को मजबूत करते हैं, अपने दिमाग में पिक्चर्स बनाते हैं, छवियां बनाते हैं और खुश होते हैं। तो इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए। बेशक हर दिन अच्छा नहीं होता, लेकिन हर दिन कुछ ना कुछ तो अच्छा जरूर होता है।

0: अगर आप कुछ ऐसा पाना चाहते हैं जो आपने पहले कभी नहीं पाया, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपने पहले कभी नहीं किया।
1: मुश्किल का नाम मिट जाएगा।

0: सर, इतनी तेज चलाने की क्या जरूरत है सर?
1: जिंदगी में मैंने कभी हार नहीं मानी विनोद, और वो भी एक गलत तरीके से ओवरटेक करती हुई गाड़ी से।
0: That's the spirit, सर।

0: पहले।
1: दोस्तों मैं बस अब भी आता हूँ, जाइएगा नहीं कहीं, एक और कहानी लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहा हूँ। तब तक ये गीत सुनिए।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं समीर। देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। लीजिए दोस्तों, सुनते हैं हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कविता। हरी हरी दूब पर ओस की बूंदें अभी थीं, अभी नहीं है। ऐसा खुशियां जो हमेशा हमारा साथ दे, कभी नहीं थी, कहीं नहीं है। कंक्यार की कोख से फूटा बाल सूर्य जब पूरब की गोद में पांव फैलाने लगा, तो मेरी बगीची का पत्ता पत्ता जगमगाने लगा। मैं उगते सूर्य को नमस्कार करूं या उसके ताप से भाप बनी उसकी बूंदों को ढूंढूं? सूर्य एक सत्य है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता, मगर ओस भी तो एक सच्चाई है। ये बात अलग है कि ओस क्षणिक है। क्यों ना मैं क्षण क्षण को जीऊं, कण कण में बिखरे सौंदर्य को पीऊं? सूर्य तो फिर भी उगेगा, धूप तो फिर भी खिलेगी, लेकिन मेरी बगीची की हरी हरी दूब पर ओस की बूंद हर मौसम में नहीं मिलेगी।

0: मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
1: हमारे देश में भयंकर वाली टेक्नोलॉजीज चलती हैं। अमेरिका के दो साइंटिस्ट एक बात सुनकर हमारे देश की बेहोश हो गए जब उन्हें पता चला कि घर में अगर चप्पल उल्टी रखती जाए तो लड़ाई हो जाती है।
0: दोस्तों, मैं हूं आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले आइए ना एक गीत सुन लेते हैं।

0: Potter. What a wonderful phrase.
1: Hakuna Matata. Ain't no peasant craze.
2: दोस्तों आज के इस हंसी खुशी के प्रेरणादायक प्रोग्राम में बस इतना ही। खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, कल फिर मिलता हूँ।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

दोस्तों आज के कलाकार हैं देव आनंद जी। हिंदी सिनेमा में तकरीबन 6 दशक तक दर्शकों को अपने हुनर, अदाकारी और रोमानियत का जादू बिखेरने वाले सदा बहार अभिनेता देवानंद का जन्म 26 सितंबर 1923 को पंजाब के गुरदासपुर में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। देवानंद का असली नाम धर्मदेव किशोरीमल आनंद था। जी हाँ, है ना मजेदार बात। उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में अपनी स्नातक की शिक्षा 1942 में लाहौर में पूरी की। 1943 में अपने सपनों को साकार करने के लिए जब वो बॉम्बे पहुंचे तब उनके पास सिर्फ 30 रुपए थे और रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था। चलिए सुनते हैं उनका ये नगमा।

देवानंद ने मुंबई पहुंचकर रेलवे स्टेशन के समीप ही एक सस्ते से होटल में कमरा किराए पर लिया। उस कमरे में उनके पास तीन अन्य लोग भी रहते थे जो उनकी तरह ही फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने के लिए कोशिशें कर रहे थे। देवानंद को पहला ब्रेक 1946 में प्रभात स्टूडियो की एक फिल्म हम एक हैं उसमें मिला। चलिए सुनते हैं उनकी फिल्म का ये गीत।

हालांकि फिल्म फ्लॉप होने से दर्शकों के बीच वो अपनी पहचान नहीं बना सके। इस फिल्म के निर्माण के दौरान ही प्रभात स्टूडियो में उनकी मुलाकात गुरुदत्त से हुई, जो उस समय फिल्मों में कोरियोग्राफर के रूप में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे थे। चलिए दोस्तों, देवानंद जी की फिल्म का ये गीत सुनते हैं।

देवानंद को पहली नौकरी मिलिट्री सेंसर ऑफिस में एक लिपिक के तौर पर मिल गई, जहां उन्हें सैनिकों द्वारा लिखी गई चिट्ठियों को उनके परिवार के लोगों को पढ़कर सुनाना पड़ता था।

फिर साल 1948 में जिद्दी उनकी पहली फिल्म थी जो हिट हुई। सन 1949 में उन्होंने नवकेतन बैनर्स नाम से अपना प्रोडक्शन हाउस एस्टैब्लिश किया और वर्ष 1950 में अफसर नाम की फिल्म का निर्माण किया, जिसका निर्देशन उनके बड़े भाई चेतन आनंद ने किया था।

1951 में उनके बैनर की अगली फिल्म बाजी का निर्देशन उनके दोस्त गुरुदत्त ने किया, जिसने उनकी किस्मत बदल दी। आइए दोस्तों सुनते हैं देवानंद की फिल्म का एक और गीत।

दिल का पर्दा खोल दो। जब प्यार किसी से होता है तो दर्द सा दिल में होता है। तुम एक हसीन हो लाख में।

साथ में चलते हो, यह रेस बयां हो जाता है। हर बात पे आहे भरते हो, हर बात पे दिल भर जाता है।

0: जब प्यार किसी से होता है तो दर्द सा दिल में होता है, तुम एक हसीन हो लाखों में, भला पाक तुम्हें कोई खोता है। ओ जिया ओ जिया ओ जिया कुछ बोल दो।
1: दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि देवानंद साहब ने कुछ भूमिकाएं ऐसी भी निभाई जो कुछ नकारात्मक शेड लिए हुए थी। जब राज कपूर की आवारा प्रदर्शित हुई, तभी देवानंद की राही और आंधियां भी प्रदर्शित हुई थी। इसके बाद आई टैक्सी ड्राइवर, जो हिट साबित हुई। देवानंद साहब की फिल्म का एक और गीत।

1948 के साल में जब देवानंद 25 साल के थे, उनकी दो फिल्में और रिलीज हुईं, फणी मजूमदार की हम भी इंसान हैं और गिरीश त्रिवेदी की विद्या। पहली फिल्म की नायिका रमोला थी, जो 1951 में निर्देशक विजय महात्रे की फिल्म स्टेज में उनकी नायिका बनी। इसमें विद्या फिल्म इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस फिल्म में सुरैया पहली बार देवानंद की नायिका बनी थी। चलिए सुनते हैं उनकी फिल्म का एक और गीत।

0: अच्छे हम अकेले
1: साथ लेने।
0: अच्छे हम अकेले
1: चार पतंग चल न सकोगे समझे।
0: हाँ समझे।

देवानंद जी ने सुरैया के साथ बहुत सारी फिल्में की। एक फिल्म थी जिसका नाम था जीत, जो 1949 में पर्दे पर आई थी। ये फिल्म बहुत हिट गई। लीजिए दोस्तों, देवानंद की फिल्म का एक और गीत।

तो दिल में

सिनेमा जगत में सदाबहार माने जाने वाले देवानंद साहब ने कभी राजनीति में भी कदम रखा था। मौका था देश में इमरजेंसी का। जून 1975 में उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जब देश में आपातकाल लगाने का ऐलान किया तो देवानंद ने फिल्म जगत के अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर उनका विरोध किया था। बाद में जब आपातकाल खत्म हुआ और देश में चुनाव की घोषणा हुई तो उन्होंने अपने प्रशंसकों के साथ जनता पार्टी के चुनाव प्रचार में भी हिस्सा लिया। लीजिए दोस्तों उनकी फिल्म का ये गीत सुनते हैं।

0: आना दिल में समाना जियाना दिल में समाना एक दिल एक जान है हम तुम जमाना क्या कहेगा
1: छोड़ दो अचल जमाना क्या कहेगा
0: इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना दीवाना क्या कहेगा
1: जमाना क्या कहेगा
0: दीवाना क्या कहेगा।
2: दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि देवानंद साहब इतने सुंदर थे कि उनको सफेद कलर का सूट यानी कि कोट और पैंट पहनना मना था क्योंकि महिलाएं उनको इस रूप में देखकर आत्महत्या करने पर उतारू हो जाती थी। इस बात की सच्चाई को साबित तो नहीं किया जा सकता लेकिन ये तो तय है उनके लटकते छटकते अंदाज बेहद खूबसूरत थे। लीजिए उनकी फिल्म का एक और गीत सुनते हैं।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

और दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में आज हैं द लेजेंडरी एक्टर ऑफ बॉलीवुड अमिताभ बच्चन। जी हां दोस्तों, पेशे खिदमत है अमिताभ बच्चन साहब की ही एक फिल्म का ये गीत।

0: हमारे साथ बने हुए हैं गोपाल रघुवंशी जी अलीगढ़ से। मैं गोपाल जी से पूछना चाहूंगा, आप अमिताभ बच्चन जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे?
1: उनके बारे में कुछ कहना, सूरज को दीपक दिखाना है, मतलब उनके बारे में इतने लोगों ने इतनी बातें कर दी, मैं कुछ भी बोलूंगा कुछ भी तो बहुत छोटी चीज होगी। अमिताभ बच्चन नेम इज इटसेल्फ, अपने आप में लेजेंडरी कह लो, परसोना कह लो, कुछ भी कह लो आप उस आदमी को। मेरी तो जो मुझे लगता है कि जब से मैंने होश संभाला है फिल्म इंडस्ट्री में या रेस्पेक्टेड फिगर्स में, उनसे ऊपर शायद एक दो लोग ही होंगे, लाइक गावस्कर और तेंदुलकर और किशोर कुमार। बाकी आई रेट अमिताभ बच्चन, वेरी रेस्पेक्टेबल फिगर, वेरी एडोरेबल फिगर, एवरीथिंग, मतलब ही मीन्स एवरीथिंग टू मी।
0: बेहतरीन बेहतरीन। गोपाल भाई, तो क्या मैं आपसे गुजारिश कर सकता हूँ कि अमिताभ बच्चन जी के ऊपर फिल्माया हुआ आपका पसंदीदा गीत जो आप श्रोताओं को सुनवाना चाहें हमें बताएं?
1: सर, अमिताभ बच्चन पे फिल्माई हुई मुझे हर चीज पसंद है, तो मैं, इट इज वेरी हार्ड टू पिक मी वन सॉन्ग, बट स्टिल, दिल भर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही।

0: बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, शानदार। तो गोपाल रघुवंशी जी का जो ये फेवरेट सॉन्ग है, या वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग है अमिताभ जी का, वो श्रोताओं आपके लिए पेशे खिदमत है। बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल जी हमारे साथ बने रहने के लिए।
1: थैंक्स।
2: दोस्तों, अमिताभ बच्चन साहब का जन्म 11 अक्टूबर 1942 में अलाहाबाद में हुआ, जिसे आज प्रयागराज बुलाया जाता है, और इनके पिताजी थे हरिवंश राय बच्चन। पेशे खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।
3: तूने अभी देखा नहीं, देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं। दुनिया दीवानी मेरी, मेरे पीछे पीछे भागे, किस में है दम, यहाँ ठहरे जो मेरे आगे, मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं, किसी से भी हारे नहीं हम।

देखा नहीं देखा है तो जाना नहीं जाना है तो माना नहीं मुझे पहचाना नहीं दुनिया दीवानी मेरी मेरे पीछे पीछे भागी किसी में है दम यहाँ ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं देखो टकराना नहीं किसी से भी हारे नहीं हम।

जाना नहीं दुनिया दीवानी मेरी, मेरे पीछे पीछे भागे किस मेहतम यहाँ ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं किसी से भी, हारे नहीं हम।

0: मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
1: ट्रेन में वार्निंग लिखी थी, बिना टिकट सफर करने वाले यात्री होशियार। संता तो ये लाइन पढ़ते ही बिखर गया। वाजी, ये कोई बात हुई? बिना टिकट सफर करने वाले होशियार और हमने टिकट ले लिया तो हम बेवकूफ।
2: बाबूजी मेरा चांसेस दो ना प्लीज। सुनो कितना अच्छा गाना आ रहा है।
3: ऑल इंडिया रेडियो से आ रहा है?
2: हाँ।
3: ऑल इंडिया रेडियो तेरे बाप का नहीं, जितने देर तक तेरे लिए बसता रहेगा। कोई घा रहा होगा। सो जाएगी ना?
2: हाँ।
3: चल सो जा।

दोस्तों, अमिताभ बच्चन साहब के बारे में कितना कहा जा सकता है ये तो मुझे मालूम नहीं, मेरे बताने से बहुत बहुत ज्यादा आप लोगों को पता होगा। पेशे खिदमत है उन्हीं की फिल्म का, उन्हीं के ऊपर फिल्माया हुआ ये खूबसूरत सा गीत।

मैं समीर बोल रहा हूं, आपका रेडियो दोस्त। बने रहिए मेरे साथ। मेरी ओर देखो, हवा में उड़ता ये नष्ट हो जाने वाला सूखा पत्ता कहता है मुझसे, मेरी ओर तो देखो।

0: मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूँ समीर। आप मेरे साथ है ना? मैं हूँ आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
1: पत्नी ने कहा, सुनो जी, डॉक्टर ने मुझे एक महीना आराम करने के लिए स्विट्जरलैंड या पेरिस जाने को कहा है, हम कहाँ जाएंगे? पति ने कहा, दूसरे डॉक्टर के पास।

0: मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुहारा।
1: विज्ञान चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, हर बीमारी का आज भी एक ही रामबाण इलाज है।
2: सो जाओ, थोड़ी देर अपने आप ठीक हो जाएगा।

दोस्तों, अमिताभ बच्चन की फिल्में हम हमेशा देखना चाहते हैं, अमिताभ बच्चन साहब के गाने हम हमेशा सुनना चाहते हैं। लीजिए, पेश खिदमत है उन्हीं की आवाज में ये गीत।

देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

0: आइए दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं अल्फाज से एहसास तक के इस बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम में। हमारी रेडियो दोस्त आरती रॉय जी लेकर आई हैं एक बहुत ही खूबसूरत गुलदस्ता अल्फाजों का, गजलों का। गजल सिर्फ शब्द नहीं होते दोस्तों, एहसासों की एक खूबसूरत दुनिया होते हैं जहां मोहब्बत, यादें, खुशी और दर्द सब अपनी आवाज पाते हैं। तो आइए कुछ देर के लिए हर फिक्र को पीछे छोड़ दें और डूब जाएं दिल को छू जाने वाली चुनिंदा गजलों के साथ जो आरती जी हमारे लिए लेकर आई हैं। शुरू करते हैं इस प्यारे से प्रोग्राम को।
1: शाम महके तेरे तसव्वुर से।
2: एक समंदर है जो काबू में है मेरे, एक समंदर है जो काबू में है मेरे, और एक कतरा है जो मुझसे संभाला नहीं जाता। एक उम्र है जो पिता

0: है उसके बगैर, एक उम्र है जो बितानी है उसके बगैर, और एक लम्हा है जो मुझसे गुजारा नहीं जाता। नमस्कार, आदाब, और बहुत बहुत खुशामदीद 90.8 FM पर रेडियो SN और रेडियो तांत्या भील के साथ मैं हूं आपकी हमनफस, आपकी रेडियो दोस्त आरती रॉय। दोस्तों, हमारे शो अल्फाज से एहसास तक में आज एक बहुत ही खास और बेमिसाल मेहमान मुंबई से हमारे साथ जुड़ी हैं, जिनकी जिंदगी इंटरनेशनल बिजनेस, खेल के जज्बे और संगीत की रूहानी दुनिया का एक बहुत खूबसूरत संगम है। हमारे साथ मौजूद हैं हमारी अपनी अजीज रमा आनंद जी। रमा जी पिछले 25 सालों से ज्यादा वक्त से इंटरनेशनल फार्मा मार्केटिंग की दुनिया का एक जाना पहचाना बहुत बड़ा नाम है। अफ्रीका, मिडल ईस्ट और साउथ एशिया में काम करने का उनका बहुत बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। लेकिन सबसे खास बात ये है कि अपने स्कूल के दिनों में वो एक बेहतरीन एथलीट भी थी, जिन्होंने एथलेटिक्स, बैडमिंटन और कबड्डी में भी कई मेडल्स जीते। दोस्तों, और संगीत, संगीत तो उनके खून में है। मुझे बता रही थी रमा कि अपने दादाजी के जमाने से चला आ रहा संगीत का शौक उन्होंने आज भी अपने दिल में सहेज कर रखा है। और आज के हमारे इस शो में सबसे खास बात यह है कि रमा ने खुद अपनी सुरीली आवाज में गाकर हमें बेहद खूबसूरत गजलें भी भेजी हैं। रमा, हमारे शो में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है, बहुत बहुत स्वागत है, आदाब, आइए तशरीफ रखिए।
1: थैंक यू सो मच आरती जी, इस प्रोग्राम में मुझे इनवाइट करने के लिए और मेरे SN परिवार के सभी दोस्तों के लिए नमस्कार। एंड आई होप ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगेगा।
0: क्यों नहीं रमा, आप इतनी कामयाब बिजनेस, एक कॉरपोरेट में काम करती हैं, कॉरपोरेट वुमेन हैं, तो आपके साथ तो बात करके ये हमारी खुशकिस्मती है कि आप हमारी महफिल में आई आज। तो आइए रमा, फिर बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो पहले ये बताइए रमा कि आपकी इस मेहनत और लगन से ये साफ पता चलता है कि सही सोच से किसी भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर कामयाबी हासिल की जा सकती है। आपका 25 सालों से भी लंबा करियर इंटरनेशनल बिजनेस और ब्रांड मैनेजमेंट रहा है। MSc केमिस्ट्री और इंटरनेशनल ट्रेड के बाद अफ्रीका और मिडल ईस्ट के बाजारों में काम करने का ये एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा?
1: मेरे लिए अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के बाजारों में काम करने का अनुभव सिर्फ एक प्रोफेशनल जर्नी नहीं है,
0: जी
1: बल्कि एक लर्निंग और लगातार अपने आप को एक डेवलप करने की यात्रा भी रही है।
0: जी
1: जो एजुकेशन ने मुझे टेक्निकल एंड कमर्शियल फाउंडेशंस में स्ट्रॉन्ग किया, बट इंटरनेशनल मार्केटिंग करके ये मैंने सीखा कि जो मेजर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वो है ट्रस्ट। सो
0: जी
1: मैंने हमेशा कोशिश की है कि जो भी बिजनेस हम डेवलप करें वो सिर्फ ट्रांजैक्शनल ना होते हुए एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप बने।
0: जी
1: दैट्स हाउ इट इज। ग्राउंड रियलिटीज को समझकर वर्क करने से ज्यादा सफलता मिलती है।
0: जी और लोगों से डायरेक्ट इंटर आप मतलब उनसे ताल्लुक बना के, उनसे मिल के, यू मीन टू से दैट
1: यस सो सबकी कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं, उनके जो मार्केट डायनामिक्स और उनकी जो कल्चरल बाउंड्रीज होते हैं, उनका जो पेमेंट पैरिटी पैटर्न्स होते हैं, बाइंग पैटर्न्स होते हैं, वो सब समझ के अगर ग्राउंड में रह के अगर काम करें तो ज्यादा सक्सेस मिलता है।
0: मतलब आप पूरे तरीके से पूरी स्ट्रेटजी को बना के और उसी तरीके से ही आप काम करती हैं। बहुत खूब।
1: जी
0: रमा जी, आप ये बताओ कि आपने मुझे बोला था कि आप अपने स्कूल के दिनों में एथलेटिक्स, बैडमिंटन और कबड्डी में मेडल्स जीत चुकी हैं, तो खेल के मैदान से मिली स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ने आपकी प्रोफेशनल लाइफ और लीडरशिप को कितना फायदा उठाया, मतलब पहुंचाया आपको?
1: हाँ, ये सही है। स्कूल में मैंने बहुत स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया था, तो जीतना और हार को करना, ये एक चीज तो स्कूल से ही सीखने का मौका मिला है। बट ये मैं बोल सकती हूँ कि लाइक स्पोर्ट्स, अपने जो बिजनेस होते हैं या फिर लीडरशिप में भी कई ऐसे मौके आते हैं जहाँ पे हमें टारगेट्स होते हैं, चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, मार्केट्स अनसर्टेन होता है, हमें हमारा कंपटीशन पता नहीं होता है ना। बट द मेजर थिंग इज कि हम डटे रहे, अपने आप पे बिलीफ रखे, और जब तक के जैसे स्पोर्ट्स में है, आखिरी लाइन तक नहीं पहुंचो तब तक गेम खत्म नहीं होता है। सो सिमिलरली टिल टाइम यू डोंट क्विट, यू हैव एन ऑप्शन टू सक्सीड। सो मैं यही सोचती हूँ कि डिसिप्लिन और मेहनत, प्रेशर के टाइम हम कैसे अपने आप को काम रखे, टीम स्पिरिट को कैसे मेंटेन करें, अगर ये हम कर सकते हैं तो कोई भी स्ट्रगल से हम कमबैक कर सकते हैं।
0: बहुत बिल्कुल सही बोली आप। खेल इंसान को वैसे हर मुश्किल सिचुएशन में मुकाबला करने का एक जो एक बात सिखाता है, वही बात आप मतलब कह सकते हैं कि हम बचपन से सीखते हैं और फिर अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी हम उसको उसी तरीके से ही लागू कर देते हैं और उसमें सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। दिस इज व्हाट आई थिंक यू मीन टू से, है ना?
1: जी जी बिल्कुल।
0: तो रमा, इसी नोट पर चलिए फिर, आपकी गाई हुई बहुत खूबसूरत गजल प्यार का पहला खत लिखने को वक्त तो लगता है, ये आपने हमें गा के भेजी है, तो आइए सुनते हैं आपके साथ, अपने दोस्तों के साथ मिलकर ये खूबसूरत गजल।

0: बहुत बहुत खूब। क्या मखमली आवाज और कितना दिलकश अंदाज था रमा आपका, कितनी खूबसूरत तरीके से आपने ये गजल गाई है।
1: शुक्रिया, थैंक यू।
0: रमा आप ये बताइए कि आपके परिवार में, जैसा कि आपने कहा, आपके वालिद की तरफ से यानी आपकी पैटर्नल साइड में कई पीढ़ियों से आपने कहा कि म्यूजिक का बहुत ही खूबसूरत माहौल रहा है, इतनी बिजी प्रोफेशनल लाइफ में संगीत आपके लिए किस तरह सुकून और सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बनता है?
1: एक्चुअली हाँ, मेरे पापा के साइड से संगीत का बहुत खूबसूरत माहौल रहा है हमेशा से ही। मैं कह सकती हूँ कि संगीत सिर्फ सुनने के लिए नहीं है हमारे लिए, इट इज एक्चुअली पार्ट ऑफ, जैसे कह सकते हैं, जिंदगी का एक हिस्सा ही है
0: जी
1: और ये परवरिश और यादों से भी जुड़ा हुआ है ना। तो अगर आप प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ के बारे में पूछते हैं तो मैं आपको कह सकती हूँ कि जब लगातार कई इमोशंस के बीच हम नॉर्मली रहते हैं तो उस वक्त संगीत मेरे लिए एक तरह का इमोशनल रीसेट बन जाता है। कितना भी दिन चैलेंजिंग क्यों ना रहा, कुछ देर अच्छा म्यूजिक शाम को आप सुन लो तो
0: जी
1: मन एकदम शांत हो जाते हैं और आप अपने आप से फिर रिकनेक्ट करने लग
0: बिल्कुल
1: जाते हैं। तो मेरे लिए संगीत की सबसे खूबसूरत बात यही रहेगी कि इट इज अ काम इन द सराउंडिंग केओस ऑफ लाइफ, सो इन शॉर्ट हैप्पीनेस।
0: बिल्कुल मतलब अपने सोल को भी तो हमको उसको भी तो खुराक देनी होती है ना। मेरे
1: जी जी बिल्कुल
0: नजदीक संगीत से बढ़कर आप अपने आपको रूहानी खुशी शायद ही किसी और चीज में मिलती हो, मिलती
1: जी
0: है कई भी और चीजों में, पर ये एक अलग तरह की खुशी होती है। तो
1: हाँ
0: बहुत खूबसूरत म्यूजिक वाकई रूह को बहुत सुकून देता है। तो रमा आप हमें ये बताइए कि
1: जी
0: आप तमिल बैकग्राउंड से हैं, ठीक है,
1: जी
0: तो आप कई भाषाएं भी समझती हैं और मुंबई में भी रहती हैं तो अलग अलग कल्चर और भाषाओं के इस माहौल ने आपकी पर्सनैलिटी को कितना निखारा, क्या फर्क पड़ा आपको, क्या फील करती हैं आप?
1: एक्चुअली बचपन में जहाँ हम रहते थे वहाँ हम सराउंडेड बाय डिफरेंट अलग अलग भाषाओं के लोग थे, तो उनकी संस्कृतियां भी अलग थी। और सिमिलरली शहर में, मुंबई जैसे शहर में रहना और फिर प्रोफेशनल करियर में भी अलग अलग देशों और कल्चर्स के साथ काम करने का मौका मिला, तो एक हिसाब से मेरी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में ये हुआ कि इंक्लूसिवनेस एक हैबिट हो गई है।
0: जी
1: और सिर्फ कम्युनिकेशन के अलावा उनके कल्चर्स को अपनाना, उनके
0: जी
1: कल्चरल सेंसिटिविटीज को रिस्पेक्ट करना,
0: जी
1: तो उस हिसाब से एक पर्सनल कनेक्शन उनके साथ अच्छी बन जाती है। तो यही है कि ओपननेस और एडेप्टेबिलिटी का जो होता है ना, वो बहुत अच्छी तरह से मैं कर पाती हूँ, क्योंकि बहुत कुछ सही गलत का जो मापदंड होता है वो नहीं होता। जो मेरे लिए सही है वो हो सकता है उनके लिए कुछ और हो, या उनके
0: बिल्कुल
1: लिए जो सही है वो मेरे लिए, बट वी डोंट इंट्रूड ईच अदर स्पेस, ये दिस
0: बहुत
1: काइंड ऑफ सपोर्ट स्टेइंग इन कॉस्मोपॉलिटन सिटी हैज गिवन मी।
0: जी बहुत खूब बहुत खूब। जबान तो कोई भी हो, आपके संगीत का एहसास तो वैसे भी हर दिल में पहुंच ही जाता है, उससे क्या फर्क पड़ता है। और डिफरेंट, आप इतनी भाषाएं जानती हैं, आप इतने जगह आप बाहर भी घूमती हैं, तो सारी चीजों का मतलब उससे आपके हॉराइजन वाइडन हो जाते हैं और आपको बहुत फर्क पड़ता है आपकी पर्सनैलिटी में इस चीज का। क्योंकि हम मैं ये खुद सोचती हूँ कि अगर हम बहुत कोई चीज के बारे में बहुत अच्छा जानने लग जाते हैं, तो अपने दिल से ही हमको लगता है जैसे हमने कुछ हासिल किया है। तो वो खुशी जो होती है वो आपके चेहरे पर झलकती है, और इतना नॉलेज हो तो फिर आपकी पर्सनैलिटी तो निखरेगी ना।
1: जी, बिल्कुल, या
0: बहुत खूब, बहुत खूब। तो आइए रमा, फिर इसी खुशी में सुनते हैं आपकी दूसरी गजल जो बहुत ही खूबसूरत है, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है। अरे वाह रमा, गाई दो फटाफट 2 लाइनें इसकी।
1: ओके।

0: कितने साल हो गए इसको सुनते हुए, और जब तक जिंदा है सुनते ही रहेंगे ये गजल, और इसका कोई मुकाबला नहीं। थैंक यू सो मच रमा, इतनी खूबसूरत अनप्लग्ड वर्जन हमें सुनाने के लिए। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, और अब आप मुझे ये बताइए कि आपका मानना है कि पर्सनल हैप्पीनेस और प्रोफेशनल एक्सीलेंस जो होती है वो साथ साथ चलते हैं, तो एक बिजी करियर के साथ आप अपने फैमिली और बच्चों के बीच ये बैलेंस आपने कैसे बनाया?
1: मैं ये मानती हूँ कि पर्सनल हैप्पीनेस और प्रोफेशनल एक्सेलेंस एक दूसरे के साथ ही चलते हैं।
0: जी
1: जब तक आप पर्सनली खुश और इमोशनली फुलफिल्ड एंड सेटिस्फाइड नहीं हैं, उसका जो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है आपके वर्क में और आपके प्रोफेशनल लाइफ में डेफिनेटली नहीं दिखेगा।
0: बिल्कुल
1: सो इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ प्रोफेशनली चैलेंजिंग लाइफ, मैंने ये इंश्योर किया कि हर स्टेज पे मैं, डिपेंडिंग ऑन द कमिटमेंट लेवल रिक्वायर्ड, मैं अपनी फैमिली और करियर को बैलेंस करके चलूं। बच्चों को भी थोड़ा इंडिपेंडेंट किया कि वो अपने काम, बेसिक चीजें खुद कर सके, थोड़ी सेल्फ स्टडी खुद कर सके, है ना। फिर फैमिली ने भी इसमें समझा कि इनको प्रोफेशनली बहुत चैलेंजिंग करियर है, तो दे वर वेरी कोऑपरेटिव एंड उसकी वजह से आई कुड टेक फॉरवर्ड माय एम्बिशंस एंड डू वेल इन माय करियर।
0: बिल्कुल आई नो अगर मतलब बच्चे सपोर्टिव हों, बच्चे धीरे धीरे अपने आप सपोर्टिव हो जाते हैं, क्योंकि शुरू से अगर अपने प्रोफेशनल माँ बाप को देखते हैं तो उनमें अपने आप ये समझ आ जाती है, और फिर हस्बैंड की सपोर्ट हो तो फिर बहुत फर्क पड़ता है। एक्चुअली फैमिली ही इंसान की असली ताकत होती है, और ये बात
1: हाँ, यही
0: आज
1: है कि
0: हाँ बोलिए।
1: कि अपनी प्रोफेशनल अचीवमेंट्स पे जितना हमें गर्व होता है, उतने ही
0: बिल्कुल
1: पर्सनल लाइफ में जो सुकून है उसके लिए हम ग्रेटिट्यूड फील करते हैं।
0: बहुत खूबसूरत बहुत खूबसूरत बहुत खूबसूरत। तो रमा ये बताओ कि आप यंग जनरेशन को मेंटोर करने और फ्यूचर मार्केटिंग लीडर्स तैयार करने में यकीन रखती हैं, आज के यूथ को आप टीम वर्क और डिसिप्लिन को लेकर क्या टिप देना चाहेंगी?
1: ये बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट मैं ये कहूंगी कि टैलेंट इनिशियल थ्रस्ट दे सकता है, लेकिन डिसिप्लिन और इंटीग्रिटी ही आगे लेके जाएगा। तो उनको ये डेवलप करना चाहिए कि वो कंसिस्टेंटली एफर्ट्स डालें, वो पेशेंट रहे, बिकॉज आज की जनरेशन पे पेशेंस बहुत कम है। टॉलरेंस बिल्कुल नहीं है, किसी की बातें वो सुन के ले, ये भी सो हाँ, टीम वर्क की भावना से काम करे, सेल्फ सेंटर्ड ना हो, ऑल दीज थिंग्स विल हेल्प देम इन द लॉन्ग रन। बिकॉज ये तो है कि जैसे हम आज एथलेटिक्स की बात कर रहे हैं, तो इट्स नॉट अ स्मॉल 100 मीटर रेस, ये तो लंबा मैराथन है, तो हमें शुरू में थोड़ा स्लो ही जाना पड़ेगा एंड टुवर्ड्स द फिनिशिंग लाइन तक एनर्जी और अपनी सारी थ्रस्ट रख के फिर हमको फिनिश लाइन तक भागना पड़ेगा। तो ये ट्रेट्स जो है ना, जैसे कंसिस्टेंसी है, एफर्ट्स है, डिसिप्लिन है, यही आपको लास्ट लेग तक लेके जाएगी।
0: यू आर एब्सोल्युटली राइट। बिल्कुल डिसिप्लिन और टीम वर्क ही इंसान को किसी भी फील्ड में कामयाब बनाते हैं, ये बिल्कुल सही बोला आपने रमा। तो आइए रमा, अब आपकी खूबसूरत सी मखमली आवाज में गाई हुई प्रोग्राम में अब आपकी हम एक और गजल सुनते हैं, और ये गजल मतलब क्या गाया है यार आपने, मिलकर जुदा हुए तो ना सोया करेंगे हम, एक दूसरे की याद में रोया करेंगे हम। क्या खूबसूरत गजल है रमा। बहुत खूबसूरत चॉइस है आपकी। तो चलिए दोस्तों, रमा के साथ हम सब मिलकर सुनते हैं उन्हीं की गाई हुई, उन्हीं की मखमली आवाज में ये खूबसूरत सी गजल।

के लिए भी इस्तेमाल करना, जिससे आपकी पर्सनैलिटी में भी कोई फर्क ना आए आपके किसी भी चीज में, तो ये भी बहुत जरूरी है और हम कर सकते हैं अगर चाहें तो। बहुत खूबसूरत आपका मैसेज है, तो कितना इंस्पायरिंग भी है। तो आइए दोस्तों, इसी खूबसूरत ख्याल के साथ अब रमा जी की गाई हुई एक और खूबसूरत सी गजल, जो पंकज उदास जी की आवाज में है, और आहिस्ता कीजिए बातें, धड़कने सुन रहा होगा कोई। रमा, बहुत सुंदर गजल आपने गा के भेजी है, और आइए दोस्तों अब सुनते हैं फटाफट ये खूबसूरत गजल।

वाह, क्या नफासत और कितनी गहराई है आपकी गायकी में रमा। सॉफ्ट टू यू डियर।

0: यस सच्चे स्वीट हार्ट, बहुत सुंदर गाती हैं आप।
1: थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।
0: ये बताइए रमा, बचपन की खूबसूरत यादों से लेकर मुंबई और दुनिया के कई देशों में काम करने तक, आज आप अपने इस सफर को अगर मुड़कर देखती हैं तो दिल में सबसे पहला एहसास क्या आता है?
1: अगर मुझे अपने पूरे सफर को पीछे मुड़ के देखने का देखना है तो मैं यही कहूंगी कि द फर्स्ट फीलिंग दैट आई हैव वो है ग्रैटिट्यूड और शुक्रगुजारी, व्हाट यू कॉल, क्योंकि बहुत लाइफ हमेशा आसान नहीं रही थी, उतार चढ़ाव वाले थे,
0: जी
1: बट हर एक मोड़ पे जो पेरेंट्स से लेके मेरे स्कूल के टीचर्स, मेरे कॉलेज के प्रोफेसर जिन्होंने मुझे फोर्स किया एमएससी में ज्वाइन करने के लिए,
0: जी
1: देन आई वुड से देन मेरे फर्स्ट जॉब में जो मेरे मेंटर्स थे जिन्होंने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया ताकि
0: जी
1: मैं अपने आप को एक इंट्रोवर्ट से वेरी वेरी एक्सट्रोवर्ट पर्सन बनी हूँ। जब मैं कोविड के टाइम में मैंने ये करियो की गाना शुरू किया तब मुझे
0: जी
1: बहुत अच्छे मेंटर मिले जिनके वजह से मैं आज ये गजल्स गा सकती हूँ।
0: वाह
1: मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, उनकी कंट्रीब्यूशन अगर नहीं होती तो शायद मैं भी नहीं होती यहाँ।
0: वाह
1: सो ऑल आई वांट टू से इज फर्स्ट थैंक गॉड, और उसके बाद थैंकफुल फॉर ऑल द अपॉर्चुनिटीज विच इंस्पायर्ड मी, द
0: यस
1: लॉसेस विच मेड मी स्ट्रॉन्ग, द लर्निंग्स विच मेड मी वाइस। तो मैं सिर्फ ग्रेटिट्यूड ही फील करती हूँ।
0: बहुत खूबसूरत एहसास हैं आपके, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। तो रमा, मुंबई से हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने इस खूबसूरत सफर की बातें शेयर करने के लिए और अपनी सुरीली आवाज में गाकर भेजी गई इन गजलों से हमारी महफिल सजाने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। अब जाने से पहले आप अपने दोस्तों से भी बाय बाय कीजिए, और क्या पैगाम उनको देना चाहेंगी आप?
1: मैं थैंक यू सो मच, आप लोगों ने पेशेंटली मेरे ये प्रोग्राम को सुना, मुझे बहुत अप्रिशिएट किया आप लोगों ने, एंड मैं अपने फैमिली को भी थैंक्स बोलना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे अनकंडीशनल लव एंड सपोर्ट दिया है।
0: जी
1: दे हैव बीन माई वेरी स्ट्रॉन्ग पिलर्स, एंड आपको तो स्पेशल थैंक्स, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा।
0: अरे
1: सो कीप सिंगिंग, सिंगिंग इज लाइक मेडिसिन,
0: यस यस ऑफ कोर्स या
1: विदाउट द नीड टू हैव मेडिसिन।
0: यस ऑफ कोर्स
1: सो डेफिनेटली गाते रहिए, दिल खुश रहेगा। हर मूड को जो हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं गाने बताते हैं, हमें फील
0: बिल्कुल
1: कराते हैं,
0: सही बात,
1: हमारे इमोशंस को एक्सप्रेस कराते हैं, तो जरूर
0: बिल्कुल
1: गाते रहिएगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो कई बार 4 बजे उठ के भी मेरा मन करता है तो गाने लग जाती हूँ। मुझे जब मोहम्मद रफी साहब का कोई गाना गाना होता है तो 4 बजे उठ के, वो थोड़ी सी आवाज थोड़ी वैसी होती है ना, भारी
1: हाँ
0: भारी होती
1: जी
0: है, तो फिर मैं अपना उस टाइम में अपना वो शौक पूरा करती हूँ, बड़ा मजा आता है।
1: जी
0: तो दोस्तों, अब हम रमा को शुक्रिया करते हुए कहते हुए आइए अब सुनते हैं उनके उनकी गाई हुई आज की प्रोग्राम की आखिरी गजल। शाम से आंख में नमी सी है, आइए सुनते हैं।

0: बहुत बहुत शुक्रिया रमा का, जो उन्होंने हमें इतनी सुंदर और इतनी सुरीली गजल सुनाई। और इस गजल के इस सुरीले समापन के साथ अब हमारा आज का ये एक्सक्लूसिव शो अल्फाज से एहसास तक अपनी मंजिल तक पहुंचता है। मुंबई से हमारी मेहमान रमा आनंद जी की जिंदगी हमें ये सिखाती है कि मेहनत और डिसिप्लिन से आप किसी भी फील्ड में बड़ी कामयाबी पा सकते हैं, लेकिन अपने अंदर के आर्टिस्ट और फैमिली के प्यार को हमेशा संभाल कर रखना चाहिए। तो चलते चलते रमा आनंद जी की इस खास शख्सियत के नाम दो सत्रें पेश करती हूँ। वो ये हैं दोस्तों कि मेहनत और लगन से जिसने हर राह को आसान बनाया है, मेहनत और लगन से जिसने हर राह को आसान बनाया है, सुरों की मिठास से अपने हर एहसास को भी जग सजाया है, वही सच्चा, वही इंसान सच्चा मुसाफिर है इस दुनिया में ऐ दिल, जिसने काम के साथ साथ अपनों के दिल में भी घर बनाया। इस खूबसूरत ख्याल के साथ अब वक्त हो चला है कि आपकी हम नफस, आपकी रेडियो दोस्त आपसे ले इजाजत। वादा है कल ठीक इसी वक्त फिर हाजिर होंगी कुछ नए एहसासों और आपकी पसंद के नग्मों के साथ। तब तक आप सुनते रहिए 90.8 FM पर रेडियो SN और रेडियो टांटिया भी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अपनों से बहुत मोहब्बत कीजिएगा और गुनगुनाते रहिएगा, गाते रहिएगा। शब खैर, शुभ रात्रि, रब राखा, फिर मिलेंगे।
1: वो घड़ी दो घड़ी जहां बैठी।
2: तो दोस्तों, कैसा लगा ये गुलदस्ता जो आरती जी ने सजाया? तो आज की इन गजलों ने आपके दिलों को छुआ होगा और कुछ तो खूबसूरत एहसास आपके लिए छोड़ गई होंगी। अगली मुलाकात के लिए फिर लेकर आएंगी आरती जी ऐसे ही शानदार गजलें और दिलकश नगमे। तब तक मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने सभी का ख्याल रखिए। मिल

0: रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम टांट्या भील रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान आपू रोज करहूं वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा एत्रे हमरता रेजो टांट्या भील नो रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम।
1: किसान भाइयों एक बारी फेर था बहुत बहुत स्वागत करिए है तमार सबूनो रेडियो टंटिया भील 90.8 एफएम ना इना खेती

0: बिकती जा रही है उसको उत्पाद की गुणवत्ता अच्छी नहीं मिल पाती है, साथ साथ में जो उपभोक्ता है वो काफी इस समय चाहता है कि उसको ऐसा भोजन मिले जिसमें किसी प्रकार के जहर का अंश ना हो, यानी कि रेजिड्यू ना हो। इसलिए जैविक खेती की जो बहुत अधिक आवश्यकता पड़ रही है और जैविक के जो पदार्थ हैं उनका बाजार में अच्छा मूल्य मिलता है, उपभोक्ता उसको लाइक करता है और साथ साथ में किसान की उत्पादन लागत कम होती है, मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है, प्राकृतिक जो संसाधन वो उसका सही उपयोग होता है और साथ साथ में जो छोटे और मझोले किसान है उनको इससे ज्यादा लाभ है, क्योंकि ऐसे किसानों के पास पशुओं की संख्या ज्यादा होती है और वो अच्छा उत्पादन ले सकते हैं अगर वो जैविक खेती करते हैं। लेकिन जैविक खेती करने के लिए उनको कुछ बातों का खास ध्यान देने की आवश्यकता है, तो उसी की आज हम चर्चा करेंगे। हम चाहेंगे कि हमारे किसान भाई इसमें बढ़ चढ़ के अपने सवाल पूछें जिससे हम इस विषय पर अच्छी तरह से बातचीत कर सकें।
1: जी जरूर, तो विस्तार से हमारी चर्चा होगी इस कार्यक्रम में जैविक खेती और इसमें बायोगैस स्लरी के महत्व को लेकर, और आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जरूर जुड़े अपने सवालों के साथ। आइए उससे पहले नजर डाल देते हैं एक रिपोर्ट पर।
2: जैविक खेती में बायोगैस स्लरी का काफी महत्व होता है। बायोगैस संयंत्र में गोबर गैस की पाचन क्रिया के बाद 25% ठोस पदार्थ रूपांतरण गैस के रूप में होता है और 75% ठोस पदार्थ का रूपांतरण खाद के रूप में होता है। इसे ही बायोगैस स्लरी कहते हैं। इस स्लरी को किसान खेतों में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जब खाद सड़ जाती है तो उसमें किसी भी तरह की घास या बीज नहीं होता है, जो खेतों के लिए काफी उपयोगी रहता है। 2 घन मीटर के बायोगैस संयंत्र में 50 किलो प्रतिदिन के हिसाब से 18.25 टन गोबर एक साल में डाला जाता है। उस गोबर में 80% नमी युक्त करीब 10 टन बायोगैस स्लरी जैविक खाद मिल जाती है। ये खेती के लिए काफी अच्छी खाद मानी जाती है। इसमें 1.5 से 2% नाइट्रोजन, 1% फॉस्फोरस और 1% पोटाश होता है। बायोगैस संयंत्र में गोबर गैस की पाचन क्रिया के बाद कुछ हिस्सा नाइट्रोजन अमोनियम नाइट्रेट के रूप में होता है। ऐसे में अगर इसका तुरंत इस्तेमाल खेत में सिंचाई नाली के जरिए किया जाए तो इसका फायदा रासायनिक खाद की तरह फसल पर तुरंत होता है और उत्पादन में 10 से 20% बढ़त हो जाती है। बात अगर जैविक खेती की करें तो जैविक खेती कृषि की वो पद्धति है जिसमें पर्यावरण के प्राकृतिक संतुलन को कायम रखते हुए भूमि, जल और वायु को प्रदूषित किए बिना दीर्घकालीन व स्थिर उत्पादन लिया जा सकता है। भूमि का आहार जीवांश होता है। जीवांश गोबर, पौधों व जीवों के अवशेष को खाद के रूप में भूमि को प्राप्त होते हैं। जीवांश खाद के इस्तेमाल से पौधों को समस्त पोषक तत्व मिल जाते हैं। साथ ही इनके इस्तेमाल से उगाई गई फसलों पर रोगों और कीटों का प्रकोप काफी कम होता है, जिससे हानिकारक रसायन कीटनाशकों के छिड़काव की जरूरत नहीं रह जाती। इसका परिणाम ये होता है कि फसलें पूरी तरह से रसायन मुक्त और स्वस्थ होती है।
1: जी हाँ, तो ये रिपोर्ट आपने देखी। आइए अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और रुक करते हैं अगले मेहमान का और बांस की खेती के बारे में जानकारी लेते हैं। डॉक्टर अजय ठाकुर, आपसे सबसे पहले हम बांस के बारे में जानना चाहते हैं। बांस से जुड़ी हुई कई रोचक बातें हमने सुनी है, जैसे कि बहुत ही तेजी से बढ़ने वाले पौधों में से एक है बांस, और हमें बताएं कि इसकी खेती के क्या फायदे हैं किसानों के लिए।
3: जी हाँ, बांस के नेचुरली आपने जैसा कहा फास्टेस्ट ग्रोइंग जिसको बोलते हैं, सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है। और एक साल में, आपको एक रोचक तथ्य बताऊं, एक साल में अपनी पूरी लंबाई ले लेता है। अगले साल ये बढ़ता लंबा नहीं होता है, तो जितना लंबा होना है एक साल में हो जाता है। दूसरा इसका फायदा क्या है कि इसकी मोटाई भी 2 साल में पूरी हो जाती है, तो ये तैयार 2 साल तैयार होने वाला कोई भी वृक्ष यानी लकड़ी दान करने वाला पौधा नहीं है। जी। अगर आप कंपेयर करेंगे कि सुगर केन की जो खेती करते हैं गन्ने की, उसकी भी हम 2 साल की पैदावार लेते हैं, और गन्ने और बांस की में तुलना करें, तुलना नहीं है। आज के डेट में बायोमास को प्रोड्यूस करने वाला सबसे अच्छा पौधा है। और भारत जो है एक कास्ट में डेफिसिट कंट्री है, मतलब हम तो अभाव व्यापारी। आपको शायद पता होगा कि हम 50,000 लकड़ी का आयात करते हैं, उसमें बांस भी शामिल। अब हम इतना सारा आयात करते हैं तो बांस अगर हम ऐसा तेज बढ़ने वाला पौधा लगाते हैं,
1: बिल्कुल, तो काफी जो आयात है हमें करना पड़ता है। ऐसे में अगर किसान बांस की खेती में रुझान ले, बांस की खेती को अपनाए, तो आयात पर जो हमारी निर्भरता है उसे कम किया जा सकता है और साथ ही किसानों के लिए काफी फायदेमंद है, क्योंकि बांस के कई तरह के उपयोग हैं और ऐसे में जो उसकी मांग है वो काफी अच्छी है बाजार में। तो बांस की खेती को अपनाकर आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, लेकिन इस दौरान आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए विस्तार से जानेंगे आज के इस कार्यक्रम में। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर।
2: पारंपरिक खेती से हटकर कुछ करना चाहते हैं तो बांस की खेती आपको अच्छा मुनाफा दे सकती है। घटते वन क्षेत्र और लकड़ी के बढ़ते इस्तेमाल को नियंत्रित करने के लिए भी बांस काफी मददगार साबित हो सकता है। बांस की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकारी नर्सरी में पौध मुफ्त दिए जाते हैं। इस समय बांस की करीब 136 किस्में मौजूद हैं। अगर इसकी खेती को व्यावसायिक रूप देना है तो क्षेत्र और इस्तेमाल के हिसाब से इसकी किस्मों का चयन करें, लेकिन उनमें से 10 तरह की किस्मों का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। बांस की खेती में सबसे अच्छी बात ये है कि बांस की फसल 40 साल तक चलती रहती है। बांस की खेती के लिए किसी खास तरह की मिट्टी की जरूरत नहीं होती, इसे किसी भी सूखी मिट्टी में उगा सकते हैं, लेकिन रेतीली दोमट मिट्टी में बांस के पौधे ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं। बांस के पौधों पर जलवायु परिवर्तन का भी कोई खास असर नहीं पड़ता, ज्यादा ठंड और दलदल में भी पौधे ठीक से वृद्धि कर लेते हैं। बांस के बीजों की रुपाई पौध के रूप में की जाती है। इसके लिए नर्सरी में बीजों को तैयार कर लिया जाता है। नर्सरी में पौध तैयार करने के लिए क्यारियों को तैयार किया जाता है। इसके बाद 30 सेंटीमीटर की गहरी खुदाई कर गड्ढों में सड़ी गोबर की खाद को भर दिया जाता है और गड्ढों की सिंचाई कर दी जाती है। बीजों को रुपाई से पहले करीब 8 घंटे तक पानी में भिगो कर रखें और सतह पर बैठे बीजों की रुपाई क्यारियों में कर दें। रुपाई की बात करें तो बांस के पौधों की रुपाई खाली पड़ी जमीन या फिर खेत किनारे बाड़ की तरह की जाती है। बांस के पौधों को ज्यादा सिंचाई की जरूरत नहीं होती है, इसके पौधों को सिर्फ शुरू में ही नमी की जरूरत होती है। बांस के पौधों को खरपतवार से बचाना जरूरी है, क्योंकि खरपतवार बांस की बढ़वार को पूरी तरह से रोक देती है। इसके लिए समय समय पर निराई गुड़ाई कर खरपतवार को निकालते रहे।
1: बांस की खेती पर यह रिपोर्ट आपने देखी। आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और जैविक खेती के बारे में चर्चा को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर डबास आपसे ये जानना चाहूंगी कि जैसे कि आपने बताया कि जैविक खेती जो है वो उत्पाद की गुणवत्ता के लिहाज से हो या पर्यावरण की दृष्टि से हो या फिर मिट्टी की उपजाऊ शक्ति की दृष्टि से हो, ये काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन किसानों के मन में संशय ये रहता है कि रासायनिक खेती के मुकाबले अगर जैविक खेती को अपनाते हैं तो उत्पादन कम होगा और ऐसे में उन्हें नुकसान की चिंता होती है। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे?
0: ये चिंता हमारे किसानों को काफी लगी रहती है, लेकिन अगर नुकसान की बात करते हैं तो नुकसान कब होता है? जब हम पौधों को सही मात्रा में पोषण नहीं दे पाते, और वो पोषण कब नहीं दे पाते हैं? जब हम सही खाद का सही समय पे इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन हमारे जितने भी किसान भाई उनके पास पशु हैं
1: जी,
0: उन पशुओं से जो गोबर मिलता है उसको हम बायोगैस सलरी के कन्वर्ट कर ले, यानी कि बायोगैस प्लांट के माध्यम से उसका खाद बनाए, तो एक तो खाद की गुणवत्ता अच्छी होगी
1: जी,
0: दूसरा उसमें किसी प्रकार के खरपतवारों के बीज नहीं होंगे, और तीसरी बात है इस खाद को खड़ी फसल में
1: जी
0: पानी के साथ दिया जा सकता है। इनके जब आपको नाइट्रोजन के तौर पे यूरिया देते हैं तो उसकी जगह अगर आप इस खाद को जैविक खेती में देते हैं तो आपके पौधों को सही मात्रा में पोषण मिलेगा
1: जी।
0: और जब पोषण सही मात्रा में मिलेगा, किस्म अच्छी है, खेत अच्छा है, तो आपकी उत्पादन कम नहीं होगा बल्कि उत्पादन बढ़ेगा। लेकिन उत्पादन तभी बढ़ेगा जब आप सही मात्रा में सही समय पे सही खाद देंगे
1: जी।
0: और ये जो बायोगैस सलरी होती है इसमें खाली एक पोषक तत्व नहीं होता, खाली नाइट्रोजन, बल्कि हमारे पौधों को 16 से 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, और वो सभी के सभी पोषक तत्व इस खाद के अंदर संतुलित मात्रा में उपलब्ध रहते हैं। और जब पौधे को सभी के सभी पोषक तत्व मिलते हैं तो पौधे की बढ़वार भी अच्छी होती है, चाहे वो जड़ों की हो चाहे पत्तों की हो, और जब बढ़वार अच्छी होगी तो उत्पादन भी अच्छा आएगा। और क्योंकि किसी भी पोषक तत्वों की कमी नहीं है तो इस प्रकार की फसल में बीमारी और कीड़े का प्रकोप भी कम होता है। और एक और खास बात है, जब इस खाद का हम प्रयोग करते हैं बायोगैस सलरी का, तो ये हमारी मिट्टी के अंदर तीन तरह से प्रभावित करती है
1: जी।
0: एक तो मिट्टी की जैविक गुणवत्ता को बढ़ाती है, मिट्टी की फिजिकल यानी कि जो भौतिक गुणवत्ता है उसको भी बढ़ाती है, और साथ साथ में मिट्टी की जो रासायनिक गुणवत्ता है उसमें बढ़ाव करती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हम पानी का उपयोग करते हैं तो कम पानी में भी हम अधिक पैदावार ले पाएंगे, यानी कि अगर जैविक खेती करेंगे तो हमारे पास पानी की भी बचत होगी और हमारी मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो घटने की बजाय बढ़नी शुरू हो जाएगी और फसल का उत्पादन कम होने के बजाय अधिक होगा और साथ ही साथ जो उत्पाद की गुणवत्ता है वो भी बहुत अच्छी रहेगी। और इस तकनीक में एक और फायदा ये होता है बायोगैस में कि हमारे किसानों को घर में खाना बनाने के लिए बहुत ही स्वच्छ और अच्छी गैस मिल जाएगी, अच्छा खाद मिल जाएगा। इनके किसान की दो आवश्यकता, एक तो ऊर्जा की आवश्यकता, दूसरा खाद की आवश्यकता, उन दोनों की आपूर्ति ये करता है। और यह तकनीकी हमारे छोटे और मझोले किसानों के लिए बहुत ही उत्तम है क्योंकि छोटे और मझोले किसानों के पास में पशुओं की संख्या ज्यादा होती है और साथ साथ में उनके पास भूमि के जो क्षेत्रफल वो कम है और इस खेती में इस खाद का अगर प्रयोग,
1: छोटे किसान है उनके लिए ये काफी उपयोगी है। डॉक्टर,
0: मैं आपको बताना चाहूंगा कि लागत इस बात पर निर्भर करती है कि हम प्लांट किस आकार का लगाएंगे
1: जी,
0: और आकार इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे पास कितनी मात्रा में गोबर उपलब्ध है, यानी कि जो इनपुट अवेलेबल है
1: जी।
0: क्योंकि अगर हमारे पास पशुओं की संख्या ज्यादा है तो हमारे पास ज्यादा गोबर होगा तो हमें बड़ा प्लांट लगाना है, पशुओं की संख्या मध्यम है तो मध्यम प्लांट लगाना पड़ेगा और पशुओं की संख्या कम है तो छोटा प्लांट लगाना पड़ेगा। तो जो प्लांट का आकार है वो घन फुट या घन मीटर इनमें नापा जाता है
1: जी।
0: सबसे छोटा प्लांट जो किसान के लिए उपयोगी हो सकता है वो 35 घन फुट या 1 घन मीटर का होता है और इस प्लांट के लिए 25 किलो गोबर की आवश्यकता होती है। यानी कि अगर किसी किसान के पास दो पशु हैं तो वो इस प्रकार के प्लांट को लगा सकता है और इससे उसको जो खाद मिलेगा वो उसके 1.5 से 2 एकड़ के लिए पर्याप्त होगा। साथ साथ में जो गैस मिलेगी वो 5 आदमियों के परिवार के लिए खाना बनाने के लिए पर्याप्त रहेगी और जितना आपके पास गोबर है उसी के आधार पे प्लांट का हम साइज बढ़ाते जाएंगे। यानी कि 50 किलो गोबर है तो 2 घन मीटर का हो जाएगा, यानी कि 70 घन फुट का
1: जी।
0: और अगर आपके पास 75 किलो गोबर है तो 105 घन फुट या 3 घन मीटर का प्लांट हो जाएगा। तो इसी आधार पे हम ये गणना करते हैं कि हमारे पास इनपुट कितना अवेलेबल है, यानी कि गोबर कितना अवेलेबल है। और मैं एक और बात यहाँ बताना चाहूंगा कि इसके लिए जरूरी नहीं गोबर ही अवेलेबल हो आपके पास। अगर आपने पोल्ट्री फार्म खोल रखा है तो पोल्ट्री वेस्ट भी इसमें काम आ सकता है, पिगरी फार्म खोल रखा है उसका वेस्ट भी इसमें काम आ सकता है, आपने कोई प्रोसेसिंग प्लांट लगा रखा है जिसमें आप कोई भी जो हमारे अनाज या फलों का या सब्जियों का वो कर रहे हैं प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो उसका जो भी वेस्ट है वो भी काम आ सकता है। आपका अगर स्लॉटर हाउस है तो उसका वेस्ट भी इसमें काम आ सकता है। जो भी सड़ने गलने वाली चीजें हैं वो सभी हमारे बायोगैस प्लांट के लिए इनपुट है
1: जी, बिल्कुल।
0: हम जब भी बायोगैस प्लांट लगाते हैं तो बायोगैस प्लांट का जैसे हमारा खाना होता है या पशुओं का खाना होता है इसी प्रकार से प्लांट का भी खाना होता है। और प्लांट का खाना है जो भी गोबर है या बायोवेस्ट हमारे पास अवेलेबल है वो उसका खाना है
1: जी।
0: तो हमें जितना भी हमारा जिस आकार का प्लांट है उसी के आधार पे उसको रेगुलर फीडिंग करनी है, यानी कि लगातार खाना खिलाना है। क्योंकि इसमें बायोगैस प्लांट में भी 2 किस्म के प्लांट होते हैं, एक तो रेगुलर फीडिंग वाले होते हैं और एक ऐसा होता है कि एक बार आपने फीडिंग कर दिया तो जब तक वो पूरा खत्म ना हो जाए तो उससे आपको गैस भी मिलती ही रहेगी, उसके बाद उसको रिमूव करेंगे फिर दोबारा फीडिंग करेंगे
1: जी।
0: इस ऐसे प्लांट में सॉलिड फीडिंग ज्यादा होती है तो जहां पे हमने फसलों का अवशेष का प्रयोग करते हैं तो वहां इस किस्म के प्लांट होते हैं। लेकिन इस किस्म के प्लांट में आपको जो गैस की मात्रा मिलेगी वो लगातार बराबर नहीं मिलेगी, कभी कम मिलेगी कभी ज्यादा मिलेगी
1: जी।
0: दूसरा होता है रेगुलर फीडिंग वाले प्लांट, यानी कि जिसको रोज ही खाना चाहिए। जिन प्लांट को आप रेगुलर फीडिंग करते हैं और सही मात्रा में करते हैं तो उनसे आपको लगातार गैस मिलती है, बराबर मात्रा में मिलती है और लगातार आपको खाद भी मिलता है और बराबर मात्रा में मिलता है। और इसका जो खाद है वो बिल्कुल सड़के निकलता है तो इसके खाद के ऊपर किसी प्रकार के मक्खियां मच्छर नहीं बैठते हैं, उसमें किसी प्रकार की बदबू नहीं आती है। तो इसका खाद वही हम खाद अच्छा मानेंगे जिसमें बदबू ना हो और मच्छर मक्खी ना बैठे, यानी कि खाद पूर्णतः सड़ गया है। क्योंकि जब ये खाद हमारे खेत में जाएगा तो ये खेत के लिए ज्यादा लाभदायक होगा।
1: बिल्कुल।
0: अगर कई बार कुछ किसान गलती कर देते हैं कि छोटा प्लांट बना लिया उसमें फीडिंग ज्यादा कर रहे हैं तो जब फीडिंग ज्यादा करेंगे प्लांट का आकार छोटा है तो कच्चा खाद निकलेगा
1: जी, जी। किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए?
4: गोबर गैस बनाने के लिए अलग अलग विधियों का भी प्रयोग किया जाता है। कोई लोहे का जो ऊपर कैन आती है उसको रख के बनाते हैं, कोई पूरा सीमेंटेड होता है, और भी अलग अलग विधियों से बनाया जाता है। तो आज आइए जानते हैं, यहाँ पर लेते हैं एक्सपर्ट की राय कि कौन सा बायोगैस अच्छा होता है और कौन से बायोगैस विधि से हमें बनाना ज्यादा मुनाफे में हो सकता है।
0: एक बनते थे लोहे के ड्रम वाले, जिसको हम केवीआईसी मॉडल कहते हैं, और दूसरे बनते थे ईंट और सीमेंट के
1: जी।
0: वो जनता बायोगैस था, लेकिन अभी एक नया प्लांट या काफी दिनों से चल रहा है जिसको हम कहते हैं दीन बंधु मॉडल। यह भी ईंट का, सीमेंट का, कंक्रीट का बनता है और इस प्लांट का रखरखाव भी कम है, इसकी लागत भी कम है और साथ साथ में इससे किसान को ज्यादा लाभ मिलता है और किसान के लिए ज्यादा उपयोगी है। तो आजकल भारत सरकार या अधिकतर जो सरकारें हैं या जो एजेंसियां हैं वो दीन बंधु को प्लांट को ज्यादा प्रमोट कर रही हैं और ये ज्यादा उपयोगी भी है, क्योंकि सर्दी के मौसम में जो केवीआईसी मॉडल है उससे लगभग 25% गैस कम मिलती है, जबकि परिवारों को गैस की ज्यादा आवश्यकता होती है। लेकिन जो दीनबंधु प्लांट है इसमें गैस कम नहीं मिलती है, बराबर गैस मिलती रहती है और गैस में बहुत कम फर्क पड़ता है। और दूसरी जो बात खास ये है वो है कि दीनबंधु मॉडल में रखरखाव बहुत आसान है, बहुत साधारण है, बहुत सिंपल है और कम लागत आती है। तो किसान के हिसाब से जितने भी जो हमारे बाराबंकी के किसान हैं वो जो लगाना चाहते हैं तो उनको दीनबंधु लगाना चाहिए, और लगाना चाहते नहीं बल्कि सभी किसानों को लगाना चाहिए, क्योंकि आपका चित्र काफी फेमस है केले की खेती के लिए, आपका चित्र काफी फेमस है कुछ सब्जियों की खेती के लिए, आपके क्षेत्र में फूलों की खेती होती है और ये सभी खेती में इसका खाद बहुत ही उपयोगी हो सकता है और आपके लिए बहुत लाभप्रद हो सकता है।
4: जी हाँ बिल्कुल, आशा करते हैं कि किसान भाइयों को बहुत ही अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी कि हमें कौन सा प्लांट लगाना चाहिए। इसी के साथ किसान साथियों यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांडियाबिल 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आप रेडियो आपकी बातें।

0: સ્ટેશન રેડિયો ટાંટિયા ભીલ 90.8 FM. આપણો રેડિયો આપણી વાતે.
1: બ્રેકની બાદ એક વાર ફેર થા બહોત બહોત સ્વાગત કરીએ હે તમાર સબુનો રેડિયો ટાંટિયા ભીલ 90.8 FM ના એના ખેતીવાડી કાર્યક્રમમાં. કિસાન ભાઈઓ, આપું લગાતાર ખેતીવાડીથી જોડેલી ઘણી ખરી મહત્વપૂર્ણ વાતો ને લઈને આપું ચર્ચા કરી રહ્યા હૈ, તો એની ચર્ચાને આગળ બઢાવતા જઈને જાણીએ હજુ ખેતીવાડીથી જોડેલી મહત્વપૂર્ણ વાતોને.
2: બાયોગેસ પ્લાન્ટ હૈ યે એમએનઆર મિનિસ્ટ્રી કે અંદર આતા હૈ ઓર યે કેન્દ્ર સરકાર સે રાજ્ય સરકાર કે માધ્યમ સે સભી કિસાનો કો સબસિડી મિલતી હૈ. तो आप अपने जिले के जो खंड विकास अधिकारी हैं या जिला विकास अधिकारी हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं. उन्हीं के माध्यम से आपको सब्सिडी मिलेगी और सब्सिडी में बदलाव आता रहता है. तो अभी भी शायद सब्सिडी में कुछ बढ़ाव होने की संभावना है, तो इसका कुछ प्रोसेसिंग चल रहा है. तो आपको बिल्कुल सब्सिडी मिलेगी और ये आपकी सरकार के माध्यम से मिलेगी. जो अपने जिले के अधिकारी हैं उनके आप संपर्क में रहें और उनसे संपर्क करके आप सब्सिडी के बारे में ज्ञान ले सकते हैं. लेकिन सब्सिडी से ज्यादा जरूरी है प्लांट. इससे आपकी बहुत सारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है. आपका खर्चा बचता है, आपका पैसा बचता है, आपकी मिट्टी सुधरती है, आपके जो महिलाएं हैं उनको सुविधा कम होती है. बल्कि मैं तो कहूंगा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए इस प्लांट का बहुत ही ज्यादा महत्व है और खासकर ग्रामीण महिलाओं के लिए.
3: जी जी बिल्कुल. तो विपिन जी, मुझे उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और यहां पर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं. और ब्रेक पर जाने से पहले डॉक्टर रबास, आपने बताया था बायोगैस प्लांट के दीनबंधु मॉडल के बारे में. मैं चाहूंगी कि थोड़े विस्तार से इस मॉडल के बारे में हमें बताएं.
2: जो दीनबंधु मॉडल है ये बहुत ही अच्छा मॉडल है, बहुत सिंपल है. एक तो इसको बनाने में अच्छी सुविधा है और गांव में इसका रखरखाव में फायदा है और साथ साथ में इसमें लागत भी कम आती है और बाद की मेंटेनेंस ना के बराबर है और इसकी लाइफ भी काफी लंबी होती है.
3: जी जी.
2: इसको बनाने के लिए केवल आपको कुशल कारीगर चाहिए और अच्छे किस्म का आपका बिल्डिंग मटेरियल आपको इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसको एयरटाइट बनाना होता है. अगर एयरटाइट डोम नहीं बना तो आपका प्लांट फेल हो सकता है. इसलिए जो कारीगर बनाने वाला है उसका अच्छा होना बहुत जरूरी है. साथ साथ में जो भी आप सामग्री इस्तेमाल करेंगे, खासकर सीमेंट है, रोड़ी है, बदरपुर है, तो उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होनी चाहिए. और इसको सही जो दीनबंधु मॉडल है ये काफी उपयोगी है और खासकर जितने भी छोटे और मझोले किसान हैं उनके लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि घर में ये नीचे बन जाता है अंडरग्राउंड और उसके ऊपर ये कोई भी काम कर सकते हैं. आपको अलग से जगह की आवश्यकता नहीं होती है, खाद आपको लगातार मिलता रहता है और इससे इसका रखरखाव भी आसान है और बनाना भी आसान है, लागत भी कम है और सरकार इसको काफी प्रोत्साहित कर रही है. और इस समय काफी कारीगर, इसके निपुण कारीगर अवेलेबल है जो इस प्लांट को बना सकते हैं और किसान को बाहर के इनपुट पे कम निर्भर करना पड़ता है. तो ये एक प्लांट, अच्छी किस्म का प्लांट हो सकता है जिसको आप बनाएं, उसका लाभ उठाएं.
3: बिल्कुल. जो बायोगैस प्लांट है वो अपनी क्षमता के अनुरूप काम करे, इसके लिए किन किन बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, किस तरह की सावधानियां किसानों को बरतनी चाहिए?
2: बायोगैस प्लांट को अच्छी तरह से सुचारू रूप से चलाने के लिए सबसे जरूरी है कि जिस आकार का आपने प्लांट बनाया है
3: जी,
2: उसको उसका खाना रोज मिलना चाहिए. और जब खाना रोज मिलेगा तो वो आपको गैस भी लगातार देगा, खाद भी लगातार देगा और अच्छी देगा. दूसरी बात आती है, जब हम गोबर डालते हैं तो गोबर को पानी में अच्छी तरह से घोल के डालना है, यानी कि अच्छा. एक भाग गोबर का और एक भाग पानी का अगर करेंगे तो ज्यादा अच्छा है.
3: अच्छा.
2: और जिन किसानों के फर्श पक्के हैं, जो पशुओं का पेशाब इकट्ठा कर सकते हैं या जो पशुओं के नहाने धोने का जो वेस्ट है वो इकट्ठा कर सकते हैं, तो आप उसका अगर इस्तेमाल करते हैं तो गैस का अमाउंट भी ज्यादा होगा, खाद की गुणवत्ता भी अच्छी होगी और आपको अलग से पानी लेने की जरूरत नहीं होगी.
3: जी.
2: दूसरी बात आती है, जो प्लांट का बनाने की जगह है वो ऐसी होनी चाहिए जो किचन के पास भी हो, साथ साथ में हमारी जो पशुशाला उसके भी नजदीक हो. वो ऐसी खुली जगह हो जहाँ पे सर्दियों में धूप अवश्य आती हो और प्लांट के ऊपर धूप रहती हो
3: जी.
2: तो ये चीजें ज्यादा लाभदायक हैं. और साथ साथ में आपको फीडिंग, खासकर सर्दी के मौसम में आप इसमें फीडिंग दो तीन बार कर सकते हैं एक बार की बजाय, क्योंकि अगर आप एक बार करते हैं तो जो गोबर होता है, जो वो कोई भी पशु गोबर करता है तो उसका जो तापमान है वो लगभग 35 डिग्री के आसपास होता है, उससे ऊपर होता है. लेकिन क्योंकि सर्दी का मौसम है, बाहर का तापमान काफी कम है, तो ये ठंडा होना शुरू हो जाता है और जितना ही ठंडा हो जाएगा उतना ही प्लांट की एफिशिएंसी कम होती जाएगी.
3: अच्छा.
2: अगर आप उसको दो तीन बार यूज करेंगे, सुबह का सुबह यूज कर लिया, शाम का शाम को यूज कर लिया, दोपहर को यूज कर लिया, तो जो गोबर हमारे प्लांट के अंदर जाएगा उसका तापमान सही होगा, तो आपका जो हमारे जो गैस बनाने की प्रक्रिया है वो ज्यादा सुचारू रूप चलती रहेगी, ठीक चलती रहेगी, आपको गैस बराबर मात्रा में मिलती रहेगी, आपकी ये शिकायत नहीं होगी कि सर्दी के मौसम में गैस कम बन रही है
3: जी।
2: दूसरी बात ये कि जब भी आप प्लांट बनाते हैं, प्लांट बनाने के बाद जो डोम होता है जिसको हम कहते हैं किण्वन क्रिया होती है, उस डोम को मिट्टी में जरूर दबाना है।
3: अच्छा,
2: अगर मिट्टी में नहीं दबाएंगे क्योंकि वो सीमेंट और कंक्रीट का बना हुआ है तो तापमान के उतार चढ़ाव से उसके अंदर क्रैकिंग आ सकती है और जब क्रैकिंग आ जाती है तो उससे गैस लीक कर जाती है और गैस लीक कर जाती है आपका प्लांट फेल हो सकता है। लेकिन उसके ऊपर अगर चार उंगल भी मिट्टी चढ़ा देंगे तो ये जो मिट्टी है तापमान के उतार चढ़ाव को रोकेगी और उसमें किसी प्रकार की क्रैकिंग नहीं होगी तो आपकी जो प्लांट की लाइफ है वो लंबी हो जाएगी और अच्छी हो जाएगी। एक और बात मैं अपने किसान भाइयों को बताना चाहूंगा, खासकर कृषक महिलाओं को,
3: जी
2: वो गैस का प्रयोग करते हैं, अगर गैस बिल्कुल सही जा रही है तो उसकी लो बिल्कुल नीली होगी।
3: अच्छा।
2: लेकिन क्योंकि प्लांट में जो गैस के साथ कई बार जो पानी का भाप बन के जाता है और वो भाप आगे कन्वर्ट हो पानी में हो जाती है तो आपकी पाइपलाइन जो गैस की पाइपलाइन है उसमें पानी इकट्ठा हो सकता है।
3: अच्छा।
2: अगर पानी इकट्ठा हो जाएगा तो पानी इकट्ठा होने से जो आपकी गैस की लो है वो पीली हो जाएगी और धुआं आना शुरू हो जाएगा, यानी कि आपके बर्तन काले होने शुरू हो जाएंगे।
3: अच्छा।
2: तो आपको जो प्लांट की जो फिटिंग करे खासकर गैस की पाइपलाइन की, उसमें जहां वो सबसे नीची जगह है वहां पे एक वाटर रिमूवर आता छोटा सा, वो 20 या 50 रुपए का होता है, अगर वो आप लगा देंगे तो आपको केवल एक बटन दबाना है, उसके दबाने से जो भी पानी को निकल जाएगा तो ये समस्या आपके में नहीं आएगी
3: जी। बिल्कुल, इससे से जुड़ा एक सवाल है डॉक्टर डवास, कई बार लोग ये शिकायत करते हैं कि बायोगैस प्लांट से मिलने वाले गैस से जब हम खाना बनाते हैं तो उसमें बदबू आती है, जबकि आपने बताया कि बायोगैस प्लांट अगर सही तरीके से बनाया गया हो तो बदबू नहीं आती है, तो क्या वजह हो सकती है इसकी?
2: मैं आपको ये बता देना चाहूंगा कि ये हमारे किसानों की जो सोच है उसमें मैं हो सकता हूँ गलत सोच रहे हैं
3: जी सर।
2: गैस में किसी प्रकार की बदबू नहीं आती है, केवल अगर हमने अपने बायोगैस प्लांट से लैट्रिन को लिंक किया हुआ है।
3: अच्छा।
2: या हम कहीं से वो जाते डाल रहे हैं तो कई बार थोड़ी बहुत मात्रा में H2S गैस बनती है जिसको हाइड्रोजन सल्फाइड कहते हैं, अगर वो गैस बनती है तो थोड़ी सी बदबू आ सकती है और उसका भी प्रबंध हो सकता है। अगर हमारे पास हमने ऐसा यूज कर रहे हैं तो उसमें छोटा सा एक सिस्टम लगाना पड़ेगा, उससे वो गैस भी रिमूव, जो खराब गैस वो रिमूव हो सकती है, अदरवाइज इस गैस में किसी प्रकार की बदबू नहीं होती और ना ही खाद में बदबू होती है। और गैस पे जो खाना बनाते हैं वो चूल्हे जैसा बनता है। गांव में एक भावना आती है कि जो ज्वार की रोटी है, बाजरे की रोटी है या रागी की रोटी है, मोटे अनाज वाली रोटियां, उनको बनाने के लिए चूल्हा जरूरी है
3: जी।
2: लेकिन इसकी गैस पे चूल्हे जैसी रोटियां बन सकती हैं क्योंकि इसका जो चूल्हा है वो LPG के चूल्हे से काफी डिफरेंट है।
3: अच्छा।
2: साथ साथ में उसकी लो भी अच्छी आती है और इसमें जो आंच है वो भी ज्यादा होती है, तो इससे आप वो शिकायत आपको रहेगी नहीं कि रोटी अच्छी नहीं बनी, रोटी अच्छी बनेगी और इसका चूल्हा भी अच्छा होता है। और इसके प्लांट से अगर आपने बहुत ज्यादा पशु रखे हैं तो गैस से आप प्रोसेसिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गैस से जो आपका दूध है उसका मावा बना सकते हैं, खोआ बना सकते हैं, ये किस्म से जो घरेलू कुटीर उद्योग में भी काम आ सकता है
3: जी। बिल्कुल,
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
2: और गोबर के अनुसार आप इस प्लांट बनाएंगे ज्यादा बेटर है, अगर आपके पास गोबर की मात्रा ज्यादा है तो मैं आपको ये कहूंगा कम से कम 20 घन मीटर का प्लांट बनाएं, जिसके लिए आपको 5 क्विंटल गोबर की हर रोज आवश्यकता होगी। इससे आप इंजन भी चला सकते हैं, बिजली भी बना सकते हैं और इसका जो खाद है वो लगभग 30 से 50 एकड़ के लिए पर्याप्त होगा। तो इस किस्म का प्लांट बनाएंगे तो आपको ज्यादा लाभ होगा, ज्यादा फायदा रहेगा। अगर प्लांट के आकार की बात करें तो वो बना सकते हैं, और इस प्लांट के किस्म के जो प्लांट बनाएंगे उसकी जो लागत आएगी वो लगभग 2.5 से 3 लाख के आसपास आएगी, क्योंकि आप 20 क्यूबिक मीटर का प्लांट बना रहे हैं और इससे गैस जो मिलेगी वो लगभग 100 आदमियों का खाना हर रोज उस गैस पे बन सकता है। तो 100 आदमियों का खाने का मतलब ये हो सकता है, अगर आपके परिवार में सदस्य कम है तो 5 आदमियों का खाना, जो बाकी जो गैस है उससे आप बिजली भी बना सकते हैं जनरेटर के थ्रू, उस गैस से आप कोई प्रोसेसिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं गैस का
3: जी।
2: और दूसरा भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जो मुख्य उत्पाद है, गैस मुख्य उत्पाद नहीं है, गैस तो सह उत्पाद है, मुख्य उत्पाद खाद है
3: जी जी,
2: जो आपकी जैविक खेती के लिए बहुत ही लाभदायक हो सकता है और इसका अगर प्रयोग करेंगे तो आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। और तो इसका स्कोप बहुत ज्यादा है क्योंकि वहाँ पे छोटे और मझोले किसान काफी हैं और वहाँ पे हमारे किसानों को इस किस्म की जरूरत भी है, तो उन किसानों को जरूर अपनाना।
1: जी हाँ बिल्कुल, बायोगैस से आपको फायदा ही होगा, इससे लाभ ही लाभ मिलेगा आपको। और साथ ही कहीं कहीं कुछ किसानों को हमने देखा है जो बायोगैस का इस्तेमाल खाना पकाने में करते ही हैं, साथ में जो जो खाद है, जो बायोगैस बनने के बाद जो खाद बाहर निकलती है वहां पर केचुए खुद ही आ जाते हैं, वहां आपको केचुए डालने की तक जरूरत नहीं होती है। और वहां पर अगर आप वहां का जो अवशेष निकलता जाता है, जैसे हमारा गैस बन गया, गैस बनने के बाद जो खाद निकलती जाती है, तो उसमें अपने आप वहां पे केचुए आ जाते हैं और केचुए खुद ही आपको जो अपना केचुआ खाद है वो उसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मिल सकता है। खाद की जो गर्मी निकालने के लिए भी वो बहुत ही सहायक है। उसके बाद जो गैस है उसके हम खाना बना उसके साथ हम खाना बना सकते हैं और जो उसका अवशेष बच रहा है, जो ठंडी हुई घास, उसको केचुए बहुत ही चाव से खाते हैं। और जो खाद जो बनने की जो प्रक्रिया है वो भी कई गुना तक बढ़ जाती है। चर्चाओं का ये सिलसिला जारी रहेगा, पर यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांडिया भील 90.8 FM के साथ।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आप रेडियो, आपकी बातें।

0: सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: ब्रेक ने बाद एक बार फिर था बहुत बहुत स्वागत करिए हैं तमार सबुनो रेडियो टांडिया भील 90.8 FM ना इना खेतीवाड़ी कार्यक्रम में। किसान भाइयों आपू लगातार खेतीवाड़ी थी जोड़ेली घनी खरी महत्वपूर्ण बातों ने लीने आपू चर्चा करी रहा है, तो इन चर्चा ने आगे बढ़ाता जाइए जानिए हजू खेतीवाड़ी थी जोड़ेली महत्वपूर्ण बातों ने।
2: खेती किसान कर रहे हैं उनके खेतों के फसल के पोषक तत्व प्रबंधन में इसका क्या महत्व है?
3: आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि जितने भी हमारे किसान भाई हैं वो आजकल तीन ही खादों को ज्यादा जानते हैं, डीएपी, यूरिया और कुछ लोग पोटास, और कुछ बहुत ही कम किसान ऐसे जिंक या दूसरी चीजों को जानते हैं। और क्योंकि सघन खेती की वजह से हमारी जो मिट्टी है उनमें इन पोषक तत्वों की काफी कमी हो गई है, और इनके अलावा जो सूक्ष्म पोषक तत्व उनकी भी कमी हो गई है। अगर हम अच्छी फसल लेना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम संतुलित मात्रा में खादों का प्रयोग करें। और जब संतुलित मात्रा की बात आती है तो किसान को हम बताते हैं आपको ये करना है ये करना है, तो उसको किसान की समझ में नहीं आता कितना करें। तो किसान को जो दिखाई देता है तो यूरिया का लाभ सबसे ज्यादा दिखाई देता है, इसलिए साधारणतर किसान यूरिया ज्यादा प्रयोग करते हैं, और जिसकी वजह से फसलों में बीमारी और कीट का प्रकोप भी ज्यादा हो जाता है। लेकिन जो बायोगैस सलरी है इसके अंदर पौधे को 16 से 17 जो पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है वो सभी के सभी पोषक तत्व संतुलित मात्रा में उपलब्ध हैं। तो किसान को कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है
2: जी, जी।
3: उसको केवल ये देखना है कि बेसल में यानी कि बुआई से पहले कितनी देनी है,
2: ठीक है,
3: और बुआई के बाद तो कुछ कंपनियां 1 या 2 घन मीटर के छोटे प्लांट जो हैं वो एचटीबी के भी बना रही हैं, यानी कि आपको बने बनाए मिल जाएंगे। तो उसके लिए आप अपने जो अपना जिला है अधिकारी उनसे संपर्क करें, वो आपको गाइड कर देंगे कि आपके जिले में कौन कौन सी कंपनी के प्लांट उपलब्ध हैं, तो आप उनसे ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पशुओं की संख्या ज्यादा है, बड़ा प्लांट बनाना चाहते हैं, तो आप प्लांट स्वयं बनवा सकते हैं, उसमें भी आप अपने जिले के अधिकारियों के संपर्क कर सकते हैं, या अथवा किसी अन्य तकनीकी आदमी से संपर्क करके आप अपना प्लांट बनवा सकते हैं। लेकिन जो प्लांट बनवाएंगे उसकी लाइफ भी ज्यादा है, लागत कम होगी, और वो आपकी आवश्यकता के अनुरूप बनेगा
2: जी, जी।
3: तो आप उसको ठीक से हैंडल भी कर पाएंगे, और जब बनाएंगे तो आपको जो बनाने वाला है वो आपको सारी बातें बताएगा कि इस प्लांट में कब और कितनी मात्रा में गोबर डालना है, कैसे इसका प्रबंध करना है, तो वो आप जानकारी आपको लगातार मिलती रहेगी। अगर आज आप एचडीपी का भी प्लांट लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं, तो उसके लिए जो कंपनी है वो आपको पूरा समझाएगी बताएगी, तो वहां से ले सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा, क्योंकि इसके जो प्लांट बनाने वाली कंपनी है वो सभी निजी कंपनियां हैं, तो किसी एक कंपनी का नाम लेना यहाँ पे उचित नहीं रहेगा। तो आप अपने जिला अधिकारियों से या अपने उनसे जो कृषि अधिकारी हैं या जो कृषि विज्ञान केंद्र है उनसे संपर्क करके उनसे लाभ उठा सकते। तो मैं आप संजय जी को बताना चाहूंगा कि आपके अपने जिले में कृषि विज्ञान केंद्र है, क्योंकि आज हमारे जितने भी जिले हैं सभी में 1 या 2 कृषि विज्ञान केंद्र उपलब्ध है। तो जो भी कृषि विज्ञान केंद्र आपके नजदीक संपर्क में हो, नजदीक से नजदीक हो, आप उससे संपर्क कर सकते हैं, या आप अपने जिला के कृषि अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं, या जिला के विकास विभाग से भी संपर्क कर सकते हैं। तो इन सब जगह से आपको जानकारी मिल जाएगी। और फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो भारतीय कृषि अनुसंधान पूसा से भी आप संपर्क कर सकते हैं, तो वहां से भी आपको जानकारी मिल सकती है। तो आप कहीं से भी जानकारी लें और आप प्लांट अवश्य लगाएं, क्योंकि प्लांट आपके लिए काफी हितकर होगा, आपके लाभदायक होगा, और ये एक ऐसी तकनीक है जो वातावरण हितैषी तकनीकी है, यानी कि एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी है, जिसका हमें बढ़ावा देना बहुत ही जरूरी है। और आज सुन रहे हैं कि कार्बन क्रेडिट, तो कार्बन क्रेडिट कमाने में भी इस तकनीक का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है, अगर हम इसका सही लाभ उठाना चाहें तो।
0: सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
4: तो बांस में कर सकते हैं, उसमें अलग अलग प्रजातियों का चुनाव करना पड़ता है। अगर उनका इलाका जो है 1000 मीटर की ऊपर की ऊंचाई का है, तो उसके लिए पतले टाइप की जो बांस होती है वो होता है। और एक बांस अभी जो होता है वो थोड़े से मंडी में नीचे इलाके में 1000 या 1200 मीटर की ऊंचाई पे, वहां पे मगर के नाम से प्रचलित बांस है, मोटा बांस है
2: जी।
4: और हो जाता है वो बर्फ भी सह लेने की क्षमता होती है, बहुत ही उम्दा किस्म का बांस है। साइंटिफिक नेम डेंडोकलेमस सोमदेवाई बोलती है। हाल के दिनों में एक भूटान बांस के नाम से प्रसिद्ध है, डेंड्रोकैलामस सिक्किमियेंसिस, जो बहुत ही अच्छा बांस है फर्नीचर बनाने के लिए। वहां दो तीन मोटे बांस की और एक बैम्बूसा न्यूकल्स, तीन जातियों की खेती हो सकती है।
2: बिल्कुल डॉक्टर ठाकुर, आपसे जानना चाहेंगे कि बांस की अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए किसानों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
4: बांस की अच्छी पैदावार करने के लिए किसानों को सबसे पहले ध्यान ये रखना चाहिए कि आप सबसे सही समय पे इसको लगाएं। बरसात का जो मौसम है, बांस लगाने का उपयुक्त समय होता है, और सबसे अच्छे पौधों को चुनाव करें, क्योंकि बांस में पहचानना बहुत ही मुश्किल बात है। अगर आप छोटी सीडलिंग देंगे तो इवन हमारे जैसे वैज्ञानिक की धोखा खा जाते हैं। तो हमेशा ही उचित और बढ़िया जगह से, जो रिलायबल जगह होती है, या किसी वैज्ञानिक से संपर्क करके ही आप बांस का पौधा खरीदे या बांस के पौधे की बात जानकारी। एफआरआई में ये पौधा बांस के बहुत सारी 16 से ज्यादा प्रजाति उपलब्ध है और किसानों को उपलब्ध कराए जाते हैं। तो एक तो पहले प्रजाति का चुनाव है, दूसरा कहते हैं गड्ढा इसका 2x2x2 फीट, उससे कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि बांस जो है सरफेस फीडर ही होता है। इसकी जड़ बहुत गहरी नहीं जाती लेकिन फैलती है, तो अगर शुरू में इसको बहुत अच्छा मिले तो तीसरे साल से ही बांस बहुत ही अच्छी मोटे किस्म का बांस निकलना शुरू हो जाता है, जिसको आप चौथे साल के एंड में या पांचवें साल के एंड में काट सकते अलग अलग उपयोग के लिए।
2: जी बिल्कुल डॉक्टर ठाकुर, इसके साथ ही हमें ये बताएं कि जो बांस है उनके अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए पोषक तत्वों का प्रबंधन किस तरह से करना चाहिए, रोग व कीट का खतरा जो है वो कितना हो सकता है बांस के खेतों में?
4: जी हाँ, पोषक तत्वों का प्रबंधन बहुत अच्छी तरह से इसमें जरूरी है। अगर कोई जैविक माध्यम से और जो हम नॉर्मल किसान रासायनिक खाद के साथ करते हैं, दोनों ही बताते हैं। बांस के लिए हम सबसे पहले कहते हैं कि गड्ढा एकदम समय पे बना लें, गर्मियों में बना लें तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो बरसात में बना लें। साइज वही 2x2 फीट के गड्ढा बनाएं, और हर गड्ढे में आधा बाल्टी गोबर, गोबर मतलब कंपोस्ट की खाद डालें, और 100 ग्राम खली डालें, और 25 ग्राम यूरिया, 100 ग्राम डीएपी, अगर डीएपी नहीं है सिंगल सुपर फास्फेट है तो भी लगभग 120 ग्राम के आसपास डालें, और 125 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास डालें। बांस को पोटास की जरूरत बहुत ज्यादा होती है, ये पहले साल के लगाने के समय में ही डालें। फिर अगले साल के जो मौसम आएगा आपका, जब बारिशें होती हैं थोड़ी सी फरवरी में, फरवरी वाले में, तो फिर बांस में एक निराई गुराई करके उसी उसमें, और उसमें आप कम से कम किलो भर जो हम केचुआ खाद बोलते हैं, और 100 ग्राम के आसपास खली, और 25 ग्राम यूरिया, ये तीन को मिक्स करके उसके चारों तरफ डाल दें। फिर यही चीज अगले बरसात में जो है, यानी हम 25 ग्राम यूरिया बोलते हैं बांस में खाद हम नाइट्रोजन कम डालते हैं, और आधा बाल्टी जो कंपोस्ट खाद है, और 100 ग्राम खली, और 100 ग्राम डीएपी या 120 ग्राम एसएसपी, और 125 से लेके 150 ग्राम तक म्यूरेट ऑफ पोटास डालें। एक्चुअली बहता हुआ जो नाला होता है, बांस में पानी रुकना नहीं चाहिए, पर बहता हुआ पानी बांस के लिए बहुत ही अच्छा होता है। वैरायटी आपको हमने देखा है 6-7 वैरायटी बहुत अच्छा कर रहा है। आप अभी लगाइए बैम्बूसा टुल्डा और बैम्बूसा पॉलीमार्फा, पंजाब में इसका, क्योंकि ये फर्नीचर के लिए और स्ट्रक्चर के लिए बहुत अच्छा है। कुछ मात्रा में बैम्बूसा बालखोआ लगाएं, हम अभी पंजाब में 3-4 किसानों को लगवा रहे हैं और बहुत सक्सेसफुल, बहुत अच्छा ग्रोथ उसका आ रहा है। तो आप तीन वैरायटी जो हमारे एफआरआई में अवेलेबल है और भरोसेमंद भी है, मतलब हमने इस अच्छे से सेलेक्ट करके इसकी अच्छी नर्सरी जी। बांस की, बांस में आपको एक समस्या बताता हूँ कि बांस आपको पानी बहुत चाहिए, लेकिन 15 दिन से ज्यादा अगर पानी रुकता है तो बांस का ग्रोथ कम हो जाता है, क्योंकि बांस की जो जड़ें हैं वो जमीन के बहुत गहरी नहीं जाती। तो उसके क्रम में हम ये कहते हैं कि जहां जहां जल भराव है उसके मेड़ पे, मतलब जो बांध जैसा है वो लगाएं, या फिर कई जगह हम लोग बोलते हैं कि जेसीबी से बांध बना दें, जिससे कि बांस की कुछ जड़ें ऊपर की तरफ हो और वो सांस ले सके। तो अगर अगर वो 2 से 3 महीने पानी वहां रुकता है तब हम उसको कहते हैं कि वहां बांस लगा, मरेगा तो नहीं लेकिन उसके उत्पादन में बहुत कमी है।
2: जी बिल्कुल। इसके साथ ही डॉक्टर ठाकुर, बताएं हमें कि रोग और कीट का प्रकोप कैसा हो सकता है बांस के खेतों में, जिसके लिए किसानों को सचेत रहना चाहिए?
4: जी सबसे अच्छी बात यह है कि आप अगर बांस के पत्तों को देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत होते हैं। बांस सिलिका से भरा होता है और इस सिलिका से भरे होने के कारण इसके प्रमुख रूप से बहुत ही कम जिंदा बांस में बहुत ही कम कीट और बहुत ही कम रोग आते हैं।
2: जी
4: जो भी इसमें रोग आता है वो सेकेंडरी होता है, मतलब कोई उसमें डैमेज हो गया तो वो बाद में आता है। तो अगर कोई प्रचलित अभी हमें बहुत ज्यादा समस्या नहीं है लेकिन हाँ जब खेती बाड़ी में इसका प्रचलन बढ़ेगा तो कुछ नए तरह के रोग आ सकते हैं। नॉर्मली हम दो चीजों का ध्यान रखने के लिए बोलते हैं, चूंकि आपने कहा था तो हम जब शुरुआत में लगाने के लिए बोलते हैं तो बोलते हैं कवकनाशी कोई ना कोई लगा दे। हम सबसे जो हमारी प्रेफरेंस है वो है कार्बेंडाजिम, कार्बेंडाजिम पेवेस्टीन या बहुत सारे नामों से मार्केट में आता है। इसको हम लोग कहते हैं कि जब हम 2 ग्राम प्रति इसको तो चूंकि पाउडर फॉर्म में अगर होता है, अगर लिक्विड फॉर्म में होता है तो 2 ml प्रति लीटर के दर से करीब 5 लीटर का बना के यानी 10 ml प्रति लीटर का बना के हम एक गड्ढे में डालते हैं और ये पहले साल में बस
2: जी,
4: और
2: जी,
4: दूसरा इसमें होता है दीमक का प्रकोप।
2: अच्छा।
4: क्योंकि बांस ये वुडी है, टिम्बर है, उसमें लकड़ी होती है तो दीमक का हो सकता है। तो जो भी दीमक के लिए हमारे साधारण प्रतिरोध इस्तेमाल किया जाता है
2: तो उसका जी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर ठाकुर, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हमें दी है बांस की खेती के बारे में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
2: आते हैं और चलते चलते बहुत ही संक्षेप में डॉक्टर टबास आपसे जानना चाहेंगे बायोगैस प्लांट के स्लरी के बारे में, अगर आप देना चाहें।
3: मैं अपने सभी किसान भाई को बताना चाहूंगा कि जो बायोगैस स्लरी 2 समय इस्तेमाल किया जा सकता है। एक तो फसल बोने से पहले जिसको हम बेसल कहेंगे, तो जितनी भी आपको स्लरी प्रयोग करनी है उसका लगभग आधा भाग बेसल में आप प्रयोग कर लेंगे, यानी कि जो पलेवा करेंगे उसके अंदर दे देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और उसके बाद जो भी स्लरी देनी है वो आपको प्लांट की ग्रोथ के आधार पर देनी है, यानी कि प्लांट जो पौधे का अगर 120 दिन की फसल है तो पहले 60 दिन तक की फसल देनी है, खाद देना है, 60 दिन के बाद खाद नहीं देना है। और यही टाइम होता है जिसमें पौधे को खाद की ज्यादा आवश्यकता होती है। तो जैसे गेहूं है, गेहूं में पहली 3 सिंचाई पे आप इसका खाद दे सकते हैं। धान में लगभग 50-60 दिन की जब तक फसल होती है जब तक इस खाद को पानी के माध्यम से दे सकते हैं। लेकिन जो बड़ी मात्रा है वो बोने से पहले देनी है, जिससे कि जैसे हम फसल लगाएं तो उसको सही मात्रा में पोषक तत्व मिल जाए। और जब इसका प्रयोग करते हैं तो हमारे फसल का जमाव भी अच्छा होता है और साथ साथ में उसका दूसरा लाभ ये होता है कि पौधा शुरू में जब स्वस्थ होगा तो उसमें किसी प्रकार की बीमारी और कीट का प्रकोप नहीं होगा, प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी।
1: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांटिया भील रोज हांजे 6 થી 8 વાગે આપણી સમસ્યા અને આપણો સમાધાન આપુ રોજ કરું વાતે ખેતીના બારામાં અને કમાઈના બારામાં એત્રે હમળતા રહેજો ટાંટિયા ભીલનો રેડિયો સ્ટેશન 90.8 FM।
5: किसान भाइयों आप ये लगातार खेतीवाड़ी ना इना कार्यक्रम में खेतीवाड़ी थी जोड़ेली महत्वपूर्ण जानकारियों ने जानियो है, आप ये जानियो है कि कम जो जैविक खेती है और गोबर गैस से अपना गोबर गैस अपन की कम बना भी सकिए और इनमें कई ना प्रकार ना गोबर गैस है और यह की कम तरीके थी अपनी हरू फायदेमंद हो सके। केम के किसान भाई आप जानिए है कि लकड़ी हमने मलवी थोड़ी सी मुश्किल है अने अलग अलग प्रकार ना जो बायोगैस है इनमें आप कम से कम लागत में अधिक मुनाफो ली सकी। तो किसान भाइयों कहीं ना कहीं

0: को कवर करने का लक्ष्य रखा गया है जो डेयरी सहकारी समितियों के सदस्य हैं और अलग अलग दुग्ध संघों से जुड़े हैं और जिनके पास केसीसी नहीं है। जिन किसानों के पास भू स्वामित्व के आधार पर पहले से ही केसीसी है वो केसीसी ऋण की सीमा को बढ़ा सकते हैं। हालांकि ब्याज दरों के मामले में वित्तीय सहायता सिर्फ 3 लाख रुपए की सीमा तक ही उपलब्ध होगी। वैसे तो कोलेट्रल के बिना केसीसी ऋण की सामान्य सीमा 1,60,000 रुपए है, लेकिन उत्पादकों और प्रसंस्करण इकाइयों के बीच अगर बिना किसी बिचौलिए के गठजोड़ हुआ है तो ये सीमा 3 लाख रुपए तक जा सकती है। शर्त यही है किसानों का दूध सीधे तौर पर दुग्ध संघ खरीद रहे हों। इससे दुग्ध संघों से जुड़े डेयरी किसानों के लिए ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित होगी और बैंकों के पास भी ऋण वापसी का आश्वासन होगा। 1.5 करोड़ डेयरी किसानों को केसीसी प्रदान करने का विशेष अभियान आत्मनिर्भर भारत पैकेज का हिस्सा है। वित्त मंत्री ने 15 मई 2020 को केसीसी योजना के तहत 2.5 करोड़ नए किसानों को शामिल करने का ऐलान किया था। ये कदम अर्थव्यवस्था की हालिया मंदी से पीड़ित किसानों के हाथों में 5 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त नकदी प्रदान करेगा। पिछले 5 साल के दौरान डेयरी क्षेत्र 6% से अधिक CAGR के साथ अर्थव्यवस्था के सबसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में से एक रहा है। दूसरे व्यवसायों की तरह ही डेयरी किसानों को भी अपना कारोबार चलाने के लिए पूंजी की जरूरत होती है। ऐसे में अल्पकालिक ऋण से डेयरी क्षेत्र की उत्पादकता में जबरदस्त बढ़ोतरी हो सकती है।
1: तो ये रिपोर्ट आपने देखी और जाना किस वजह से जो पशुपालन क्षेत्र है वो इतना महत्वपूर्ण है हमारे लिए और इससे तमाम जुड़े जो हमारे किसान हैं पशुपालक हैं उनके लिए क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ सबसे पहले डॉक्टर आशीष आपके पास मैं आना चाहूंगा, जो हमारे डेयरी के किसान हैं उनके लिए जो केसीसी जारी किया गया है, क्या ये जमीन मालिक किसानों के लिए जारी जो केसीसी होता है उससे किस तरह कुछ अलग है ये?
2: देखिए, जो किसान क्रेडिट कार्ड है वो एक योजना 2006 से चल रही है जिससे किसानों को आसान प्रीमियम दर पर लोन ले सकते हैं। 3 लाख रुपए तक लोन लेने पे उनको केवल 4% की ब्याज दर से लोन मिल जाता है। और जो हमारे पशुपालक हैं और मत्स्य पालक हैं उनको पहली बार जोड़ा गया है इस योजना के साथ पिछले साल 2019 और उसको केसीसी देने की प्रक्रिया हमने प्रक्रिया आरंभ की है
1: जी।
2: और एक बड़ा अभियान सैचुरेशन ड्राइव आ रहे हैं केसीसी अभियान में सब किसानों को कार्ड देने के लिए, और उसमें पशुपालक जो हमारे मत्स्य पालक उनको जो कार्ड देने का अभियान में एक बहुत बड़ा फोकस है। एक बहुत बड़ा जो तबका है हमारे ऐसे बहनों भाइयों का जो इस योजना में पहली बार जुड़ा है उनको कार्ड देने की एक योजना हम चला रहे हैं और करते हैं कि हम सबसे ज्यादा से ज्यादा उम्मीद तो करते हैं सारे किसान इससे जुड़े ही, हमारा लक्ष्य यही है
1: जी। बिल्कुल, एक ऐसा लक्ष्य जिसके तहत तमाम जो किसान हैं उनको लाभ पहुंच सके। अजीत जी, आपसे भी हम जानना चाहेंगे केसीसी से जो ऋण पाने की प्रक्रिया है क्या वो प्रक्रिया और कैसे इसकी जो अदायगी का है क्या कुछ प्रावधान इसमें रखे गए हैं?
3: अब मैं बताऊं, पहले जैसे दूध दारू पशु को पालने वाला किसानों को हम इसमें कवर करने का कोशिश किया है
1: जी।
3: ये अभी एक स्पेशल ड्राइव चल रहा है June 1 से लेके 31 जुलाई तक
1: जी।
3: इसमें हम सारे कोऑपरेटिव संगठन के साथ जुड़े हुए पशुपालन किसानों को कवर कर रहे हैं
1: जी।
3: इसके लिए हमने डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ मिलके कस्टमाइज्ड फॉर्म बनाया है जहां की जो सेक्रेटरी होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का वो उसमें ये लिख के देगा फॉर्म में, सर्टिफाई करके देगा कि ये हमारे साथ जुड़ा हुआ, इनके पास इतना गाय है, इतने दूध पिछले साल में इन्होंने हमको दिया है और हमने इनको इतना पेमेंट उस दूध के
1: मूल्य
3: दिया है
1: जी। यानी सारी
3: तो इससे क्या होता है उस किसान के बारे में एक ऑथेंटिसिटी बन जाता है, तो क्रेडिट प्रोवाइड करने में आसान होता है। इसलिए इस तरीके से 2 महीने में हम 1.5-1.5 करोड़ किसानों को कवर करने का पूरा कोशिश में लगे हुए हैं
1: जी। बिल्कुल, लगातार देखिए कोशिश जारी है और इसी कोशिश की अगर बात की जाए, डॉक्टर आशीष आपसे भी हम जानना चाहेंगे प्रति व्यक्ति जो दूध की उपलब्धता है उसकी अगर खास तौर से बात की जाए, क्योंकि दूध उत्पादन क्षेत्र में हम कई सालों से बिल्कुल अग्रणी स्थान पर हैं, पहले पायदान पर हम मौजूद हैं, लेकिन आवश्यकताएं यानी जो मांग निकल कर आती है जो प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता है ये कब तक हम और ज्यादा सुनिश्चित कर पाएंगे?
2: देखिए, हम बात कर रहे हैं किसानों की आय दोगुनी करने की और एक बहुत बड़ा उसमें अहम रोल है क्रेडिट का। किसानों को जो अपनी जो खरीदी उनको इनपुट है उसके लिए सामान खरीदना है जो जो लगा कोई जो इसमें निवेश करना है उसको अगर हम आसान दर पे उसको आसानी से लोन दिला पाए और जो बहुत ऊंचे दर पे जो साहूकारों से और सूदखोरों से लोन लेता है जो आपके मनी लेंडर्स हैं उसके चंगुल से अगर छुड़वा पाए उसको एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी। तो वर्किंग कैपिटल जो है हमारे किसान भाई जो है पशुपालक है उसको उनको इस योजना के अंतर्गत काफी आसान दरों पे लोन मिल सकता है और उनकी काफी सारी जरूरतें से पूरी हो सकती है। तो आसानी से आगे बढ़ सकते हैं, निवेश कर सकते हैं और उनका जो खर्चा आता है निवेश पे काफी।
1: बिल्कुल डॉक्टर आशीष, जैसे आपने कहा कि लगभग जो 1.5 करोड़ से अधिक ऐसे किसान हैं जो सीधे तौर पर इससे लाभान्वित होंगे शुरुआती चरण की अगर हम बात करते हैं, और ना सिर्फ आमदनी जो दुगनी है वो हो सकती है, लेकिन खासतौर से हमने देखा था पिछले दिनों जो युवा वर्ग है वो डेयरी क्षेत्र में हमने देखा था किस तरीके से आगे आया है, तो उस लिहाज से भी हम काफी बेहतर इसको मान सकते हैं।
2: जी, योजना सब किसानों को लाभान्वित करेगी और जितने भी किसान इससे जुड़ेंगे वो एक मतलब परंपरा बन जाएगी, आसानी से उनको किस्त मिल सकेगी, पैसा मिल सकेगा, वो निवेश कर सकेंगे, आगे बढ़ने का रास्ता खुलेगा। मेरे किसान भाइयों का जितने पशुपालक भाई हमारे हैं
1: जी
2: उनको एक खुलेगा आगे बढ़ने की बड़ी पहल होगी उनके लिए।
1: जी, जाहिर तौर पर एक बड़ी पहल हम मान सकते हैं। अजीत जी, आपसे भी हम जानना चाहेंगे क्योंकि जिस तरीके से योजना की शुरुआत की गई 1 जून से और 31 जुलाई का एक समय जो है वो निर्धारित किया गया, कितना ज्यादा लाभ आपने इसमें देखा है कि अभी तक के जो आंकड़े निकल कर आए हैं क्या स्थिति फिलहाल आप देख पाए?
3: अभी हम ये जो कैंपेन है सारे मिल्क यूनियन डिस्ट्रिक्ट वाइज लगे हुए हैं, सब लोग इसमें इस कोरोना के संकट में भी लॉकडाउन के मारामारी में भी हम लोग पूरा कोशिश किए हैं। अभी आंकड़े के हिसाब से जो डेली रिपोर्ट हमारे पास आते हैं उस हिसाब से अभी 33.5 लाख फार्मर्स से हम फॉर्म भरवा चुका है
1: जी,
3: और उसमें से करीबन 16 लाख फॉर्म हम बैंक्स में जमा किए हुए
1: जी,
3: उनके जो प्रोसेसिंग स्क्रूटनी वो सब प्रोग्रेस में है। हम और उम्मीद करते हैं हम आगे के 31 तक सबसे जितना ज्यादा हो सके उतने तक पहुंच पाएंगे। ये ऐसे स्पेशल कैंपेन ये है हमारा और ये आगे भी रहेगा हमारा ये कैंपेन, ताकि सारे पशुपालक किसान भाई इसका पूरा फायदा उठा पाए।
1: जी बिल्कुल, आगे भी देखिए एक जो खास पहल है जैसा डॉक्टर आशीष ने कहा था ये मुहिम जो है वो जारी रहने वाली है, लेकिन जिस तरीके से डॉक्टर आशीष देखा जाए क्योंकि कोरोना काल में भी लगातार हम मान सकते हैं कि इस किसी के तहत भी जो ज्यादा से ज्यादा किसानों को जोड़ने की जो पूरी प्रक्रिया है वो यहां होती नजर आ रही है, जो एक आंकड़ा भी अजीत जी ने यहां पर दिया है, लेकिन लक्ष्य हमारे सामने बड़ा है। कैसे क्या और कुछ हम मान सकते हैं कि आधुनिक तरीके से भी कोशिश की जा रही है जो जानकारी है उसको इकट्ठा करने के लिए?
2: देखिए, जो पहली बात तो बताऊं, 2.5 करोड़ का हमने लक्ष्य रखा था अपने आगे इस साल किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिलवाने का। इसमें जो किसान हमारे किसानी करते हैं, खेती करते हैं, जो पशुपालक हैं, मत्स्य पालक, सबको मिला के हमारा एक टोटल एक हमारा एक टारगेट था। कोशिश ये थी कि उस टारगेट से हम ऊपर जाएं और हमारी कोशिश तीनों तरफ है, चाहे किसान है, हमारे खेती वाले पशुपालक है, मत्स्य पालक है, उनको आगे बढ़ावा मिले और 2 से 3 लाख करोड़ एक्स्ट्रा जो है रुपया क्रेडिट की अवेलेबिलिटी गांव में किसानों के पास हो, इसके लिए बड़ी पहल हमने की है।
1: अजीत जी, आपसे भी हम जानना चाहेंगे अगर रुझान की बात की जाए कहां पर सबसे ज्यादा जो किसान है वो आपको नजर आ रहे हैं कि जो ज्यादा संख्या में जहां एक रुचि ले रहे हैं?
3: देखिए, आप भारत में पूरा भारत में आप देखोगे सबसे ज्यादा किसान जो गाय पालन में लगे हुए हैं, पहले आप देखेंगे सबसे ज्यादा दूध प्रोडक्शन होता है उत्तर प्रदेश, उसके बाद आप जाओगे तो गुजरात में सबसे ज्यादा किसान जुड़े हुए हैं
1: जी,
3: एकदम हम लगभग 35 लाख किसान सहकारिता संघ के साथ जुड़े हुए हैं गुजरात में। तो गुजरात एक बहुत बड़ा स्टेट है जिसमें हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं और ज्यादा कवरेज उसमें से आने के लिए। उसके अलावा महाराष्ट्र, कर्नाटका, साउथ में जाएंगे तो तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र एंड तेलंगाना, ये सब स्टेट्स बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। बहुत सारे किसान भाइयां उधर हैं, उनका भलाई इस क्रेडिट कार्ड मिलने से उनका वर्किंग कैपिटल के जो रिक्वायरमेंट है बहुत अच्छी तरह से मीट किया जाएगा
1: जी
3: इस कठिन अवस्था में।
1: जी बिल्कुल, यानी तमाम देखिए जो पशुपालक हैं उनको जुड़ने की कवायद इसको हम मान सकते हैं जो कि शुरू कर दी गई है और काफी बड़े स्तर पर इस पर हम मान सकते हैं जो काम है वो भी चल रहा है। साथ ही यहाँ डॉक्टर आशीष आपसे और समझना चाहेंगे जिस तरीके से जो आपने बताया कि जो इसके ब्याज की राशि है वो एक निर्धारित की गई है और जब अदायगी की बात आए तो क्या यहाँ पर और कुछ रियायतें जो हैं वो हमारे पशुपालकों को मिलेंगी आने वाले समय में?
2: ये देखिए क्या है कि जो किसान लोन लेता है वर्किंग कैपिटल के लिए, जो जो भी पशुपालन का काम में जो हमारे किसान लगे हुए हैं, वो ब्याज साधारण पे इनका ब्याज दर 9% है, उसपे 2% का इंटरेस्ट सबवेंशन ब्याज की छूट सरकार देती है, और जो किसान समय से लोन वापस करता है उसको 3% की अतिरिक्त छूट दी जाती है, और अगर जो किसान लोन लेके समय से करता है उसकी ब्याज दर केवल है 4%, ठीक है, 5% का ब्याज का जो की जो छूट है वो भारत सरकार वहन करती है इन किसानों के ऊपर
1: जी,
2: और अगर कुछ राज्य है 4% की छूट को भी बढ़ा के दे रहे हैं, तो कई राज्यों में तो ये इंटरेस्ट फ्री लोन भी मिल रहा है किसानों को, यहाँ राज्य सरकार भी अपनी तरफ से भी छूट दे रही है जी।
1: बिल्कुल, काफी ज्यादा फायदा हम मान सकते हैं, राज्य सरकारें तक जो हैं वो अपनी तरफ से और ज्यादा रियायतें जो हैं हमारे किसान जो पशुपालक हैं उनको दे रही हैं। अजीत जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, जैसा डॉक्टर आशीष ने भी बताया कि अलग अलग स्तर पर प्रयास चल रहे हैं और खासतौर से राज्यों की अगर हम बात करते हैं, तो क्या कुछ एक प्रतिक्रिया की अगर बात की जाए, क्या स्थिति राज्यों में आपको नजर आ रही है?
3: राज्यों में इसका बहुत बड़ा अभी जो हमारे कैंपेन द्वारा जो भारत सरकार DFS किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा हम ये चला रहे हैं, इसके मतलब लोगों के पास इसकी पहुंच पता चल गया है उनको कि ऐसा माहौल है, भारत सरकार उन किसान के लिए वर्किंग कैपिटल के लिए ये कर रहा है, इसकी पब्लिसिटी बहुत अच्छी तरह से हुआ है, तो लोग इसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, लोग अब डिमांड करने लगे, लोगों को पता चल गया है मेरा दोस्त को किसान क्रेडिट कार्ड का एप्लीकेशन बनाया गया, उसको क्रेडिट लोन मिल गया है, तो मुझे भी चाहिए, इसे कोने कोने से लोग पता कर रहे हैं, और ये जो अभी जो हम कोऑपरेटिव के साथ जो कर रहे हैं ना, ये इसकी पहुंच और बाहर, किसान तो किसान है, वो कोऑपरेटिव से साथ जुड़े हो, निजी कंपनी के साथ जुड़े हो, खुद अपना व्यवसाय चला रहे हो, तो उनको भी ये प्रावधान मिलेंगे आगे जाके, उन लोगों को भी पता चल गया, तो वो लोग भी इस मुहिम में आ रहे हैं
1: जी। बिल्कुल डॉक्टर आशीष, आप भी इस बात से सहमत होंगे जो अजीत ने कहा कि ना सिर्फ जो पूरी सहकारी हमारे मान सकते हैं संघ हैं संस्थाएं हैं वो जुड़ रही हैं, एक व्यक्तिगत किसान की बात की जाए, व्यक्तिगत पशुपालक की अगर हम बात करें, तो आने वाले समय में वो भी लाभान्वित होंगे, और खासतौर से जो किसान उत्पादक संगठन है जिनको हम मान सकते हैं, जिनको फोकस करके हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, वहां भी किसानों को फायदा मिलेगा।
2: किसान चाहे वो अपने स्तर पे, निजी स्तर पे, या आपका फार्मर प्रोड्यूसर FPO के जरिए से, या अपनी मिल्क कोऑपरेटिव से यूनियन के थ्रू आना चाहे, किसी भी तरीके से जुड़ सकता है, तो पूरी छूट है, और अगर मिल्क कोऑपरेटिव ने आपके काफी मैं बोलूंगा इनिशिएटिव लिया है, इसमें किसानों में जागरूकता बढ़ाई है, उनका बड़ा एक हाथ रहा है, जिससे कि किसान बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं आज कोऑपरेटिव जो हमारा मूवमेंट है पूरा, और सक्सेसफुल आप देखिए मिल्क में तो बहुत बड़ा सक्सेस हमारी रही है कोऑपरेटिव में, उन लोगों का बड़ा हाथ है किसान किसानों को से जोड़ने में, मैं उनको धन्यवाद देता हूं, और आशा करता हूं जितने और भी हमारे जो रूट्स हैं, चाहे अपने FPO की बात की, फार्म प्रोड्यूसर कंपनी की बात करें, या सेल्फ हेल्प ग्रुप है, फार्मर खुद अपने निजी तौर पर जुड़ना चाहता है, सब तरीके से फार्मर से जुड़ सकते हैं, सब तरीके फार्मर इस स्कीम में आमंत्रित है और किसी तरह की कोई बाधा नहीं है
1: जी। बिल्कुल, तो देखिए किसी तरीके की कोई बाधा नहीं है, डॉक्टर आशीष है इसकी जानकारी दे रहे हैं। अजीत जी, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, जैसा आपने कहा कि जो राज्य हैं उनके साथ भी तालमेल जो है वो काफी अच्छा नजर हमें आ रहा है, लेकिन जिस तरीके से जो लक्ष्य अभी हमने पहले रखा है, क्या लगता है और कितना समय लगेगा इस लक्ष्य को हासिल करने में?
3: जैसे जैसे आप देखिए 2.5 करोड़ फार्मर किसान और एग्रीकल्चर किसान, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी, पोल्ट्री सबको कवर करना है, तो इसपे लगभग हम उम्मीद ये रख के जा रहे हैं, हमारे इस स्पेस में हम जैसे काम कर रहे हैं फील्ड में सबके साथ मिलजुल के, जिसका सबका जो कंट्रीब्यूशन, जो सीरियस कंट्रीब्यूशन जो आ रहा है, उस हिसाब से लगभग इस पूरे साल तक हम मैक्सिमम कवरेज जी कर पाएंगे इसमें
1: जी। बिल्कुल, यही उम्मीद हम भी करते हैं। साथ ही डॉक्टर आशीष, अगर देखा जाए ना सिर्फ पशुपालन बल्कि नीली क्रांति की अगर हम बात करते हैं, यानी मत्स्य पालन की अगर बात की जाए, तो यहाँ एक अलग फोकस जो है वो हमें देखने को मिलता है सरकार का जो रहा है अभी तक, यानी जो इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनको ज्यादा लाभ पहुंचे, अगर वो चाहे तटीय क्षेत्रों में है चाहे कहीं भी है।
2: जी बिल्कुल, जो हमारे मत्स्य पालक है उसके ऊपर बड़ा फोकस गवर्नमेंट का है, और हमने जो हमारा विभाग है मत्स्य विश्वेश्वरी डिपार्टमेंट, उससे भी काफी बैठक की है मंत्रालय ने, जिससे कि वो हमारे जो मत्स्य पालक भाई वो भी जुड़ सके, उसमें भी बड़ी पहल दी जा रही है, मुझे उम्मीद है कि एक बड़ी संख्या में मत्स्य पालक स्कीम से जुड़ सकेंगे, उम्मीद है कि एक बड़ी संख्या से जुड़ेंगे, और जो जो अड़चने आ रही हैं, जो यूनियन के थ्रू जाना है, जो उनके थ्रू करना है, तो वो भी हम उनसे बात करें विभाग से, कैसे ज्यादा से ज्यादा किसानों के पास हम जल्दी से जल्दी पहुंच सके और उनको इस योजना से जोड़ सके।
1: जी बिल्कुल, लगातार जो कोशिश है वो की जा रही है, लेकिन अजीत जी इस बात से आप भी सहमत होंगे कि जो किसान तक पहुंचने की बात है, जरूर अड़चने हैं लेकिन सफलता जरूर मिलेगी आने वाले समय में।
3: हाँ जी बिल्कुल, हमारे पूरे कोशिश यही है कि अब तो धीरे धीरे लोग ये कोरोना बीमारी से समझ में आ गया, अब धीरे धीरे वो अनलॉकिंग प्रक्रिया भी भारत में चालू हो गया
1: जी।
3: इस वजह से लोगों ने अपने काम काज में वापस आना शुरू हो गया है
1: जी।
3: और जो भी आप देखेंगे जो माइग्रेंट वर्कर्स वापस अपने गांव में चला गया, वो लोग भी अपने घर में जो पशुपालन हो, जो भी खेती हो, उसी में हाथ देना शुरू हो गया है, तो उसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा और उनको जो वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट है वो हमारे इस अभियान से वो पूरा भी एक तरीके से किया भी जाएगा
1: जी। बिल्कुल, तो देखिए कितना लाभ इसके जरिए हो सकेगा, ना सिर्फ वो किसान है जो अलग अलग संघों से जुड़े हुए हैं, सहकारी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, या एक नया किसान है जो कि इस क्षेत्र में आना चाहता है, डेयरी फार्मिंग की बात की जाए, मत्स्य पालन की बात करें या फिर पशुपालन की अगर बात की जाए, तो तमाम सुविधाएं अब सरकार द्वारा इसमें दी जा रही है और KCC भी जो है अब आने वाले समय में किसानों को इसका भी लाभ मिल सकेगा जिससे उनकी आवश्यकताएं पूरी हो सकेंगी।
4: किसान भाइयों, हमने नो जो अपड़ दूध उत्पादन नो जो सिलसिलो है यो दिन दुगना रात चुगना प्रगति करीरो है। तो किसान भाइयों, कहीं ना कहीं अगर आप देखिए तो अपड़ हंगड़ा किसान भाइयों का खेतर है, खेतर मा अपड़ कड़प कुटू थाए है, खेतर अपड़ फसलों जो अवशेष वसे है तीन थी अपड़ आसानी थी आप अपना पशु ने पाली सकी है। तो किसान भाइयों, जो भी किसान भाई थोड़ा सा इनमा रुचि बता रहे हैं तिना भाइयों, और एक बहुत ही बढ़िया आर को मौको है, क्योंकि आने वाला समय में भी हमने दूध नहीं जो मांग है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो फायदो भी अपड़ किसान भाइयों ने वधु थी वधु थई सके। और इन अलावा अपड़ इना दूध उत्पादन में कई नी संभावनाएं बनी रही है तीना बारा में आपू अगाड़ी चर्चा करूं, पर हमने समय थई गयो है एक नाना सा ब्रेक नो।
5: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।

0: किसान भाइयों एक बार फिर था बहुत बहुत स्वागत करिए है तमार सबुनो खेतीवाड़ी कार्यक्रम में। किसान भाइयों आप लगातार दूध उत्पादन थी जोड़ेली महत्वपूर्ण जानकारियों ने आप यहाँ पर चर्चा करी रहा है और इन चर्चा ने आगे बढ़ाता जाइन जानिए हजू किकम आप दूध उत्पादन ना इना कारोबार में किकम उन्नति थवा वाली है आवा वाला समय में कहीं ना हजू अपनी कन आय कमावाना साधन आवी सके है। तो किसान भाइयों आइए आप इना कार्यक्रम ने हजू थोड़ो आगाड़ी बढ़ाविए।
1: आपने जाना किस तरीके से किसान विकास पत्र यानी केसीसी जो है इसका लाभ हमारे किसानों को मिल सकेगा और जो डेयरी फार्मिंग से जुड़े हुए हैं मत्स्य पालन से जुड़े हुए हैं लेकिन डेयरी के बुनियादी ढांचे के लिए जारी विशेष आर्थिक पैकेज पर भी आपको बता दें। अब यहां पर सरकार ने आर्थिक पैकेज में इसका जिक्र किया था लेकिन इस बातचीत को हम आगे बढ़ाएं उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर।
2: आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत पशुपालन अवसंरचना विकास निधि यानी AHIDF के लिए सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। इसका मकसद दूध प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करना है। हमारे देश में फिलहाल सालाना 18,80,00,000 टन दूध का उत्पादन हो रहा है। अनुमान है कि 2024 तक ये आंकड़ा बढ़कर 33 करोड़ टन तक पहुंच जाएगा। अभी केवल 20-25% दूध का ही प्रसंस्करण हो पा रहा है और सरकार इसे 40% तक ले जाना चाहती है। सहकारी क्षेत्र में अवसंरचना विकास के लिए डेयरी प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड यानी DIDF लागू है जबकि निजी क्षेत्र के लिए AHIDF इस तरह की पहली योजना है। किसान उत्पादक संगठन यानी FPO MSME धारा 8 में शामिल कंपनियां, निजी क्षेत्र की कंपनियां और व्यक्तिगत उद्यमी न्यूनतम 10% मार्जिन राशि के अंशदान के साथ इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। बाकी 90% राशि अनुसूचित बैंकों की ओर से उपलब्ध कराया जाने वाला ऋण होगा। भारत सरकार पात्र लाभार्थियों को ब्याज में 3% का अनुदान भी देगी। अगर आप डेयरी और मांस प्रसंस्करण करना चाहते हैं या मूल्य वर्धित अवसंरचना की स्थापना कर रहे हैं या पहले से मौजूद अवसंरचना को मजबूती प्रदान करना चाहते हैं तो समझ लीजिए ये योजना आप ही के लिए है। योजना से जुड़ने के लिए आपको सिडबी के उद्यमी मित्र पोर्टल पर जाना होगा। यहाँ अनुसूचित बैंक में ऋण के लिए आवेदन का ऑप्शन मिलेगा। डेयरी क्षेत्र में चूँकि 50-60% अंतिम मूल्य किसानों को वापस मिल जाता है इसलिए इस क्षेत्र में होने वाले विकास से किसान की आय पर सीधा असर पड़ेगा।
1: तो रिपोर्ट आपने देखी किस तरीके से जो विशेष आर्थिक पैकेज का ऐलान किया गया था उसमें एक अवसंरचना के लिए जो बात कही गई थी जो एक आर्थिक पैकेज की यहाँ घोषणा की गई है उसका लाभ भी हमारे किसानों को मिल सकेगा। इस बारे में और जानकारी के लिए आइए एक बार फिर रुक कर लेते हैं डॉक्टर आशीष भूटानी जी का जो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर आशीष जिस तरीके से अगर देखा जाए पशुपालन अवसंरचना विकास निधि जिसका जिक्र किया गया था आर्थिक पैकेज में क्या कुछ लाभ इसके जरिए एक किसान को पशुपालक को मिल सकेगा?
3: ये योजना तो बड़ी योजना हमारे पशुपालन विभाग ने हाथ में ली है और किसानों को पहली बार जो इन्वेस्टमेंट क्रेडिट मिलेगा इस पे भी ब्याज दर की छूट है। अजीत जी है मेरे साथ आपको विस्तार से बताएंगे इसके बारे में। इतना कहूंगा कि बहुत बड़ा कदम है। एक स्कीम पहले भी चल रही बड़ी एक स्कीम पहली बार फंसा कर लॉन्च की है। एक पशुपालक जो हमारे किसान भाई उनका बहुत मदद होने वाली स्कीम से और जो आज आप देखें कि हम जो शॉर्ट टर्म क्रेडिट है जो अल्प समय का जो ऋण है अल्प अवधि ऋण है उसके लिए तो सरकार की ब्याज दरों में छूट की योजनाएं थी। पहली बार सरकार ने जो आपका मध्यावधि या दीर्घावधि जो ऋण देते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए उस पर बड़ी योजना सरकार लेके आई है पशुपालकों के लिए तो बड़ी पहले सरकार की तरफ।
1: जी बिल्कुल इस बारे में अजीत जी आपसे भी हम समझना चाहेंगे क्योंकि जो छोटे और सीमांत किसान हैं उनकी संख्या हमारे देश में काफी अधिक है और उनको ध्यान में रखते हुए हम मान सकते हैं कि इस योजना को लाया गया इस विशेष पैकेज में भी इस बात का ख्याल रखा गया।
4: देखिए इस पैकेज के जो ऐसी स्पेशलिटी क्या है मैं बताना चाहता हूँ। जैसे अभी आप देखेंगे दूध संस्करण और मांस संस्करण में भारत में बहुत सारे प्रोसेसिंग कैपेसिटी की बढ़ोतरी होना चाहिए।
1: जी बिल्कुल।
4: जैसे आप देख पहले हमने बताया जैसे कोऑपरेटिव सेक्टर दूध प्रोसेसिंग में बहुत बड़ा दायित्व निभा रहा है
1: काफी
4: भारत में उनके पास भी जो जैसे निजी सेक्टर में देखेंगे दोनों बराबर की ही दूध का
1: भागीदारी
4: है। अब ये आत्मनिर्भर पैकेज में हमारे HDF जो स्कीम अनाउंस हुआ उसकी वजह से निजी क्षेत्र में भी उनका भी प्रोसेसिंग कैपेसिटी बढ़ाने का नया यूनिट शुरू होने का
1: जी
4: तो प्रावधान है, उनको वित्तीय सहायता मिल रहा है, सब्सिडी और लोन में सब्सिडी इंटरेस्ट सबवेंशन भी मिल रहा है। इससे क्या होगा, इसका डायरेक्ट परिणाम क्या है, जो फार्मर जो दुधारू पशु के
1: रखते
4: हैं उनको ये अभी उनके साथ जुड़ेंगे, जो अभी भी जुड़े हुए हैं लेकिन उनको जो दूध जो लेने का प्रोसेस है वो बढ़ेगा। जब इनके प्रोसेसिंग कैपेसिटी बढ़ेंगे, इनके जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाना शुरू हो जाएगा इंडिया, वो एक्सपोर्ट कर पाएंगे, तो उससे जो अच्छे मूल्य जो दूध दे रहे फार्मर को मिल जाएंगे।
1: यानी सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो दूध प्रसंस्करण और मांस प्रसंस्करण के लिए इसका हम मान सकते हैं जो सीधा लाभ एक किसान जो है पशुपालक जो है उनको मिल सकेगा, लेकिन किस तरीके से जो ये निधि है इसका इस्तेमाल किया जाएगा, किस तरीके से इसको खर्च किया जाएगा, क्या ये अभी तक कुछ अजीत जी सुनिश्चित हो पाया है?
4: हाँ, इसमें क्या है, इसमें जो भी किसान हो, NGOs हो, फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, प्राइवेट कंपनीज हो, सेक्शन 8 के तहत जो रजिस्टर्ड हुई है वो कंपनीज हो, उन सबको इसका लाभ मिल सकते हैं। इनको क्या करना है, एक प्रोजेक्ट बनाना है जहां पे वो सक्सेसफुल स्टडी करके प्रोजेक्ट बनाएंगे अपना, क्या उद्यमी तरीके से वो मांस प्रोसेसिंग करना है या दूध प्रोसेसिंग का जो भी है वो बनाएंगे, और उसका एक पोर्टल तैयार होने वाला है, उसमें जो सिडबी का पोर्टल है उसमें वो सबमिट करेंगे, उसके द्वारा वो बार बार उस बैंक उस प्रोसेस को बैंकेबल प्रोजेक्ट्स को अप्रूव करेंगे
1: जी।
4: उसके अलावा 750 करोड़ का सब्सिडी फंड गारंटी फंड भी भारत सरकार इसके लिए प्रावधान रखा है
1: जी।
4: ये नबार्ड द्वारा इसको मैनेज किया जाएगा, इसमें हर साल 10 करोड़ भारत सरकार नबार्ड को दिए जाएंगे, 75 करोड़ रुपया नबार्ड को दिया जाएगा, उससे ये गारंटी फंड विल बी मेंटेन
1: जी। बिल्कुल डॉक्टर आशीष, अगर देखा जाए एक बड़ी आर्थिक मदद जो है वो सरकार द्वारा लगातार जो कृषि से जुड़े हुए हैं उनकी की जा रही है, और ना सिर्फ KCC के जरिए बल्कि हम मान सकते हैं कि KCC के जरिए जो पशुपालन डेयरी मत्स्य पालन से जुड़े लोग हैं उनको मदद दी जा रही है, और आने वाले समय में अगर वो प्रसंस्करण की तरफ मुड़ना चाहते हैं तो यहां भी उनके लिए अपार संभावनाएं हैं
3: जी। बिल्कुल, एक मैं जैसे बताया बड़ी पहले आपका आपको वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा चाहिए, KCC ले लीजिए, आपको इन्वेस्टमेंट कोई नई योजना लगानी है, अपना उत्पादन बढ़ाना है, डेवलपमेंट करना है, नई मशीनें लगानी है, प्रोसेसिंग करना है, उसके लिए नई योजना आ गई है, तो दो तरफा एक अप्रोच बात सरकार की है कि अल्पावधि वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा मिले आसानी से और इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छी स्कीम किसानों के लिए सुविधा हो, उनको अपॉर्चुनिटी मिले इन्वेस्टमेंट कर सके
1: जी। बिल्कुल, उनको एक संभावनाओं के जो द्वार हैं वो हम मान सकते हैं और ज्यादा खुलते हुए नजर आ रहे हैं, और जैसा डॉक्टर आशीष ने कहा जी एक सामंजस्य जो है वो दोनों ही योजनाओं में हमें मिलता हुआ नजर आता है, ना सिर्फ यहाँ पर जो सरकार द्वारा एक पैकेज जो दिया गया है उसमें भी आत्मनिर्भर भारत के लिए, और इस आत्मनिर्भर भारत के लिए जो किसान है उसको और ज्यादा हम कह सकते हैं प्राथमिकता जिस तरीके से दी जा रही है पशुपालक को KCC की सुविधा देकर, और ज्यादा मजबूती हम मान सकते हैं उन्हें मिल पाएगी।
4: बिल्कुल, जहां पे इन्वेस्टमेंट का रिक्वायरमेंट है उसमें जो कमियां और उसका जो अप्रोच बैंक से लोन मिलना के जो मुश्किलें हैं किसान फेस कर रहे हैं उसमें एक बहुत अच्छा स्टेप है कि उस गैप को हम फिल कर रहे हैं, ये एक हमारा शुरुआत है और आगे वाले दिन में ये सब चीजें बहुत ही अच्छी तरह हो जाएंगे, और फार्मर को क्रेडिट मिलना और अपना कैपिटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट मीट करने के लिए कोई मुश्किल कठिनाइयां ना फेस करना पड़े
1: जी। बिल्कुल, लेकिन जो इस जैसा आपने बताया कि किस तरीके से इस निधि का इस्तेमाल होगा और किसानों की समस्याओं की अगर बात की जाए तो पहले हम देखते थे कि उनको ऋण लेने में ही काफी दिक्कत हो जाती थी, उसके बाद एक शुरुआत होती कि प्रसंस्करण के लिए अगर उनको इकाई स्थापित करनी है, लेकिन अब हम मान सकते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया को सरल बनाने की भी कोशिश की जा रही है।
4: बिल्कुल, इस आप देखेंगे ये जो स्कीम नया लॉन्च किया है, इसमें आप थ्रू बैंकेबल प्रोजेक्ट से वो पूरा बैंक सारे क्राइटेरिया को मीट करते हुए सब चीजों को देखा हुआ जाए बनाएगा और उसको अच्छी तरह स्क्रूटनी करके ही उनको क्रेडिट दिया जाएगा जो आपने प्लांट लगाने के लिए, जैसे दूध का हो मीट का हो वो लगाने के लिए। इसमें पूरी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से भी, हमारे मंत्रालय के तरफ से भी दो कमिटी इसमें बने हुए हैं, एक प्रोजेक्ट सैंक्शनिंग कमिटी है और एक प्रोजेक्ट अप्रूवल कमिटी है, जहां 50,000 करोड़ तक का जो प्रोजेक्ट्स है उसमें प्रोजेक्ट अप्रूवल कमिटी का लेवल से इंटरेस्ट सबवेंशन इंटरेस्ट सब्सिडी तैर के जाए अप्रूव किया जाएगा और उसके ऊपर जो है प्रोजेक्ट सैंक्शनिंग कमेटी है चेयर अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सेक्रेटरी मत्स्य एवं पशुपालन विभाग का, उस उनके चेयरमैनशिप का जो कमेटी है वो तैयार किया जाएगा और उस बेसिस में उनको डिस्बर्स किया जाएगा।
1: जी बिल्कुल, यानी इसके तहत ये सारी देखिए जो
4: इसके, इसके इसके तहत 10-25% इंटरेस्ट सबवेंशन आपको मिल जाएंगे।
1: जी जो डॉक्टर आशीष, जो हमारे युवा किसान है या तमाम युवा जिनको हम चाहते थे कि वो और ज्यादा आकर्षित हों कृषि क्षेत्र की तरफ, और खासतौर से जो एक लगातार चिंता का विषय रहता था हर एक सरकार के लिए जो बेरोजगारी का आंकड़ा था, क्या इन सबको ध्यान में रखते हुए हम मान सकते हैं कि काफी असर जो है यहाँ में नजर आएगा?
3: बिल्कुल, जो हमारे युवा किसान भाई हैं उनकी बड़ी इच्छा रहती है कि हम नई योजनाएं बनाएं, नई आपके प्रोजेक्ट हाथ में ले, उनको आसानी से ऋण मिल सके, इसकी इसका प्रावधान भारत सरकार ने किया है। क्रेडिट गारंटी का भी प्रावधान किया, कई जगह आप देखेंगे कई इलाकों में कई जिलों में बैंक भी थोड़ा हिचकिचाते हैं किसानों को लोन देने में कि पैसा वापस आएगा नहीं, तो सरकार ने क्रेडिट प्रावधान किया है कि अगर आपको पैसा किसान से वापस नहीं मिलता किसी कारण से तो क्रेडिट गारंटी साथ क्लेम कर सकते हैं। तो किसान जो बैंक है उनको भी आसानी हो जाती है लोन देने में, वो भी हिचकिचाते नहीं है
1: जी।
3: जो किसान भाइयों को आसान लोन मिल सकता है, ब्याज दर तो नीचे है ही, उस पर तो भारत सरकार सब्सिडी दे ही रही है इंटरेस्ट सबवेंशन, और साथ में उनको बैंकों को भी आसान कर रही है जिससे कि आसानी से इन किसानों को लोन दे सके। तो जितने भी हमारे युवा किसान भाई हैं उनके लिए एक बड़ी एक अपॉर्चुनिटी बोलूंगा मैं इस इन सब स्कीम से जुड़ने की और नई योजनाएं बना के अपने ग्राउंड पे आपको अपने कौशल को और अपनी प्रतिभा दिखाने की।
1: जी बिल्कुल, यानी लगातार देखिए अपने जो कौशल है उसको और निखारने का हम मान सकते हैं नए योजनाओं का लाभ जो है वो खासतौर से युवाओं को मिल सकेगा। अजीत जी, आप इस बात से सहमत होंगे क्योंकि हर एक क्षेत्र में हम मान सकते हैं कि आवश्यकता थी सुधार की, और इस तरह की जब योजनाएं आईं तो ना सिर्फ जो किसान है उनका भी विश्वास बढ़ा, उन्हें भी उम्मीद जगी कि जो शायद कौशल के विकास की जब हम बात करते हैं तो और ज्यादा वो हो सकेगा।
4: बिल्कुल, इसमें क्या है आप देखिए, जैसे हमारे जो स्कीम है HIDF स्कीम है उसमें से जैसे भी प्रोसेसिंग कैपेसिटी बढ़ेंगे, बड़े बड़े उद्योग लगेंगे दूध का मांस संस्करण का, इसमें जो लोग है उनको रोजगार मिलेंगे, बहुत सारे लोगों को उसमें रोजगार का अपॉर्चुनिटी है, और जो टेक्निकली पढ़े हैं जो भी पढ़े हैं उनको भी इसमें रोजगार मिलेंगे, और हमारा जो फूड चेन में जो प्रोसेसिंग कैपेसिटी इंडिया का जो है सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा, और हम एक्सपोर्ट के उधर तक हम सोच सकते हैं कि एक्सपोर्ट का भी हमें थोड़ा ज्यादा प्रावधान मिलेंगे और उसका सुविधा हम उठा पाएंगे।
1: यहाँ निर्यात का आपने जिक्र किया, यानी एक्सपोर्ट की हम बात करते हैं, और मांस प्रसंस्करण का जो क्षेत्र है वहां पर काफी संभावनाएं जो है क्योंकि अधिकतर जो है निर्यात की स्थिति वहां पर हम देखते हैं, यहाँ पर किस तरह का बदलाव जो है हम देख सकते हैं, क्या इसके जरिए भी हम मान सकते हैं जो विदेशी मुद्रा अर्जित करने की बात है वहां भी एक अच्छा खासा इजाफा हमें देखने को मिलेगा?
4: जैसे स्टेट ऑफ आर्ट मीट प्रोसेसिंग प्लांट्स बनेंगे जहां पे बकरी का मीट, मुर्गा और पिग और जो भैंस का मीट है उसका वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनेगा, और उसका जो बहुत डिमांड है इंटरनेशनल मार्केट में, तो उससे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ने का संभावना भी ज्यादा है।
1: जी, लेकिन इसके लिए जागरूकता की अगर बात की जाए, क्योंकि किसान को लगता है कि शायद जो उनके द्वारा उत्पाद तैयार किया गया है वो घरेलू बाजार में पहुंच जाए वो काफी है, लेकिन ऐसे में एक किसान को एक पशुपालक को इस बात के लिए तैयार करना कि जो आपका उत्पाद है वो इस गुणवत्ता का होगा कि उसे हम विश्व स्तर पर भी अगर चाहें तो बेच सकते हैं, इसके लिए कैसे हम तैयार करेंगे?
4: उसी का ही पहलू है ये
1: जी,
4: पहला पहलू है ये जिसमें आप प्रोसेसिंग कैपेसिटी ऑर्गेनाइज सेक्टर में लाएंगे। जैसे आप अभी देखिएगा मांस संस्करण उतना ऑर्गेनाइज नहीं है जितना होना चाहिए, लोकल लोकल छोटे छोटे जगह पे मांस का संस्करण होता है और उसको बेचा जाता है, वहीं पे फार्म पे ही बेचा जाता है। जब ये प्रोसेस स्टैंडर्डाइज्ड वे में स्टेट ऑफ आर्ट प्रोसेसिंग यूनिट लगा के उसमें हो जाएगा, जो FSSAI की सारे मानदंड उसमें पूरा किया जाएगा और स्टैंडर्ड फिक्स किया जाएगा, तो उस प्रोडक्ट का जरूर हमारे देश का जो कंज्यूमर है उनको भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा। उसके बावजूद जो एक्सेस प्रोसेसिंग कर पा रहे हैं, जो भी प्रोसेसिंग यूनिट कर पा रहे हैं, वो निर्यात में आ जाएंगे।
1: जी बिल्कुल, ना सिर्फ जो घरेलू बाजार है वहां पर बल्कि बाहरी बाजार पर भी इसका
4: पहले स्टेज में तो घरेलू का डिमांड अच्छे से पूरा हो जाएगा, जो हम इम्पोर्ट करने का जो हमारा है वो हम इसमें से मीट कर पाएंगे।
1: जी बिल्कुल। साथ ही डॉक्टर आशीष, इस बारे में आपसे भी हम जानना चाहेंगे, इस पूरे क्षेत्र को अगर हम देखते हैं, पशुपालन, डेयरी फार्मिंग और जो हमारे मत्स्य पालन क्षेत्र है, यहाँ से कितनी हम मान सकते हैं कि जो संभावनाएं रहती हैं हमारी ना सिर्फ घरेलू बाजार के लिए, क्या एक आर्थिक संरचना आपको नजर आती है जिसकी बढ़ने के पूरे पूरे आसार अब हमें नजर आ रहे हैं? क्योंकि प्रसंस्करण जो है सीधे तौर पर हम मान सकते हैं किसानों के लिए जो उनकी आय थी वो दोगुनी इसमें हो सकती है।
3: बिल्कुल, देखिए जितना भी सबसे बड़ी बात है, अगर आपको इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटेटिव होना है, आपको अच्छा प्रोडक्ट देना है, उसके लिए आप इन्वेस्टमेंट करना है। इन्वेस्टमेंट की बड़ी जरूरत थी, आपको आसानी से क्रेडिट मिल सके इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो बड़ी योजना से बहुत फायदा होगा, एक्सपोर्ट काफी बढ़ेगा और हमारे जो किसान है वो इंटरनेशनल मार्केट में भी कॉम्पिटेटिव हो सकेंगे, अच्छा प्रोडक्ट दे सकेंगे, कॉम्पिटेटिव हो सकेंगे, कम दाम पे दे सकेंगे। एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन देख के भी इन योजनाओं को लाया गया कि किसान कैसे हमारा जो ऑलरेडी हम एक्सपोर्ट मार्केट में हमारा अच्छा एक नाम है उसको कैसे और बढ़ा सकते हैं और कैसे आगे बढ़ सकते हैं।
1: जी बिल्कुल, यानी अजी जी हम मान सकते हैं कि एक बड़ा एक्सपोर्ट हब जो है वो हम यहाँ तैयार करने की कोशिश में, उसकी भी संरचना जो है या नींव जो है लगभग हम मान सकते हैं जो रख दी गई है अब।
4: हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल
1: जी,
4: उसी के तरफ भी हम कोशिश कर रहे हैं, उसी के तरफ भी हम ध्यान दे रहे हैं, उस पहलू में भी हम जाएंगे और धीरे धीरे जा पाएंगे कि एकदम से हम नहीं जा पाएंगे। अभी का हालत और उससे जो हम कितना उभर के आ रहा है और इतना सक्सेसफुल है, जो इसकी जो इफेक्ट जो आएगा प्रोसेसिंग यूनिट और ये जो सब लगाने में और फार्मर्स को जितना उत्साहित करेंगे जो हमारे ये स्कीमें आने वाले सालों में, उसके बेसिस में हम जरूर उस पहलू तक पहुंच जाएंगे।

0: ना सिर्फ जो किसान हैं अजीत जी, उनको प्रोत्साहित हम कर रहे हैं, लेकिन जो प्रशिक्षण है वो कितना ज़रूरी आप मानते हैं? क्योंकि अगर प्रसंस्करण में हमारे किसान आगे बढ़ रहे हैं या जो दूसरे क्षेत्र हैं उनमें हमारे किसान आगे बढ़ रहे हैं, और एक किसान से उद्यमी या व्यवसायी के रूप में उनका परिवर्तन होना, वो कितना महत्वपूर्ण, उसके लिए प्रशिक्षण कितना ज़रूरी आपको लगता है?
1: उसमें भी पीएम स्किल डेवलपमेंट के उद्यम से भी वो सब मामला सोल्व हो रहा है, और जो युवा हैं भारत के उनको स्किल डेवलपमेंट के लिए अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी एम्फोसिस वही किया है कि स्किल बढ़ाओ, जो स्किल है उसको और बढ़ाओ, और उसके भी ऊपर उसको स्किल को ले जाने और उसको इम्प्लीमेंट करने का आह्वान किया है
0: जी।
1: तो उस हिसाब से जैसे आप देखेंगे मीट एंड डेयरी प्रोसेसिंग यूनिट में हमारे ICR के द्वारा, कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है, और इसको, और ये जो जैसे भी आप देखेंगे जैसे इन्वेस्टमेंट्स आना शुरू हो जाएगा, जब उसमें मैन पावर की रिक्वायरमेंट पड़ेंगे, तो जो संस्थाएं हैं जहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं, डिप्लोमा देते हैं, डिग्री देते हैं, तो उस फूड टेक्नोलॉजी में, डेयरी टेक्नोलॉजी में जो उसमें से जो पढ़ लिख के आ रहे हैं लोग, और डिप्लोमा जो भी उसमें से लेके आ रहे हैं या डिग्री लेके आ रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। जब हमारे इंडिया में ही प्रोसेसिंग कैपेसिटी और प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज विल डेवलप कितने अच्छे से होंगे, उतने उनके लिए लाभदायक है और उनका रोजगार का चांसेस भी बढ़ते जाएंगे।
0: जाहिर तौर पर हम मान सकते हैं कि कोशिश जो है वो लगातार की जा रही है, और एक बड़ा बदलाव जो है वो हम देख पा रहे हैं। लेकिन जब आत्मनिर्भरता की बात कही जाती है, किस तरीके से जो किसान हैं, युवा हैं, वो इससे जुड़ रहे हैं, खासतौर से डॉक्टर आशीष अगर हम बात करें, जैसा अजीत जी ने कहा कि ना सिर्फ जो कौशल विकास है उस पर हम काम कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक जो सामंजस्य बनता जा रहा है योजनाओं का, वहाँ दूसरा लक्ष्य हमारे सामने था किसान की आय को दोगुना करने का, उस लक्ष्य को भी हम समय रहते हासिल कर पाएंगे?
2: बिल्कुल, देखिए पशुपालक जो है जितनी आमदनी आए हमारे किसान भाई पशुपालन से ले अर्जित कर रहे हैं, उससे जो हमारी टोटल आमदनी बहुत बड़ा उसका एक हिस्सा है। तो हमारा फोकस यही कैसे हम पशुपालन की जो जो एक्टिविटी है उसको बढ़ा सकते हैं किसानों के बीच में। और जैसा कि बताया अजीत जी ने कि योजनाएं आ रही है उसमें टेक्नोलॉजी का एक बड़ा योगदान होगा, एक बड़ा फोकस रहेगा
0: जी।
2: उसमें ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग का एक बड़ा एक महत्व है और फोकस है कि हमको नई टेक्नोलॉजी लानी है, किसानों को सिखाना है, उनको एक्सपर्ट है, उसके लिए उनकी ट्रेनिंग भी बहुत जरूरी है। और बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हैं दुनिया में, जो भी यहाँ पर अच्छी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके वो आगे बढ़ गए हैं इस पशुपालन के जो आपके व्यवसाय में, उसको भी कॉपी करना, उनको देखना, उनसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना, हर मैं बोलूँ हर फील्ड में इस पे काम हो रहा है। और सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी अपनाया करके हम भी कोशिश करेंगे कि हमारे पशुपालक दुनिया में सबसे आगे बढ़े और सबसे अच्छा प्रोडक्ट सबको दे सके।
0: जी बिल्कुल, साथी अजीत जी आप भी इस बात से सहमत होंगे कि किस तरीके से लाभ को और हमें बढ़ाना है, कैसे उसको बेहतर करना है, इस तरफ और ज्यादा अब हम अग्रसर हो रहे हैं, सक्रिय हैं पूरी तरीके से।
1: बिल्कुल, जैसे आप बता रहे थे, जैसे ट्रेसेबिलिटी एक बहुत बड़ा इश्यू है। जैसे आप दूध हो, मांस हो, जो भी खाद्य पदार्थ हो, जहां से प्रोड्यूस होता है वहां से लेके जब खरीदार के हाथ तक, उनके किचन तक पहुंचने तक की जो ट्रेसेबिलिटी है वो बहुत बड़ा मूल्य वर्धन का इम्पोर्टेंस है उसमें। उससे क्या होता है कि आपकी प्रोडक्ट की गुणवत्ता है वो उसको इंश्योर करता है। उसके लिए जब आपके इन्वेस्टमेंट्स इस सेक्टर में आएंगे, जब प्रोसेसिंग आपका मजबूत होंगे और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आप अडेप्ट करेंगे, तो ये सब चीजें उसके साथ जुड़ जाएंगे और लाइन में लाइन उसमें उसके साथ इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। जैसे विदेश राज्यों में आप देखेंगे, जैसे डेयरी के बारे में बात करेंगे, तो उधर हमारे देश जैसा एक किसान दो या तीन गाय रखते हैं वो सिस्टम नहीं है, वहां पे एक किसान ही 1,000, 2,000, 3,000 गाय रखते हैं।
0: जी बिल्कुल,
1: तो वो सिस्टम यहाँ आएंगे धीरे धीरे, अब उसके तरफ शुरू हो गया। आप देखेंगे पंजाब जैसे राज्यों में वहां पे 200-300 गाय का फार्म आना शुरू हो गया है, महाराष्ट्र में भी है इसके एग्जाम्पल्स, और ये धीरे धीरे ये सब उसी लाइन में हम उसी गुड प्रैक्टिसेस, जैसे सर ने बोला बेस्ट प्रैक्टिसेस, वो यहाँ पे भी लागू हो जाएगा, जो दुनिया का सबसे बेस्ट तरीका और हमारा भी बेस्ट तरीका है, वो सब मिलके एक बहुत बड़ा फ्यूचर इसमें दिख रहा है।
0: जी बिल्कुल, यानी तकनीक और जो तरीके की बात की जाए, वो जो बेहतर हो सकता है, जो सर्वश्रेष्ठ है, उसको कैसे हम और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं, इसके लिए कवायद शुरू हो चुकी हैं। कोशिश हम यही कर रहे हैं कि और ज़्यादा लाभ जो है इसके ज़रिए हमारे जो कृषि से जुड़े तमाम क्षेत्र हैं इनको मिल सके। पशुपालन की बात करें, डेयरी फार्मिंग की बात की जाए, या फिर मत्स्य पालन की, जिसमें एक बड़ा बदलाव हमें यहाँ देखने को मिलेगा जब से इस योजना की घोषणा की गई थी उसके बाद से भी।
3: सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।

0: पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM आपनो रेडियो आपनी बातें।
1: इस तरीके से जो हमारा डेयरी फार्मिंग का क्षेत्र है वहाँ पर दो काज जो हैं वो पूरे होते हमें नजर आ रहे हैं। एक तरफ किसानों को केसीसी जैसी जो सुविधा है पशुपालन क्षेत्र में वो अब मुहैया कराई जा रही है डेयरी फार्मिंग के लिए, मत्स्य पालन के लिए। दूसरी ओर बाकायदा आर्थिक पैकेज में एक बड़ी राशि जो है जिसका प्रावधान रखा गया है, जिससे एक आधारभूत ढांचा जो है वो तैयार होगा और न सिर्फ प्रसंस्करण जैसे तमाम क्षेत्र जो हैं जिनके जरिए जो पशुपालक हैं किसान हैं अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं उनका समावेश इसमें हमें होता नजर आएगा। अजी जी, यहाँ आपसे समझना चाहेंगे, जब आत्मनिर्भर भारत की हम बात करते हैं और एक ऐसा भारत जिसमें शायद जो किसान है सबसे पहले जिन्हें प्राथमिकता दी गई है वो शायद सबसे पहले हमें आत्मनिर्भर होते नजर आएंगे।
2: जरूर, किसान जब आत्मनिर्भर होगा पूरा देश आत्मनिर्भर होगा। जो किसान को जो मूल्य देना चाहिए और उनका जो सामूहिक क्षेत्र में उनका जो प्रायोरिटी है, उनकी जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ेगा। किसान खुद अपने आप आत्मनिर्भर हो जाएगा और देश खुद अपने आप पूरे तरीके से आत्मनिर्भर हो जाएंगे।
1: जी बिल्कुल, तो देखिए ये हम मान सकते हैं जो आत्मनिर्भरता है वो कैसे बढ़ रही है। और साथ ही डॉक्टर आशीष, अगर प्राथमिकता की बात की जाए तो हमने शुरुआत से ही देखा सरकार की प्राथमिकता जो है वो कृषि और किसानों को लेकर रही और यहाँ पर बाकायदा अगर देखा जाए तो हमने देखा कि पूरा मंत्रालय जो है अब इसके लिए बना भी दिया गया कि न सिर्फ डेयरी फार्मिंग मत्स्य पालन बल्कि पशुपालन से जुड़े जो हैं तमाम समस्याएं जो रहती थी उनको सुलझाया जाए और ज्यादा जो योजनाएं हैं वो आ सकें। इस कड़ी को अगर देखा जाए तो पहला एक कदम नहीं बल्कि कई कदम हम मान सकते हैं जो आगे बढ़ चुके हैं देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए।
3: अर्थात कृषि मंत्रालय इसको कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने इसको परिवर्तित किया
1: जी।
3: इसके बाद जो पशुपालन और मत्स्य पालन को अलग एक मंत्रालय बनाया जिससे कि फोकस हो सके और इन में एक और जोर से और अच्छे से काम फोकस से काम कर सके और अच्छी योजनाएं ला सके इस क्षेत्र में। वो मतलब एक फोकस मैं बोलूंगा कि इस पर अटेंशन दिया जाए, बहुत इस पे इसको महत्व दिया गया। नई बड़ी योजना है, आप देखेंगे कि जितना भी इन्वेस्टमेंट या योजना पुरानी चल रही है उससे बहुत कई गुना अधिक निवेश कर रही है सरकार अपनी योजनाओं में, जिससे किसानों इस क्षेत्र में किसान आगे बढ़ सके और इसमें टेक्नोलॉजी का और एक बड़ा इन्वेस्टमेंट आए इससे कि हर तरह से लोग एम्प्लॉयमेंट मिले, उनका आय दुगनी हो, आत्मनिर्भर हो सके। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक बहुत बड़ा एक जो एक अंश है वो कृषि और कृषि में, तो मैं कृषि बोलता हूँ तो कृषि में किसान पशुपालक और मत्स्यपालक सब शामिल।
1: जी बिल्कुल, हम मान सकते हैं यानी जो कृषि और पशुपालन जो एक दूसरे के पूरक ही हैं। लेकिन डॉक्टर आशीष, इस बात से आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि क्या अब से पहले भी अगर हम बात की करें पशुपालन क्षेत्र की तो इतना सक्रियता शायद नजर नहीं आती थी और ना ही इतनी शायद रुचि या रुझान जो है वो किसानों का नजर आता था। अब तमाम योजनाएं आई तो और ज्यादा आकर्षण जो है यहाँ पर दिखता है।
3: बिल्कुल, पहली बार इतने बड़े हस्तक्षेप किए गए हैं पशुपालन सेक्टर में बोलूंगा और किसानों के लिए बड़ी योजनाएं लाई गई और एक जितने भी सरकार ने बैठ के जितने भी गैप्स उसको फिल कर दिया, जहां जहां बोला कि इस तरह की पहल करनी चाहिए या एक जो मिसिंग लिंक है इसको बैठाना जरूरी है वो सब काम कर दिया। इसे अब आगे आसानी से स्मूथली काम हो सकता है, आगे हम बढ़ सकते हैं।
1: जी बिल्कुल अजीत जी, जैसा डॉक्टर आशीष ने कहा कि जो जहाँ पर जगह दिखी गई यहाँ पर शायद अभी पूरा जो जगह है वो खाली है उसको पाटने का काम किया गया। और इस कड़ी में अगर हम देखें जो किसान है ना सिर्फ उनकी राय को माना गया, जो उनकी मांग चल रही थी या किसान संघ है उनकी मांगों को भी पूरा किया गया और उसी कड़ी में जो पशुपालन जिसको हम मान सकते हैं कि पहले शायद दरकिनार कर दिया जाता था लेकिन अब कोशिश की गई कि उसी को हम फोकस कर सकें और उसके जरिए ही जो किसान की आमदनी है उसका रास्ता भी इख्तियार हो।
2: बिल्कुल, जैसे आप देखेंगे एग्रीकल्चर और पशुपालन एक सिक्के का दो ही पार्ट
1: जी,
2: जब एक जहाँ पे प्रॉब्लम आता है दूसरा चीज उसको कॉम्पेंसेट करते हैं। जैसे एक किसान अपने साथ दो तीन या चार गाय रखा, मुर्गा पालन किया तो उससे भी उसके आमदनी में एक इनकम आता है
1: जी,
2: एग्रीकल्चर के अलावा इससे भी इनकम आते हैं, तो इट इज पूरक ये दोनों। तो इसी को बढ़ावा देना और जैसे कि एग्रीकल्चर खेती बाड़ी होते हैं वैसे ही इम्पोर्टेंस अब आज के डेट में किसान जागरूक हो गया, पशुपालन के तरीके से आ गया है जो दूध का प्रोडक्शन में भी भारत नंबर वन है, तो इसका अभी हमारा फोकस पूरा उसलिए उसकी गुणवत्ता को बढ़ावा देना।
1: यहाँ किसान जी, अजीत जी, हम मान सकते हैं जो एक मॉडल है हमारा एकीकृत कृषि प्रणाली का, उसको और ज्यादा सुदृढ़ और विकसित करने की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं।
2: बिल्कुल, इंटीग्रेटेड फार्मिंग भी इसके इसी का एक पहलू है, उसी का ही अभी आगे का युग उसी का ही है
1: जी।
2: जो फार्मर इंटीग्रेटेड फार्मिंग अडॉप्ट करेंगे उनका आयु बिल्कुल बढ़ेगा और उससे बहुत ज्यादा फायदा होता है। जैसे पशुपालन के साथ आप मत्स्य पालन, मुर्गा पालन और खेती बाड़ी के साथ ये सब जुड़ के करेंगे तो एक दूसरे का पूरक होता है वो। जैसे जो फार्म से जो आपका जो बायोलॉजिकल वेस्ट आता है काउडंग वो सब, उनका ऐसे फर्टिलाइजर यूज होगा, जैसे उसका वैल्यू गोबर गैस बनने,
1: यानी कैसे एक दूसरे से वो जुड़े हुए हैं और कैसे हम उनका सदुपयोग कर सकते हैं, ये महत्व अब हम धीरे धीरे जान रहे हैं।
2: यस, उसका जो बढ़ावा है वो मिल रहा है और आगे जाके बहुत अच्छे से इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा भारत में।
1: जी बिल्कुल, लेकिन किस तरह का एक बड़ा बदलाव जो है वो हम देख पाएंगे, क्योंकि अगर पिछले 10 से 20 सालों की भी बात की जाए इन वर्षों के मुकाबले आज के समय में एक बदलाव नजर आता है। आने वाले समय की अगर बात करें जी जी, तो किस तरह का बदलाव हम देख सकते हैं, किस तरह की उम्मीद हम कर सकते हैं?
2: बिल्कुल इसी तरीके से फार्मर, जो मैं वही बोल रहा हूं, जो किसान आत्मनिर्भर हो जाएगा आने वाले दिनों
1: जी,
2: जैसे ये सब टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करके इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, ऑर्गेनिक फार्मिंग सिस्टम ये सब अडॉप्ट हो जाएगा तो तुरंत उसका असर आना शुरू हो जाएगा। आत्मनिर्भरता सम्मान के साथ किसान फील कर सकते हैं।
1: जी बिल्कुल, एक सम्मान

0: करने हमने एफपीओ बनाए, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए, कोऑपरेटिव बनाए, कैसे हम एकीकृत होके हम मिलके एक साथ खेती करें, इकोनॉमी ऑफ स्केल हमको मिले और यूनिट एक नहीं बड़े मिलके काम करें, बड़ा यूनिट डालें तो साइज बड़ा होगा, बेनिफिट ज्यादा होगा, आप जैसे इकोनॉमी ऑफ स्केल होंगी, आप जो आप इनपुट है वो सस्ते दाम पे खरीद सकते हैं, आप मार्केट में आप बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी, आप अच्छा दाम प्राप्त कर सकते हैं। किसान को एक बड़ी परेशानी दाम की भी रही है, कैसे उसको अच्छा दाम मिले, तो उन जो आपका जो जो ग्रुप बन रहा है, ग्रुप के जो बेनिफिट्स है, ग्रुप डायनेमिक्स है, उससे काफी बड़ा फायदा होने वाला है किसानों को। अच्छी टेक्नोलॉजी का प्रयोग होगा और जब 7-8-10 लोग मिलकर काम करेंगे या इकट्ठा एक ग्रुप होगा तो उनकी ग्रुप डायनेमिक्स का भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, कैसे हम काम करते हैं, कैसे टेक्नोलॉजी को लीवरेज करते हैं। मैं आने वाले साल में एक बड़ा बदलाव मेरे को दिख रहा है।
1: जी बिल्कुल, और जैसा आपने कहा डॉक्टर आशीष के एक साथ मिलकर जब काम होगा तो जाहिर तौर पर एक बदलाव उसका नजर आएगा। अजीत जी, आप भी इस बात को मानते ही हैं क्योंकि एकता में शक्ति की जो बात कही जाती है, अब जो किसान है ना सिर्फ स्वयं सहायता संगठन जो है बल्कि किसान उत्पादक संगठन है, ये एक पूरी तरीके से जो किसान है वो जान चुका है कि अगर समूह में है तो और ज्यादा फायदा उनको होगा और इन योजनाओं का लाभ समूह में रह के संगठन में रह के शायद ज्यादा मिल पाएगा।
2: बिल्कुल, अभी मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जैसे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, फार्मर ही अपना ऑर्गेनाइजेशन बनेंगे, वही उसका मालिक है, वही उसका बोर्ड मेंबर है, वही अपना प्रोड्यूस मार्केट में भेजेंगे
1: जी।
2: तो चालू हो गया है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बहुत साल पहले ही वो फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट करने का स्कीम निकाला है, उसके वजह से आज के डेट में बहुत सारे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस पूरे देश भर में बन गया है और उससे किसान अभी फायदा उठाना शुरू हो गया
1: जी।
2: तो किसान उसके बारे

लीजिए दोस्तों, प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं संदीप कौंडल जी के गाए हुए जीवा फिल्म के इस गीत से, जिसको फिल्म में अमित कुमार जी ने गाया। ये फिल्म 1986 में रिलीज हुई थी। इसे लिखा गुलजार ने और संगीत आडे बर्मन साहब ने बनाया।

सुनते हैं नागपुर की रहने वाली शायरा अर्चना अर्चन की ये खूबसूरत सी नज्म। तुम जो बोलो तो गुनगुनाने लगे सारी फिजा, तुम जो बोलो तो गुनगुनाने लगे सारी फिजा, रहो खामोश तो मेरी धड़कने खामोश रहें। तुम जो हंस दो तो महकने लगे पलाश कहीं, जो उदास हो तो चांदनी भी फीकी लगे। तुम घर आओ तो मिले चैन और सुकून आए, तुम घर आओ तो मिले चैन और सुकून आए, ना मिल सको जो कहीं दुश्मन संसार लगे। तुम जो कह दो कि अधूरा सा हूं तेरे बिना, तुम जो कह दो कि अधूरा सा हूं तेरे बिना, मुझको ये मौसम खिजा भी बहार लगे। अमर प्रेम का ये गीत राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर पर फिल्माया गया। ये फिल्म 1972 में रिलीज हुई थी। आडी बर्मन के म्यूजिक के साथ हमारे ही कलाकार संदीप जी ने आपके लिए पेश किया।

1982 में बनी हुई ये फिल्म जिसका नाम था बेमिसाल, आडी बर्मन के म्यूजिक पर आनंद बख्शी साहब ने इस गीत को लिखा, संदीप जी ने इसे गाया।

अर्चना कहती हैं, दूर तक परवाज भरना चाहती हूं, एक दफा हद से गुजरना चाहती हूं, दूर तक परवाज भरना चाहती हूं, एक दफा हद से गुजरना चाहती हूं, जिंदगी को भरते भरते गुल्लकों में थक गई, अब खर्च करना चाहती हूं।

लकीरें कह रही हैं सब्र, लकीरें कह रही हैं सब्र, थोड़ा सब्र, थोड़ा सब्र, मगर ख्वाबों की तब्दीली हुई जाती है किरचों में।

0: पड़ोसन फिल्म का ये गीत, जो कि सुनील दत्त और किशोर कुमार पर फिल्माया गया था, आडे बर्मन के म्यूजिक के साथ संदीप जी की आवाज में।
1: अरे है

अर्चना कहती हैं, हकीकत जिंदगानी की यकीनन जानलेवा थी। हकीकत जिंदगानी की यकीनन जानलेवा थी। गनीमत ये कि हमको ख्वाब में जीने की आदत है।

1982 की बनी हुई फिल्म नमकीन का ये गीत आर डी बर्मन साहब ने संगीत दिया और संदीप जी ने इसे गाया।

अर्चना कहती हैं, रुलाता तो बहुत है पर मुझे रोने नहीं देता, रुलाता तो बहुत है पर मुझे रोने नहीं देता, मेरे ख्वाबों का दुश्मन चैन से सोने नहीं देता। उसे मांगा दुआओं में मिला भी है वो, उसे मांगा दुआओं में मिला भी है वो, थोड़ा सा खुदा पूरी तरह मेरा उसे होने नहीं देता।

0: ये थे दोस्तों संदीप कौंडल जी।
1: पिंजरे में चल के आ जाता है शिकार।
0: दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि पंचम दा के बनाए हुए गीत जो हमारे कलाकार ने पेश किए सुन के मजा आ गया होगा आपको।

इंतजार कीजिएगा एक और हमारे कलाकार पंचमदा के ही बनाए हुए गीतों का गुलदस्ता लेकर आपके सामने बहुत जल्द हाजिर होंगे। सुनना ना भूलिएगा।

0: नमस्कार दोस्तों, कला सिर्फ रंगों, सुरों या शब्दों का नाम नहीं है, बल्कि ये उन भावनाओं की भाषा है जो सीधे दिल तक पहुंचती है। और जब एक कलाकार अपनी कला के माध्यम से दुनिया से संवाद करता है तो वो सिर्फ मनोरंजन नहीं करता बल्कि प्रेरणा भी देता है। इसी प्रेरणा और रचनात्मकता के सफर में आपका स्वागत है आज के कलाकार के इस प्रोग्राम में। आइए ना मिलते हैं उन प्रतिभाओं से जो अपने हुनर, मेहनत और सपनों से आज की दुनिया को और खूबसूरत बना रहे हैं। मैं हूं आपका दोस्त समीर और आप सुन रहे हैं आज के कलाकार। आज के कलाकार का एक बहुत ही प्यारा सा एपिसोड लेकर मैं आपका रेडियो दोस्त समीर हाजिर हूं और बहुत मजा आएगा सुनकर दोस्तों आपको आज का प्रोग्राम। हमारे साथ जो टैलेंट हैं वो हैं सुरैया नायक जी और बहुत ही प्यारे प्रदेश से, बहुत ही प्यारी जगह से हैं, वो गोवा से हैं। जी हाँ दोस्तों, वो लहरें, वो समंदर। तो चलिए मैं सुरैया जी से उनका थंडर स्टील करने की कोशिश नहीं करूंगा। हम लोग सुरैया जी का स्वागत करते हुए, उनका वेलकम करते हुए उन्हीं से पूछेंगे। सुरैया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज मुझे और अपने नई फैमिली मेंबर्स जो आज के कलाकार की फैमिली में आप आज स्वागत हुआ है आपका, जुड़े हो, उन सबको बताइए ना आप कहाँ हैं, क्या करती हैं आप।
1: हेलो एवरीवन, नमस्ते। नमस्ते समीर जी, नमस्कार, वडक्कम, केम छो, कॉमिस्ता, सबको मेरा प्रणाम। मैं गोवा से हूँ, मैं मेरे परिवार के साथ रहती हूँ गोवा में और मैं बहुत खुश हूँ कि इस मंच के माध्यम से आप सभी से आज बात कर रही हूँ और ये मौका मिला मुझे। थैंक यू नितिन जी और मेरी फ्रेंड जो मीनाक्षी है, उसने मुझे इधर कांटेक्ट किया मुझे।
0: ऑलराइट, सुरैया जी ये तो बताइए आप करते क्या हो वहाँ पर गोवा में, व्हाट डू यू डू?
1: मैं गोवा में आई एम अ बैंकर, एक्चुअली आई एम अ एक्स बैंकर।
0: अच्छा,
1: अभी या एंड अभी मैं, मेरा व्यवसाय है, मेरा ट्रैवल एजेंसी है, वो चला रही हूँ।
0: अच्छा, आप अपनी ट्रैवल एजेंसी रन करते हैं गोवा में ही, पंजिम में?
1: हाँ, पंजिम में।
0: हाँ, बहुत खूब। तो जी बोलिए।
1: सो एक्चुअली बैंकिंग इज द प्रोफेशन वेयर मुझे इस बैंकिंग से मुझे बहुत से लोगों से मिलाया, वो जो डिसिप्लिन, पेशेंस, कस्टमर सर्विस, वो सब इसी माध्यम से सीखी मैं। और नाउ सिंगिंग इज बिकम अ पैशन। सो
0: ऑलराइट, बहुत खूब। तो चलिए आगे बढ़ते हुए दोस्तों, हम लोगों ने ये जाना कि सुरैया जी गोवा से हैं, पंजिम से हैं और क्या करती हैं। चलिए सुनते हैं उनके गाए हुए ये दो प्यारे से गीत इस कार्यक्रम की शुरुआत में।

0: बहुत ही प्यारे गीत सुरैया जी, कमाल कर दिया, बहुत ही प्यारी गायकी। सुरैया जी चलिए थोड़ा सा आपके बारे में समझने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले अपने म्यूजिक के बारे में ही हमें बता दीजिए। आपकी ये जो गायकी है, जो सिंगिंग है, ये आप कब से गा रहे हो, और कहीं से आपने क्लासिकल सीखा या नहीं सीखा, सिर्फ आप म्यूजिक के बारे में पैशनेट हो, तो गायकी आपकी कब से चल रही है?
1: एक्चुअली बचपन से मुझे संगीत में बहुत लगाव हुआ है, लेकिन संगीत मेरे लिए केवल एक शौक नहीं है, बल्कि मेरी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए एक माध्यम जैसा है। और पहले तो क्या होता था कि म्यूजिक टीवी नहीं था, कभी सिर्फ रेडियो रेडियो, बाद में टीवी आ गया, रेडियो से मैं सुनती थी, रेडियो बहुत सुना मैंने। तो इवन वो लव्स होते थे, जो प्रॉपर लव्स भी ना हमको मालूम नहीं होते थे शब्द, फिर भी दैट लय, वो संगीत हमेशा अपने क्या बोलते हैं कि विद दैट सिंगिंग, जब हमारी चतुर्थी होती थी तो मेरे काका भजन गाते थे, वो सुनना, उनके साथ बैठ के सुनना, उधर से सीखा मैंने थोड़ी जैसे वो जो गाने होते थे मराठी में, कैवल्याचा चांदण्याला भुकेला कस्तूर, देन केशवा माधवा, विठ्ठल तो बरवा, ऑल दिस सॉन्ग्स, दैट म्यूजिक, वो सुन के सीखी हूँ। फॉर्मल सिंगिंग कभी नहीं सीखा।
0: कोई बात नहीं मैम, हमारे आज के कलाकार में जितने लोग हैं ना, वो लोग म्यूजिक के पैशनेट ही हैं, पसंद करने वाले हैं, उनको म्यूजिक से प्यार है, तो ठीक है, अगर आपको सीखने का मौका मिल जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा गाते हैं। सो मैं सचमुच आपकी तारीफ करना चाहूँगा कि आपने मराठी के जो भजन वगैरह, अभंग वगैरह गाते हुए सुना और उनको गाया, वहीं से आप इंस्पायर हुए और आपने गाना शुरू किया, ये बहुत ही अच्छी बात है, बड़ी ही बढ़िया बात है। लेकिन सुरैया जी ये तो बताइए कि आप किस तरीके का म्यूजिक पसंद करते हैं, मेरा कहने का मतलब है भजन, गजल, क्लासिकल म्यूजिक, बॉलीवुड, हिंदी सॉन्ग्स, किस तरीके का पसंद करते हैं आप?
1: मुझे अलग अलग तरीके के संगीत गाना पसंद है एक्चुअली
0: जी,
1: और हमेशा अपनी गायकी को बेहतर बनाने की मैं कोशिश करती हूँ। मुझे लता जी बहुत पसंद है, आई ट्राई टू सिंग हर सॉन्ग्स, क्योंकि उसकी गायकी में जो जो उसकी विविधता है, सरलता है, लाइफ गिविंग सॉन्ग्स है उसके, वो मुझे बहुत पसंद है। और जो कठिन से कठिन गाना भी वो इतनी सरलता से गाती है, दैट आई लाइक, सो आई लव हर सिंगिंग।
0: बहुत
1: भजन भजन भी गाती हूँ मैं, आई लाइक दिस ऑल्सो, आई ट्राई टू सिंग इन ऑल लैंग्वेजेस ऑल्सो, आई नो मेनी लैंग्वेजेस, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, गुजराती, कन्नड़ा, आई ट्राई टू सिंग इन।
0: वाह क्या बात है, वैसे भी इतनी सारी लैंग्वेजेस को जानना वैसे भी बहुत अच्छा लगता है। अच्छा एक और बात सुरैया जी, मतलब आप इतनी सारी लैंग्वेजेस में गाते हैं तो हाँ। वैसे तो बोल भी लेते होंगे, सारी लैंग्वेजेस बोल लेते होंगे, है ना?
1: हाँ बोल लेती हूँ
0: आराम से।
1: कन्नड़ा समझ लेती हूँ, पोर्चुगीज ऑल्सो आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन सिंग बट आई कैन अंडरस्टैंड, देन इंग्लिश तो हाँ, मराठी आई कैन सिंग।
0: ओके तो बहुत बढ़िया, लीजिए दोस्तों एक और हमारे साथ आज के कलाकार जुड़े हैं जो बहुत सारी लैंग्वेजेस में गा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए पहले तो इनके इन गीतों का मजा लें और फिर वापस आएं सुरैया जी के पास। देखो।

0: बहुत बहुत बढ़िया गायकी। तो सरैया जी चलिए आगे बढ़ते हुए मुझे ये बताइए कि आज आप जिस भी मुकाम पर हैं जिंदगी में, जहां पर भी हैं, ऐसी कौन सी चीज है जो आपको हमेशा मोटिवेट करती है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूं, मुझे आप जैसे लोगों के साथ पॉडकास्टिंग करने में बहुत मजा आता है, वो चीज मुझे हमेशा मोटिवेट करती है। तो मैं हमेशा दिन में इंतजार करता हूं कि किसके साथ मुझे पॉडकास्टिंग करने को मिलेगा। दैट मोटिवेट्स मी। सिमिलरली व्हाट मोटिवेट्स यू?
1: मोटिवेशन यानी अभी कोविड के टाइम से एक्चुअली मैं जुट गई थी स्टार मेकर में, तो बहुत सारे फ्रेंड्स हो गए थे, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं मेरे, और हमेशा मैं वो टाइम, एक सर्टन टाइम पे मैं आई गिव माय टाइम टू दैट एंड आई ट्राई टू सिंग विद देम। उसमें बहुत मुझे मेरे मन को शांति मिलती है, मेरे जो भी थकान होती है मैं और फ्रस्ट्रेशन होता है, कुछ होता है, वो फ्रस्ट्रेशन सिंगिंग थ्रू सिंगिंग आई रिलीज इट। सो मुझे बहुत शांति मिलती है इससे। तो वो मोटिवेशन है एक्चुअली सिंगिंग की तरफ से, लेकिन बिजनेस एंड ऑल अदर थिंग्स सेम थिंग, माय फैमिली, माय माय फ्रेंड्स, यू नो, दे इंस्पायर मी टू डू समथिंग न्यू एंड आई लाइक टू लर्न न्यू थिंग्स ऑलवेज। सो यू नो All these things are added up.
0: बढ़िया बढ़िया, बिल्कुल ठीक कहा सुरैया जी आपने। यही चीजें होती हैं जो हमें मोटिवेट करती हैं, हमें इंस्पायर करती हैं, और हम जिंदगी को कदम दर कदम आगे बढ़ाते हुए जीते रहते हैं। बहुत खूब कहा आपने, मजा आ गया सर। चलिए तो आगे बढ़ते हुए इन गीतों का आनंद उठाएं। सुरैया जी ने हमारे लिए इनको प्रिपेयर किया, दोस्तों लीजिए, लुत्फ उठाइए।

0: बहुत बहुत ही प्यारी सिंगिंग, बहुत ही प्यारी गायकी,
1: थैंक यू,
0: बहुत ही प्यारे संगीत। तो आगे बढ़ते हुए सुरेया जी, मुझे थोड़ा सा ये बताइए आपकी जिंदगी को और थोड़ा बेहतर समझने के लिए। अच्छा, आप तो गोवा में हैं, थोड़ा सा गोवा के बारे में ही बताइए ना। कौन कौन सी जगहें हैं जहां पर हम लोग विजिट कर सकते हैं? आप जब गोवा में रहती हैं तो कैसा तो मौसम रहता है बारहों महीने, किस तरीके से, हाउ डू यू लिव योर लाइफ? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको कहूं, मैं पहाड़ों में रहता हूं, तो यहां पर तो बारहों महीने ठंड होती है। अगर मई जून में भी हम लोग बात करें तो रात में मुझे कंबल ओढ़ के ही सोना पड़ता है, तो और बारहों ही महीने करीब करीब मुझे गर्म पानी इस्तेमाल करना पड़ता है नहाने के लिए। तो सिमिलरली, हाउ डू यू लिव देयर, मतलब आपकी जो डेली रूटीन होता है गोवा में वो कैसा होता है?
1: गोवा इज अ ब्यूटीफुल प्लेस एज इट इज। तो इधर एक्चुअली 12 महीने कुछ ना कुछ चालू ही रहता है, इट्स अ हैपनिंग प्लेस। लेकिन सिर्फ यू नो मई जून वो महीने में थोड़ी गर्मी ज्यादा होती है, तो पीपल डोंट प्रिफर टू कम। बट अदरवाइज नवंबर दिसंबर इज अ the tourist is full, actually they know what is going on in Goa, so it's full of beaches, churches, every place is worth seeing, so everyone is invited in Goa.
0: Wow, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, वैसे भी हम लोग गोवा के बारे में हमेशा बहुत सुनते आए हैं, गोवा हमें बड़ा अट्रैक्ट भी करता है, और अब सुरेया जी हमें बता भी रही हैं कि इट्स अ हैपनिंग प्लेस, कुछ ना कुछ तो उधर चालू रहता है। बहुत बढ़िया। तो चलिए विजिट करिए गोवा को, जाके आइए, सुरेया जी से मिलिए, बहुत अच्छा लगेगा। तब तक
1: वेलकम। टिकट्स चाहिए तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं।
0: ओह हाँ, आपकी तो ट्रैवल एजेंसी है। वेरी नाइस। हाँ, दिस इज एन एडेड इन्फॉर्मेशन।
1: आई कैन हेल्प देम आउट टू शो देम प्लेसेस विद अ गाइड, एवरीथिंग दे वांट।
0: क्या बात,
1: कर सकते हैं। हाँ,
0: बहुत बढ़िया। तो मतलब अपने को व्हीकल वगैरह भी मिल जाएगी आपके पास?
1: यस यस,
0: गाड़ी वगैरह भी मिल जाएगी।
1: यस यस, एवरीथिंग।
0: ओके,
1: एवरीथिंग प्रोवाइड।
0: लो, बहुत बढ़िया दोस्तों। तो लीजिए, हमारे पास एक और एडेड इन्फॉर्मेशन आई, एडेड बेनिफिट है, हम लोग बात कर सकते हैं, बुकिंग कर सकते हैं और जा सकते हैं गोवा घूमने के लिए एक डिफरेंट स्टाइल से। हम सुरेया जी को बता सकते हैं कि हम किस तरीके से गोवा घूमना चाहते हैं। बहुत बढ़िया। चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हुए ये प्यारे से गीत सुनते हैं सुरेया जी के, और उसके बाद फिर हम वापस आते हैं।